नमस्कार, हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तिथि 19, तदनुसार 9 जून सन 2026। सुबह के 5:58:30 होते हैं। इसी के साथ अब हमारे आज के प्रसारण शुरू होते हैं। प्रातःकालीन सेवा में हम अपने श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।

हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को है। आपसे कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

0: स्थानीय समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रूपए का स्मारक सिक्का और 5 रूपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 होते हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जब मनुष्य ईश्वर को देखता है तो वह उसे मनुष्य रूप में देखता है। इसी प्रकार अन्य प्राणी भी ईश्वर को अपनी अपनी कल्पना अपने अपने रूप के अनुसार देखते हैं। ये कथन है स्वामी विवेकानंद के।

परमात्मा की कृपा पर मेरा अखंड विश्वास है, वह कभी टूटने वाला भी नहीं है। धर्म ग्रंथों पर मेरी अटूट श्रद्धा है, ये कथन है स्वामी विवेकानंद के।

जो व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को समझता है वो खुद समझ सकता है कि पीड़ा क्या होती है। कभी कभी दूसरों का मजाक बनाना या फिर हंसी का पात्र बनाकर उनकी हंसी लगाना, ये सब एक मनुष्य के कर्म नहीं है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान। संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया और स्वर दिया है उत्तरा केलकर ने।

पंचवटी में निवास करते हुए श्री राम ने अनुज लक्ष्मण को ज्ञान, वैराग्य, माया, ईश्वर और जीव के भेद आदि का रहस्य बताया। इस प्रकार नीति की कथाएं कहते सुनते कुछ दिन बीते थे कि एक दिन शूर्पणखा वहां पहुंची। वो लंकापति रावण की बहन थी, नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदया। पंचवटी में दो सुंदर राजकुमारों को देख धर्म ज्ञान रहित वो नारी काम से विकल हो गई। सुंदर नारी का रूप धारण करके शूर्पणखा ने श्री राम से प्रणय निवेदन किया। विनोद में राम ने उसे लक्ष्मण के पास जाने को कहा। लक्ष्मण ने अपने को दास तथा पराधीन बताते हुए उसे पुनः श्री राम के पास जाने को कहा। श्री राम ने एक बार फिर लक्ष्मण से प्रणय निवेदन करने को कहा। लक्ष्मण ने अब उसे वास्तव

तुझे वही वरेगा जो निपट निर्लज्ज होगा। खिसिया कर वो श्री राम के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देख श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा किया। श्री राम से इशारा पाकर लक्ष्मण ने शूर्पणखा को बिना नाक कान के कर दिया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कान। संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया और स्वर दिया था उत्तरा केलकर ने। FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए ये देशभक्ति गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये आकाशवाणी है,
2: हर पल आपके साथ।
1: समाचार हो या सदाबहार गीत,
2: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
1: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
2: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
1: आकाशवाणी।

श्रोताओं, विक्रम संवत 2083 की आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की नवमी है। तदनुसार 9 जून 2026 और दिन है मंगलवार। अब हम आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आज शाम 6:20 पर हम आपको सुनवाएंगे गीता संदेश। इसमें आज आप सुनेंगे अध्याय 5 में श्लोक 16 से 19 तक की व्याख्या। व्याख्याकार होंगे श्री सोमनाथ शर्मा। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी होगा शाम 6:30 पर और 7 होगा ग्राम संसार। युवा साथी अपना कार्यक्रम युववाणी सुन सकेंगे शाम 5:30 पर। शाम 7:30 पर हम लेकर आएंगे आपकी बात, जिसमें होंगी आपकी ही बातें, यानी हमारे कार्यक्रमों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, शिकायतें हैं या सुझाव हैं, जो भी हैं वो सब आज शाम 7:30 पर होंगे आपकी बात में। गैर फिल्मी गीतों का, माफ कीजिए, गाने नए पुराने, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे शाम 5:05 पर। ताज़ा जानकारी व रोचक विषयों के साथ सुनिएगा कुछ बातें कुछ गीत रात 8:00। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे गीतों भरी कहानी चांदनी रातें। इस कार्यक्रम में आपके व्हाट्सएप से भेजे गए गीतों की फरमाइश हम सुनवाएंगे रात 10:00। सुबह 10:00 हम लेकर आएंगे नमस्ते कुरुक्षेत्र। इस कार्यक्रम में आपकी पसंद के गाने सुनने के लिए हमें फ़ोन करें 0174421322 पर। कार्यक्रम सुबह सवेरे हम लेकर आएंगे आज सुबह 8:30 पर। गैर फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे आज सुबह 9:30 पर, कार्यक्रम सुरांजलि में बाजाई नगाड़ा। इस कार्यक्रम में लोकगीतों का आनंद आप ले सकते हैं आज सुबह 7:40 पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 6:55 होने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति भवने गतसायं आयोजितस्य रक्षा अलंकरण समारोहस्य समये राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, अन्ये केन्द्रीय मंत्रिणः, सशस्त्र सेनायाः वरिष्ठाधिकारिणश्च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः समारोहस्य समये रक्षा सैन्य दलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां, राज्य केन्द्र शासित प्रदेशयोः आरक्षकेभ्यश्च 7 कीर्तिचक्राणि, 15 वीरचक्राणि, 31 शौर्यचक्राणि च प्रदत्तानि। जम्मूनगरस्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमायां कर्तव्यपारायणतावधौ प्राणत्यागं कृतवन्तौ VSF इत्यस्य आरक्षकं दीपक चिंगखम इत्यमुम, उपनिरीक्षकम मोहम्मद इम्तियाज इत्यमुम च मृत्योपरांतम वीरचक्रम प्रदत्तम। आंध्र प्रदेशे गतसायं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इत्यस्य विशाखापत्तनम स्टील प्लांट इत्यत्र महते अग्निदुर्घटनायां 8 जनाः मृताः, अन्ये 6 जनाः च व्रणिताः अभवन्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू च अस्यां दुर्घटनायां मृत जनानां प्रति शोकं प्रकटितवन्तः। एतदतिरिच्य प्रधानमंत्रिणा प्रत्येकस्य मृतकस्य निकटवर्ति सदस्यस्य कृते 2,00,000 रूप्यकाणां, व्रणितानां कृते 50,000 रूप्यकाणां च अनुग्रह राशेः घोषणा कृता। केन्द्रीय गृहमंत्री अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबंधन व्यवस्थायाः LPMS इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। गृहमंत्रालयेन उक्तं यत् LPMS इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तंत्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबंधन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। 47,000,000-वर्षपर्यन्तं व्यापार सौकर्यं, संपर्कं, राष्ट्रीय सुरक्षां, विकसित भारतस्य दृष्टिकोणं च सुदृढं कर्तुं लक्ष्येन सह एतत् मञ्चः संरेखितः अस्ति। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामनः पश्चिम बंगस्य विकास यात्रां त्वरितं कर्तुं उपायेषु विचारं कर्तुं पश्चिम बंगस्य मुख्यमंत्रिणा शुभेन्दु अधिकारिणा सह नवदिल्ल्यां मेलनं कृतवती। राज्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु ऋण प्राप्ति विषये, सर्वकारस्य योजनानां कार्यान्वयनस्य विषयेऽपि चर्चा जाता। वित्तमंत्री सीतारामनः अघोषयत् यत् राज्य सर्वकारेण सह निकट समवायेन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनादीनां नवीकृत संतृप्ति अभियानं प्रत्येकं योग्यं लाभार्थिम् आच्छादयितुं क्रियते। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् नवान्वेषणैः वैश्विक सहभागित्वेन अन्तर्राष्ट्रीय आपणे प्रवेशस्य विस्तारेण च आगामिषु 5 वर्षेषु भारतस्य औषध निर्माण उद्योगस्य आकारः द्विगुणितः भविष्यति। श्रीगोयलवर्यः ह्यः नवदिल्ल्यां फार्मास्यूटिकल क्षेत्रस्य वैश्विक राजदूत सम्मेलनं 26,000,000-वर्षस्य ग्लोबल ड्रग रेगुलेटर्स कॉन्क्लेव तथा 26,000,000-वर्षस्य फार्मा एंड हेल्थकेयर इत्यस्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन्याः पूर्वालोकन समारोहं च संबोधयन् इदमुक्तवान्। केन्द्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी वर्यः अवदत् यत् नरेन्द्र मोदिनः सर्वकारस्य 12 वर्षेषु भारतस्य अंगार खनन क्षेत्रयोः महतीं परिवर्तनम् अभवत्। महिला क्रिकेट क्रीडायां यूनाइटेड किंगडम देशस्य कार्डिफ नगरे 26,000,000-वर्षस्य ICC महिला 20-प्रति-20 विश्व चषक क्रीडायाः प्राक् ह्यः प्रथमायां पूर्वाभ्यास क्रीडायां भारतेन वेस्टइंडीज दलं 26 धावनांकैः पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्ष में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में कल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हो चुके हैं, जिससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम की प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई के लिए रवाना की गई है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल से तेजपुर लीची को वैश्विक पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पादों के लिए नए अवसर खुलेंगे। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार ये हादसा पिछले

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
1: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
1: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
1: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
1: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टेक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
1: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
1: जी।
2: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानू यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपरा

0: परंपराओं में से एक है।
1: जी हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान, शांति, अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
0: जी जी जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं।
0: जी जी जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
1: जैसे
0: कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है, इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
1: जी, सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
0: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
1: तो क्या क्या नियम है इसके?
0: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वाह,
1: यानी
0: हारमोनी या सामंजस्य।
1: और दूसरा शब्द क्या है?
0: दूसरा शब्द है केई,
1: जी,
0: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
1: और श्रोताओं, तीसरा शब्द है सेई, यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू, यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
0: श्रोताओं, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
1: जी हाँ, तो श्रोताओं, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं, ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
0: जी, एक और खास बात यह है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
1: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
0: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
0: जी
1: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
0: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
1: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
0: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
0: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी, ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से, बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली।

0: हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर फटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन। बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म हो गए।
1: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी।
2: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है।
3: आए देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
0: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
3: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
0: लो।
3: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते।
0: हाय हाय।
4: हर गोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
0: कहाँ बड़ी बहुरिया?
4: मेरी माँ के पास।
0: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है।
4: माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए?
0: बड़ी बहुरिया,

0: हर गोविंद भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए, हाले गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: गाजीपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
1: अच्छा,
0: हाँ, घबराओ मत, बता दूंगा।
1: तो कितना समय और लगेगा?
0: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है। हाँ?

0: भाई साहब,
1: हाँ,
0: थाना बिहमपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना

0: थाना बेहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, कब तक जीऊं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
3: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
4: पाए लागू माँ जी।
5: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
4: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
5: मेरी बेटी का कोई संवाद?
4: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं। हाँ? बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
5: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
4: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
5: सो तो है।
4: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
5: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवाला, यहीं रहेगी। अरे वहाँ अब क्या रह गया है उसका? जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
4: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
5: हाँ सो तो है। चलो अच्छा है बबुआ, अब थोड़ा जलपान कर लो।
4: अच्छा अच्छा माँ जी।
5: अरे हरगोबिंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
0: हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हरगोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया? वो किस लिए आया था? वो झूठ क्यों बोला? ये सोच सोच कर रात भर हरगोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसक रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वह सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
4: माँ जी, अब आज्ञा दीजिए।
5: अरे,
4: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी, अब पैर लागू।
5: जीते रहो बेटा,
4: अब चलता हूँ।
3: क्यों भाई, रहा खर्च तो है।
4: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
3: अच्छा
4: अच्छा, राम राम।
3: राम राम
4: राम राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक कही है, जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पी लो, पी लो। शाबाश शाबाश, हाँ शाबाश, अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया मुझे माफ कर दो।
1: कहे?
2: मुझे माफ कर दो,
1: पर
2: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
1: हरगोबिंद भाई
2: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया तुम सारे गांव की माँ हो, तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
1: हरगोबिंद भाई तुम
2: मैं अब हम निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना, नहीं जाओगी ना?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी।

0: occasionally fall. The major feature of all deserts is, of course, dryness and variations of temperature. In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the Earth's surface from the hot rays of the sun. The absence of this blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. Deserts are an important part of nature's great plan. They are there like the dense forests and the deep oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth.
1: आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम के समापन की आपसे आज्ञा चाहेंगे, तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए बाजाए नगाड़ा। बाजाए नगाड़ा सुनने वाले तमाम दोस्तों को राजीव धीमान का नमस्कार। दोस्तों, आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे कलाकार हैं दिलावर शर्मा और साथी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

इन हाथ पसारे लिया बादशाह नौकर समझे।

इसी गीत के साथ आज का बजाय नगाड़ा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज के हमारे गायक कलाकार थे दिलावर शर्मा और साथी। सुबह के 8 बजने को अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एमटी मारिवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: गृह मंत्रालय ने कहा ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
5: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
6: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
7: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
8: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
7: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
9: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
7: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
10: राष्ट्रपति

0: की द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में MT मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जाँच जारी है। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, TMC में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट NDA के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सीटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों की सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दामबुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। Union Home Minister Amit Shah to launch Land Port Management System in New Delhi today. 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting to begin today in Indore, Madhya Pradesh. Indian Embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard MT Merivale after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and Israel announce halt in attacks against each other but warn of retaliation if ceasefire breached again. U.S. federal court strikes down President Donald Trump's $1,00,000 H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation series at Dambulla this morning. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System, LPMS, in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. More details from our correspondent.
4: The Ministry of Home Affairs said that the launch of Land Portal Management System will be a landmark step in India's move towards a modern, technology-enabled border management system. It added that the platform aligns with the goal of strengthening trade facilitation, connectivity, national security, and the vision of Viksit Bharat by 2047. LPMS is a digital platform designed to integrate operations across land ports into a unified system. It will enable secure, real-time exchange of logistics and regulatory information, bringing land ports on a par with digital systems already in place at airports and seaports. The system will also provide end-to-end digital workflows for cargo and passenger processing, including slot booking, payments tracking and single window clearances, while improving coordination among government agencies and private operators. On the occasion, the Home Minister will also inaugurate newly developed stakeholder accommodation facilities at Dauki in Meghalaya and Srimathpur Land Port in Tripura, strengthening infrastructure support for border management and personnel. Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
3: The 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting will begin today at Indore in Madhya Pradesh. The BRICS Agriculture Working Group meeting will also be held simultaneously under India's BRICS presidency this year. Details from our correspondent.
5: Agriculture ministers, senior officials and experts from 21 countries are taking part. These include Brazil, China, Russia and South Africa. The conference runs till June 13. It begins with the meeting of the Agriculture Working Group. Key topics include food security, farm innovation, climate-friendly farming, agriculture trade and empowering small farmers. On June 12, a special dialogue among agriculture ministers will be held. It will focus on food security through small farmers, women and youth. On June 13, the main ministerial meeting of BRICS nations will take place. countries. A joint document on agriculture cooperation and innovation will be prepared. Foreign delegates will also get a taste of Indore's rich culture and heritage. They will visit historic sites

कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को राजीव धीमान का नमस्कार। आज के कार्यक्रम में क्या है, खुद ही सुनिए।

मेरे श्रोताओं, अब बारी है आज के प्रश्न की। देखिए, ज्ञान जो होता है ना, वो जहां से भी मिले, जितना भी मिले, उतना ही अर्जित कर लेना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हर रोज जो हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, उससे आपके ज्ञान में इजाफा होता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आज का प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, पालियार जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? देखिए, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। पालियार जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? आपको बताना है उस राज्य का नाम। आप इस प्रश्न का जवाब 8:45 तक दे सकते हैं हमारे केंद्र के दूरभाष नंबर 94-660-21-336 पर टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से। और समय आपके पास रहेगा 8:45 तक, और आपका समय अब से शुरू होता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब आप संदेश भेजें तो उसमें 3 नाम से ज्यादा नाम ना भेजें। नाम लिखें, प्रश्न का जवाब लिखें, या प्रश्न का जवाब पहले लिखें फिर नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें और हमारे तक भेज दें। देखिए, 8:45 तक जितने भी नाम हमारे पास कार्यक्रम में आएंगे, हम सभी नाम कार्यक्रम में शामिल करेंगे, लेकिन उसके बाद जो नाम हमारे पास कार्यक्रम में आएंगे, हम उन्हें शामिल नहीं करेंगे। तो समय का ध्यान रखिए और प्रश्न का जवाब हमारे तक भेजना शुरू कर दीजिए।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि आज आदिवासी जननायक और स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है, यानी उनकी शहादत का दिन है आज, जो हर साल 9 जून को मनाया जाता है। और इस दिन 1900 में मात्र 25 वर्ष की अल्पायु में रांची की जेल में उनका निधन हो गया था। अगर भगवान बिरसा मुंडा के बारे में बात की जाए तो उनका जन्म 15 नवंबर 1875 जो कि वर्तमान झारखंड के खूंटी जिले में उलीहातू गांव में हुआ था। उन्हें प्यार से धरती आबा धरती के पिता कहा जाता था और उन्होंने 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश शासन और स्थानीय जमींदारों के शोषण के खिलाफ उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्हें आदिवासी समाज को अंधविश्वास और नशे से दूर रहने की सीख दी थी और अपने धर्म पर बिरसा पंथ की स्थापना की। अगर उनकी बात की जाए तो हम आपको बता दें, अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और रहस्यमयी परिस्थितियों में 9 जून 1900 को उनकी जेल में मृत्यु हो गई थी। उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा उनके जन्मदिवस पर 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही हम आपको बता दें श्रोताओं कि आज एक और ऐसे शहीद की पुण्यतिथि है जो महान सिख योद्धा थे और खालसा सेना के प्रमुख बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिनका आज बलिदान दिवस है हर साल, जो कि 9 जून को मनाया जाता है। उन्हें मुगलों द्वारा 9 जून 1716 को दिल्ली के मेहरौली के पास बहुत बुरी तरह से यानी निर्मम हत्या के जरिए उन्हें शहीद कर दिया गया था। बाबा बंदा सिंह बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण दास, जो कि मुगलों के दमनकारी शासन से देश और धर्म की रक्षा के लिए खालसा सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी शहादत की अगर बात की जाए तो मेहरौली में सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मकबरे के पास उनकी शहादत का जो स्थान है वो है। मुगल बादशाह फारूक खास्तियार ने उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने की पेशकश की थी, जिसे उन्होंने देश और धर्म के सम्मान के लिए पूरी दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया था। ये उनकी शहादत का जो था वो कारण बना। मुगलों द्वारा उनके सामने अमानवीय यातनाएं दी गई और अंत में उन्हें उनके 4 वर्षीय पुत्र अजय सिंह सहित उनके कई बहादुर साथियों को उनकी आंखों के सामने शहीद कर दिया गया। इसके बावजूद वे विचलित नहीं हुए और शांत रहे। बाबा बंदा सिंह बहादुर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयों को मुगलों के खिलाफ लड़ना और अपना स्वतंत्र सिख शासन स्थापित करना सिखाया। तो आज इन दो शहीदों की शहादत का दिन है तो हम इन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं।
7: Oh.

श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आज आपसे प्रश्न किया था कि जो पालियर जनजाति है वो मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। तो सही जवाब है तमिलनाडु और केरल। पालियर जनजाति दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल की पहाड़ी इलाकों में मुख्य रूप से रहती है। इन्हें पलियन, पेझियार और पेनियार भी कहा जाता है। पारंपरिक रूप से ये ढिंगीगुल, सिरुमलाई और पलानी की पहाड़ियों में बसे हैं और तमिल से संबंधित द्रविड़ भाषा बोलते हैं। तो सही जवाब देने वाले श्रोताओं के नाम हमारे पास आ चुके हैं। अब आप हमें संदेश भेजना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम अब आपके जो संदेश हैं वो कार्यक्रम में शामिल नहीं करेंगे। तो भाई, आज का प्रश्न का जो सही जवाब जिन श्रोताओं ने भेजा है उनके नाम हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। पहला नाम हमारे पास भेजने वाले, देखते हैं कौन से श्रोता हैं। पहला नाम हमारे पास भेजा है नाहन हिमाचल प्रदेश से योगी ठाकुर, रीमा ठाकुर ने। और अगला नाम कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं, देखिए इसमें अगला नाम जी। तो वही श्रोताओं, अब आप जो है हमें संदेश भेजना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम अब आपके संदेश शामिल नहीं करेंगे। ललिता सिंह और भगवान सिंह शिलाई हिमाचल प्रदेश से हैं। अगला नाम हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, ये हैं योगी मोहल्ला बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, गुरशब्द सिंह राहुल। और ये अगला नाम कार्यक्रम में शामिल हो रहा है साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति खमिहारा छत्तीसगढ़ से। अगला नाम है मोटाला महाराष्ट्र से विजय सुलारकर, रतनमाला सुलारकर। और ये अगला नाम है सुदर्शन शाह और पल्वी शाह पद्मा टाकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से। अगला नाम है अश्विनी कराड़िया, कृतिका कराड़िया, सुबेदार अमरनाथ, रविदास नगर, थानेसर सिटी, कुरुक्षेत्र से। ये है लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी ध्रुव, निशांत ध्रुव। और अगला जवाब है कल्याण मुंबई से किशोर हिब्राले, सुजाता हिब्राले, प्रतीक हिब्राले। ये हैं विक्रम योग भारती, संध्या सैनी, हरमन योग भारती, खुशप्रीत अंबली, गांव फलसंडा जटान, कुरुक्षेत्र से। और अगला नाम है दरियापुर भवाली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले। और ये हैं ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा। ये अगला नाम कार्यक्रम में शामिल हो रहा है सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, चंडीगढ़ से। ये हैं अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से। ये अगला नाम है बीपी गौतम, सरिता गौतम, एंटा रोड गंजटू द्वारा यूपी से। और ये हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, गव्या बल्होत्रा, अनारकली बाजार जगराओं से। और ये अगला नाम है सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्य आरव खुराना, एसके पप्पी, एमएलबी रोड, ग्वालियर से। भैया आप तीन नाम ही भेजा करें, ज्यादा नाम मत भेजा करें। अटल रेडियो श्रोता संघ साकारा सोमानी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं नारायण लाल साहू, प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू। अगला नाम हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं अरुण शारदा कुरुक्षेत्र से, अरुणा शारदा। और ये हैं टिया कृष्णा सोलन हिमाचल प्रदेश से। अगला नाम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं हयात कॉलोनी अररिया बिहार से हैं फैसल इमाम। और ये हैं फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, हियांश कुमार चंदन, सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से। कैलाश नगर से हैं ये कैलाश नगर कुरुक्षेत्र से सुरेंद्र दत्ता, बंटी शंटी और लाडी। ये हैं अगला नाम दीपक मैंक मुणत, बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। और इनके साथ हैं नेहा जैन और विनोद मुणत। अगला नाम हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं गजराज पन्नू, डोगसे रेड्डी, गांव फुरलक, जिला करनाल से। ये हमारे नए श्रोता लगते हैं हमें।
और आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद अखिला प्रसाद, और अगला नाम है उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लंगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। ये हैं उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी। अगला नाम कार्यक्रम में शामिल हो रहा है रामगंज खांडवा मध्य प्रदेश से पेंटर विजय सिंह महोबिया, कविता महोबिया, कुंडलेश्वर वार्ड खांडवा से योगेश गुजराती। अगला नाम है गांव हीरा वाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु। और ये अगला नाम है सरोज सैनी, राकेश सैनी, यादवेंद्र सैनी, सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से। अगला नाम कार्यक्रम में शामिल हो रहा है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी। ये हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, पाकुड़ झारखंड से। और ये अगला नाम है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हर्षित। और अगला नाम है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, कर्ण राहुल साहू। और ये हैं नाज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद हसनैन पवार। और अगला नाम कार्यक्रम में शामिल हो रहा है लाडवा से चांद ढींगरा, इशु एमी। और ये हैं अगला नाम बबलू साहू, जामुन देवी साहू, बेबी आराध्या साहू।

ग्राम नहर कोहरा से। और ये अगला नाम कार्यक्रम में शामिल हो रहा है, वंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस पिंकी लवली। और ये हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय। अगला नाम है तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राजेश साबले पाटिल। और ये हैं शाहूनगर यवतमाल महाराष्ट्र से राहुल मनवर, सरला मनवर, बीबी प्रियांशी। और ये हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। अगला नाम हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं बल्लारपुर जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हेमंत कुमार भारशंकर, श्रीमती प्रिया भारशंकर, कुमारी समीक्षा भारशंकर। और ये हैं नल्लेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नामकर, निर्मला नामकर, विशाल नामकर। और ये हैं रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी और योगेश कुमार साहू। जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, लक्ष्य सोनी। और अगला नाम है बन्ने बुजुर्ग तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बिजेंद्र विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। ये हैं मसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा और यश मंसूरी। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमरा रानी, गीतिका भानु। और अगला नाम है गांव चोलधा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया। यह बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, अक्रम हुसैन, प्रिंस डाक बाबू, नगर निगम वार्ड नंबर 28, नाज मंजिल महसूल, सीतामढ़ी से। और अगला नाम है शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, गौरव सैनी, अनीता सैनी। यह अगला नाम है रामशरण विश्वकर्मा और साहिल विश्वकर्मा, ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड यूपी से। और अगला नाम है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा। और अगला नाम है आखली दीवान मध्य प्रदेश से भाई रामलाल चंद्रवंशी, श्रीमती कृष्णा चंद्रवंशी। और ये हैं कार्तिकेय पन्नू, जिम्मी रेडी, सभी पन्नू परिवार, गांव फुरलक जिला करनाल से। भैया आपका नाम हो गया था, आप दोबारा संदेश भेज रहे हैं, गलत बात है। जय श्री सुनील बेंगलोर से हैं। और अगला नाम जो हम शामिल कर रहे हैं वो है सुधा मूर्ति के हाली बेंगलोर से। ये हैं सबलपुर काकेर से फलगुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। और विजय सिंह लखेरा महेंद्रगढ़ से। और अगला नाम है नर्मदा पार्क पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल। और ये अगला नाम है पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु, तुलसी मस्कीन। और ये अगला नाम है अमीर खुसरो रोड गंजडुंडवारा से डॉक्टर दबरील हसन, शबनम अनवार, शेख मोहम्मद कलीम। और ये है मोहम्मद यासीन हाशमी, नजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, नई बस्ती गंजडुंडवारा से। और अगला नाम हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं रादौर से राजकुमार पुजारा, अनीता पुजारा, साहिल पुजारा। और ये हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, गांव उगाला, जिला अंबाला, हरियाणा से। और ये हैं रामनगर कैथल से सुनील दत्त, विनायक दत्त, आशा रानी। अगला नाम है बिहारी कॉलोनी दिल्ली से वसीम चली चामोरिया, असलम वली चामोरिया, सरफुद्दीन वली चमोरिया। और ये हैं अगला नाम गांव नलोई जिला हिसार से सज्जन जांगड़ा, कार्तिक व वेदांश जांगड़ा। अगला नाम हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं मदनपुर छत्तीसगढ़ से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू। और ये हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा। और ये हैं गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से वीना ढींगरा, कृतिका, विशु, विजय। और ये अगला नाम है रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। अगला नाम

कबीर रेडियो श्रोता संघ डोडी लोहारा बलोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया और मास्टर अल कबीर। ये हैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग, अंजना रानी गर्ग, विकास गोयल। अगला नाम है छत्तीसगढ़ सुरगुजा से फातिमा थापा, सोनम थापा, आसमा थापा। और ये हैं सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हजूरे, सैफुल्ला हजूरे, साबत हजूरे। अगला नाम कार्यक्रम में शामिल हो रहा है जमशेदपुर से स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया। और ये हैं तमिल जवाब भेजा है इन्होंने, सही जवाब है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम। भैया आपका नाम हो चुका था, आपने दोबारा नाम क्यों भेजा। और ये हैं दिल्ली बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्कीन। अगला नाम हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं डोंगर गांव से राष्ट्रपाल गजवैये। और अगला नाम हम शामिल कर रहे हैं बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जैबू निशा बेगम, सद्दाम सोनी। और ये अगला नाम हम शामिल कर रहे हैं रेलवे रोड गंजडुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज, बेबी फातिमा गाजी। और ये अगला नाम है कैलाश नगर कुरुक्षेत्र से अंग्रेज, संदीप दत्ता बंसी। और ये अगला नाम हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, भाई दो संदेश मत भेजा करें, महारा दरवाजा एंटा से नबी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, नवेद सुहेल अब्बासी। और ये अगला नाम हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं कासगंज यूपी से अनुपमा, कुसुम, अपूर्वा। और ये हैं गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, जगदीश सोनी और लड्डू कुमारी। और ये अगला नाम हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं रायसन करनाल से रजनीश पत्रा कबीर। और ये हैं सरिता मौर्य, गौतम बी प्रकाश, कुश गौतम, साई विहार, रामपुर से। और ये हैं धाड़ी नादुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप पाठे। अगला नाम है राजधानी रायपुर से नीलू, मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। और ये हैं गंजडुंडवारा से शमसूल, कमर राही, शाहीन, फातिमा और अन्नु। और अगला नाम है बेरड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम, कर्माकर, सुनीता कर्माकर। और ये अगला नाम हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं डेर पाटन गुजरात से धीरज बीरबारी। अगला नाम है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार। और ये अगला नाम कार्यक्रम में शामिल हो रहा है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान। ये हैं रश्मि झरना राजकोट गुजरात से। अगला नाम कार्यक्रम में शामिल हो रहा है बुलढाणा वड़शिंगी से अनमोल मानकर, बुलढाणा इस्लामपुर से सहदेव दामोदर। और ये हैं शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया विशाल सपकाल। और ये हैं रोहासी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू, नंदनी साहू, मनीष साहू। अगला नाम हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं ये हैं संजीव कुमार, अमन कुमार, गांव है इनका कुकनी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से। और अगला नाम कार्यक्रम में शामिल हो रहा है पीड़ शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, अंजलि करवा, बाला साहब करवा। और ये अगला नाम है पवन गौड, श्रेयांश गौड, आशीष गौड, सेक्टर 2 आवास विकास, कासगंज यूपी से। और ये अगला नाम है सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। ये अगला नाम कार्यक्रम में शामिल हो रहा है राजकुमार कृष्णा राजपर, आयुष राजपर, गांव है इनका उमरी, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, हरियाणा से।
भैया आप नाम साफ लिखा करें, आप अलग अलग नाम करके लिखा करें तो ज़्यादा आसानी होगी पढ़ने में। नरेश मल्होत्रा, नीटू भावना मल्होत्रा, अनिल कटारिया खैल बाजार पानीपत से। और ये अगला नाम हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, कोरासी छत्तीसगढ़ से पवन क्रांति साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू। और ये है अगला नाम सूफिया हुजरे, चांदबी हुजरे, कीरत हुजरे सांगली से। और ये अगला नाम है संदीप मक्कड़, पिंगा वाला चौक गोराया जलंधर से। सौराष्ट्र राजकोट से प्रवीण भाई गुजराती, जगदीश भाई गुजराती और हिरेन भाई। और ये हैं गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से रामधारी अवाना, अनाया ओजस अवाना। अगला नाम कार्यक्रम में शामिल हो रहा है ब्राह्मणा वाला नरवाना से मेघराज शर्मा। और ये हैं बन भगेरा जिला राजानंद गांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा। अगला नाम है प्रमोद कुमार साहू, कदुआपड़ा जिला जगत सिंहपुर ओडिशा से। और ये अगला नाम है माघीराम सैनी, पूनम सैनी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से। इन्होंने अपना नाम नहीं भेजा है, सिर्फ प्रश्न का जवाब लिखकर भेज दिया है, तो नाम भी साथ लिखकर भेजा करें भाई। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, कोमल सेन, तोषण सेन, विनायक सेन सोगा जिला धमंतरी छत्तीसगढ़ से। और ये हैं विनय मोहन सेक्टर 18 जगाधरी से। और ये नाम हम शामिल कर रहे हैं सेक्टर 5 कुरुक्षेत्र से कविता चावला, भरत भूषण और दिव्यांश। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी वलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, हैप्पी राय। और ये हैं बिहार स्टेट से डब्ल्यू उल्लाह बेलदार, वली उल्लाह बेलदार, सोनम वली बेलदार। और ये अगला नाम हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, इनका जवाब गलत है तो नाम शामिल नहीं होगा, कृष्ण कुमार गुप्ता महोबा यूपी से। और अगला नाम ये कार्यक्रम में शामिल हो रहा है प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा छत्तीसगढ़ पलारी से। और ये अगला नाम है डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, संतोष नामदेव बघेरा दुर्ग से। और ये अगला नाम है संतोष नामदेव, संजना नामदेव, अनाया नामदेव, मेन मार्केट सोरई जिला ललितपुर यूपी से। और ये हैं जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े और करुणा कांबड़े। देखिए आप दो दो मैसेज मत भेजा करें। और ये हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और बत्ता परिवार। अगला नाम है इनका तारामलाई रायगढ़ से अंशु साहू, निशु साहू। और ये कार्यक्रम में शामिल हो रहा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से। और ये अगला नाम है जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी।

कार्यक्रम में अगला नाम हम शामिल कर रहे हैं, खांडवा से राकेश भाई और दुर्गा भाई, इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वक्कार और माहिरा अजीम, और रघुवीर नगर से जफर शेख। अगला नाम कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं, डोडी लोहारा से प्रभा जटोलिया, अनीता राकेश जटोलिया, बिहार स्टेट बक्सर से राज एसटी फातिमा और वसीम प्रभा, ओंकारेश्वर से मनोज सेन और अनीता सेन। और यह कार्यक्रम में अगला नाम शामिल हो रहा है, खांडवा शनि चौक से राधिका कुमारी, देवश्री कुमारी और अनीता कुमारी, कबीर।

नगर झांसी से डॉली जलोटिया और अजय जलोटिया। देखिए आपने दोबारा फिर से संदेश भेज दिया, आपका नाम शामिल हो गया है। और ये हैं पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, बेगम शमनम वली और आसमा वली, आपका भी नाम शामिल हो गया था कार्यक्रम में, तो आपने दोबारा फिर से संदेश भेज दिया। चलिए अब कार्यक्रम में ये सभी नाम शामिल हो चुके हैं जिन्होंने सही जवाब भेजा और समय सीमा के भीतर जिनके जवाब हमारे तक आए। तो दोस्तों आपको बता दें कि जानकारी का सिलसिला जो है अभी रुका नहीं है। हम आपको बता दें कि आज 9 जून को मनाया जाता है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर किरण बेदी का जन्मदिन। उनका जन्म 9 जून को 1949 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। किरण बेदी के जीवन से जुड़ी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिनमें हम कुछ का जिक्र कर लेते हैं। उनका जन्म तो आपको बता दिया, अब प्रेमलता माता और प्रकाश लाल पेशावरिया उनके पिता का नाम है। पुलिस सेवा में जाने से पहले वे एक टेनिस खिलाड़ी थी बहुत अच्छी। उन्होंने 1966 में राष्ट्रीय जूनियर टेनिस चैंपियनशिप भी जीती थी। अगर किरण बेदी की बात की जाए तो उन्होंने राजनीति विज्ञान में मास्टर्स और कानून में एलएलबी की डिग्री हासिल की करने के बाद उन्होंने आईआईटी दिल्ली से डॉक्टरेट यानी पीएचडी भी की है। पहली महिला आईपीएस वो 1972 में बनी और वह भारत की पुलिस सेवा आईपीएस में शामिल होने वाली देश की पहली महिला बनी थी। 1994 में महानिरीक्षक के तौर पर कारागार के रूप में उन्होंने दिल्ली की तिहाड़ जेल में कई क्रांतिकारी सुधार किए जिनमें कैदियों को शिक्षा, ध्यान और योग से जोड़ना शामिल था। उन्होंने उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए साहसिक सेवा के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है जिसमें 1994 का प्रतिष्ठित रमन मैगेसेस पुरस्कार शामिल है। वे 28 मई 2016 को 16 फरवरी 2021 तक पुडुचेरी की 24वीं राज्यपाल भी रही। तो ये थी उनके बारे में जानकारी और आज उनका जन्मदिन है तो हमारी ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि दोस्तों आज फिल्मी दुनिया की मशहूर अभिनेत्री सोनम कपूर का भी जन्मदिन है। हर साल 9 जून को जो मनाया जाता है, उनका जन्म 9 जून 1985 को मुंबई के महाराष्ट्र में हुआ था और आज वो अपना 41वां जन्मदिन मना रही हैं। तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर उनके करियर की बात की जाए तो उन्होंने साल 2007 में फिल्म सावरिया से बॉलीवुड में कदम रखा था और उनकी पहचान अगर पहचान की बात की जाए तो उनका स्टाइल आइकॉन और फैशनिस्ट के रूप में उनको जाना जाता है। और उनकी फिल्मों की बात की जाए तो रांझना, नीरजा, भाग मिल्खा भाग और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्में उनकी काफ़ी अच्छी फिल्में रही हैं जिनमें उनके अभिनय को बहुत सराहा गया है, जिसमें कि नीरजा के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड स्पेशल मेंशन भी उन्हें मिल चुका है। तो ये तो थी उनके बारे में जानकारी और हम उनके जन्मदिन पर उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उनकी फिल्म का आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसे फिल्मकार हुए हैं जिन्होंने फिल्म निर्माण की कला को एक

छोटी सी जानकारी आपके साथ साझा करके आपको बता दें कि उनका जन्म 31 मई 1925 को पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ था और राज खोसला बचपन से ही संगीत के बेहद शौकीन थे और एक पार्श्व गायक प्लेबैक सिंगर बनना चाहते थे। ऑल इंडिया रेडियो पर एक संगीतकार के रूप में काम करने के बाद वो मुंबई आए। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गुरुदत्त के सहायक के रूप में उन्होंने काम सीखने के बाद निर्देशन की कमान संभाली और इंडस्ट्री के शीर्ष निर्देशकों में शुमार हो गए। इसके बाद राज खोसला को अभिनेत्रियों का बेहतरीन निर्देशन और हिंदी सिनेमा का हिचकॉक भी कहा जाता है। उन्होंने रहस्य और रोमांच से भरपूर कई कालजयी फिल्में बनाई, जिसमें वो कौन थी, मेरा साया, अनीता और अन्य बहुत सारी कल्ट फिल्में जो उनकी बनाई गई थी, सीआईडी, कालापानी, दो बदन, मराठी फिल्म दोस्ताना और मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी पारिवारिक और एक्शन फिल्मों का भी नाम इनकी बहुत ही बेहतरीन फिल्मों में शामिल है। आपको एक किस्सा बताते हैं। उनका एक किस्सा हुआ था कि राज खोसला की फिल्म के गाने जितने सुरीले होते थे, उनको फिल्माने का अंदाज भी उतना ही अनोखा होता था। एक गाना है वो कौन थी फिल्म का, लग जा गले, जो कि आज बहुत मतलब हर व्यक्ति उस गाने को सुनना चाहता है और अक्सर रात के समय जब सोने का समय होता है तब वो गाना अगर सुने तो बड़ा अच्छा सा अनुभव होता है। इस उसी से जुड़ा एक किस्सा है कि जब महान संगीतकार मदन मोहन ने पहली बार इस गाने की धुन तैयार की तो राज खोसला को सुनाई तो निर्देशक को यह धुन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, यानी खोसला साहब को ये धुन पसंद नहीं आई और उन्होंने मदन मोहन से यहां तक कह दिया कि उन्हें ऐसी धुन की उम्मीद नहीं थी। संगीतकार मदन मोहन अपनी धुन को लेकर पूरी तरह अश्वस्त थे और इसके बाद अभिनेता मनोज कुमार ने उसमें दखल अंदाजी की और राज खोसला से आग्रह किया कि वे इस धुन को एक बार फिर से ध्यान से सुने। जब दोबारा धुन सुनाई गई तब राज खोसला को इसकी गहराई समझ आई और वो अपनी पहली प्रतिक्रिया पर इतने शर्मिंदा हुए कि उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि मेरा मन कर रहा है कि मैं अपना जूता उठाकर खुद को मारूं, क्योंकि मैंने इतनी शानदार धुन को खारिज कर दिया। आगे चलकर लता मंगेशकर की आवाज में सजा यह गीत भारतीय संगीत के इतिहास में सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर गाना बना और राज खोसला का काम आज के निर्देशकों के लिए एक पाठशाला की तरह है। उनकी फिल्मों की खासियत सिर्फ सस्पेंस ही नहीं बल्कि उनकी मजबूत किरदार और दमदार पटकथा भी हुआ करती थी। 66 वर्ष की आयु में उनका निधन भले ही हो गया लेकिन अपनी अनूठी फिल्मों और गानों के माध्यम से वे दर्शकों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। उनकी पुण्यतिथि पर भारतीय सिनेमा के इस महान रचनाकार को शत शत नमन।

वहीं श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि योग हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, जिसमें कि सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार बाहर शक्तिशाली योग आसनों का एक अद्भुत संयोजन है जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है। इसे प्रतिदिन करने से न केवल संपूर्ण शारीरिक व्यायाम होता है, बल्कि मानसिक शांति, बेहतर पाचन और ऊर्जा का संचार भी होता है। इससे जो शरीर को लाभ पहुंचते हैं, वो वजन जो है नियंत्रण में आता है, मजबूत मांसपेशियां होती हैं, बेहतर पाचन होता है, रक्त संचार और हृदय जो है वो सही रहता है। इसके साथ ही अगर आप बात की जाए तो अध्यात्म में भी इससे लाभ, इस योग को करने से लाभ मिलता है। तनाव में मुक्ति मिलती है, ऊर्जा और एकाग्रता होती है, आंतरिक संतुलन भी होता है। तो इसलिए योग आप हर रोज करें, सूर्य नमस्कार जरूर करें, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण जो है वो आपके शरीर को ठीक से रखता है।

तो भाई दोस्तों, समय हमें कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ली जाए। चलते चलते बस आपको यही कहना चाहेंगे कि लफ्ज तो आईने हैं, मत इन्हें उछाल के चलो। अदब की राह में मिली है तो देखभाल के चलो। मिली है जिंदगी हमें बस इसी मकसद से, संभालो खुद को और अपनों को संभाल के चलो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और खुश रहें। इसी के साथ अब दीजिए अपने दोस्त राजीव धीमान को कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे FM 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम स्वरांजलि।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये आकाशवाणी है,
2: हर पल आपके साथ।
1: समाचार हो या सदाबहार गीत,
2: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
1: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
2: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
1: आकाशवाणी।
3: कार्यक्रम का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अरमान मलिक की आवाज में।

इसी गीत के साथ आज का स्वरांजलि कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। दीजिए अपने दोस्त राजीव धीमान को इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वरांजलि। सुबह के 9:45 होते हैं, अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम 10 बजे तक। 10 बजे फिर हाजिर होंगे आपकी सेवा में।
1: संगीत के जानकार थे, क्लासिकल सिंगर थे, यही वजह है कि अपनी फिल्मों की नायिकाओं के किरदार की महत्ता बनाए रखने के साथ साथ ही उनकी फिल्मों का संगीत भी बेहतरीन होता था।

राज खोसला ने अपनी शैली से हटकर, टाइल से हटकर भी चंद फिल्मों का निर्देशन किया दोस्तों। इसमें प्रमुख है 1958 की फिल्म 16वां साल।

राज खोसला ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 21 फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और शत्रुघ्न सिन्हा अभिनीत फिल्म भी शामिल है, और ये फिल्म है दोस्ताना।

0: चली है चोरी हो चोरी काली पलक पिया मूरी।
1: राज खोसला निर्देशित मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म को 1978 का बेस्ट मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, राज खोसला ने अपनी हर एक फिल्म के संगीत को बेहतर से बेहतरीन बनाए रखा। 9 जून 1991 को राज खोसला ने अपने जीवन की अंतिम सांस मुंबई में ली।

तो यकीनन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राज खोसला की फिल्में और उन फिल्मों का गीत संगीत हमेशा उनकी यादों को तरोताजा बनाए रखेगा।

0: क्या।
1: तो ये था कार्यक्रम आज के फनकार, केंद्रित था अपने दौर के जाने माने फिल्मकार राज खोसला पर। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। और अब दीजिए आज के इस प्रोग्राम से अपने दोस्त

0: राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: ये
1: कहिए
2: सुनिए एक खुशखबरी
1: कहिए ना
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
3: शुक्रिया, शुक्रिया।
2: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
4: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजते हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र।

कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को राजीव धीमान का नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं और आपके लिए लेकर आऊंगा आपकी पसंद के गाने, कुछ जानकारी। लेकिन आपसे ये गुजारिश है, आपसे ये निवेदन है और हम आपसे हर बार कहते हैं कि जो श्रोता हमें हर रोज कार्यक्रम में फोन कर रहे हैं, कृपया करके वो आज फोन न मिलाएं। नए श्रोताओं को कार्यक्रम में जुड़ने का मौका दें या फिर जिनका समय पूरा हो गया है, जिन्होंने 20 दिन पहले या महीना पहले फोन मिलाया था, आज उन श्रोताओं को मौका मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिनको बहुत समय हो जाता है, फोन नहीं मिल पाता, एक एक साल गुजर जाता है उनका फोन कार्यक्रम में नहीं मिलता। या बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जिनका फोन पहली बार मिला होता है, तो सबको मौका मिलना चाहिए, सबको अपनी पसंद के गाने सुनने को मिलने चाहिए। आपके सब अपने ही तो हैं, तो आज कृपया करके वो श्रोता फोन न मिलाएं जो हर रोज फोन मिला रहे हैं या जिनका अंतराल अभी पूरा नहीं हुआ है। साथ ही साथ आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन EIR मोबाइल एप्लीकेशन पर सुन सकते हैं, कहीं भी कभी भी। तो कार्यक्रम का सिलसिला शुरू करते हैं इस गीत के साथ।

0: नमस्ते कुरुक्षेत्र।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: सर सुभाष खेड़ा, गांव मुंडा खेड़ा, कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ जी।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया सर, आप बताइए अपना।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, हम भी बहुत बढ़िया हैं। कार्यक्रम कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत बढ़िया, सबसे मेरा तो सबसे फेवरेट कार्यक्रम है जी।
0: अच्छा अच्छा,

0: इससे पहले के कार्यक्रम नहीं सुनते, जो और भी कार्यक्रम तो चलते हैं यहाँ?
1: एक्चुअली क्या है कि मेन टाइम इसी में ही मिलता है मेरे को थोड़ा सुनने में जी, बाकी सभी अच्छे अच्छे प्रोग्राम है सभी वीडियो के, लेकिन कुल मिला के थोड़ा मुझे यही सुनने को मिलता है बस।
0: देखिए पता क्या बात है, जब श्रोता सुनते हैं ना कार्यक्रम, तो उनको इसलिए पसंद भी आता है क्योंकि इसमें फोन मिलाना होता है, बात करनी होती है, रेडियो पर आवाज जी, रेडियो पर आवाज सुनाई देगी, हम अपने दोस्तों को बताएंगे और बहुत सारी बातें होती हैं जिससे कि अच्छा लगता है श्रोताओं को ये कार्यक्रम, तो अच्छी बात है ये। तो रेडियो पर गाने जो अपनी पसंद के सुनने, कौन से सन के गाने सुनने पसंद हैं आपको?
1: सर सुनने तो सभी के हैं, लेकिन कुछ कुछ फिल्में जो 90s में बनी थी ना जी, बहुत अच्छी बनी थी, उनके गाने थोड़ा, आज एक मेरी फरमाइश भी ऐसी है जी।
0: हाँ अच्छा,
1: सड़क मूवी का गाना मुझे सुनने की इच्छा है जी।
0: अच्छा अच्छा, सड़क का, अरे वाह क्या बात है, सभी गाने बहुत बढ़िया थे इस फिल्म के, तो बहुत अच्छे गाने हैं, सभी बहुत बढ़िया हैं और अपने जमाने की अच्छी फिल्म रही है और आज भी मतलब सुन के उसको उसी दौर में चला जाता है इंसान, 90s के गाने सुन के, है ना, ऐसा महसूस होता है
1: जी जी जी।
0: तो बताइए इस फिल्म का कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: इसमें एक सॉन्ग है सर, रहने को घर नहीं कुछ ऐसे करके है सर।
0: ठीक है, ये गाना आपकी पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं, फोन किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त।
1: ठीक है सर, धन्यवाद जी।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: मंगल भवन मंगलहारी
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: दादी की कहानियां, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
4: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: नमस्ते कुरुक्षेत्र।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं, कहां से?
1: मैं सर सुभाष गोड बात कर रहा हूं जी, गांव असदपुर डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से।
0: अच्छा, बताइए कैसे हैं?
1: बस बढ़िया है सर, आप सुनाओ कैसे हो?
0: बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। क्या कर रहे थे अभी?
1: बस आज तो घर पे फ्री थे सर, मैंने चलो आज दीवान सर जी से बात की जाए जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बात हो रही है, देखिए आपकी।
1: हाँ जी, काफी दिनों बाद बात हो रही सर से, सर आपसे आज।
0: हाँ हाँ, मेरे साथ तो आपकी बहुत बहुत समय के बाद बात हो रही है।
1: और हम तो सर आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से काफी समय से जुड़े हुए हैं।
0: हाँ हाँ, बहुत समय से जुड़े हुए हैं, आप तो पुराने श्रोता हैं हमारे
1: जी।
0: जी तो
1: बस भगवान से ही दुआ करते हैं सर, आपका और हमारा साथ जन्मों जन्मों तक ऐसे ही बना रहे सर।
0: देखिए, जुड़ा हुआ है तो हमेशा जुड़ा ही रहेगा, जब तक आकाशवाणी रहेगी और आप रहेंगे तब तक तो साथ जुड़ा ही रहेगा
1: जी। बिल्कुल सर
0: जी, है ना। और देखिए, यही तो यात्रा है, इतनी लंबी यात्रा हो गई है कि 90 साल हो गए हैं हमारे। बहुत सारे पुराने श्रोता कहते हैं ना कि चला मैं अकेला था, कारवां बनता चला गया।
1: जी जी,
0: लोग जुड़ते गए और कारवां बनता चला गया। तो इसी तरह देखिए, जब आकाशवाणी शुरू हुई थी तो छोटे स्तर पर शुरू हुई थी।

0: फिर बड़ी बड़ी होती चली गई और आज देखिए इतने साल की हो गई है कि 90 साल की आकाशवाणी हो गई है, पूरे विश्व में सुना जा रहा है रेडियो। तो बताइए गाना कौन सा सुनेंगे आज
1: रेडियो? गाना सर स्वर्ग मूवी का सुना दीजिएगा जी, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा।
0: ठीक है, आपकी पसंद पर ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं दोस्त, फोन किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त।
1: धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी।

0: नमस्ते कुरुक्षेत्र।
1: नमस्ते कुरुक्षेत्र
0: जी, कौन बात कर रहे हैं, परिचय दीजिए।
1: सर जी, मैं गोरेपुर से शौकत बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, बताइए कैसे हैं?
1: सर जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। राजीव शर्मा से बात हो रही है हमारी, हम तो न चाह रहे थे आपका कॉल सुनकर ही हमारा कॉल लग गया आज।
0: चलो, बड़ी अच्छी बात है कि आपका फोन मिल गया आज, इससे खुशी की बात क्या होगी।
1: जी सर, आज पहली बार आपसे बात हो रही है।
0: अच्छा, मेरे से पहली बार बात हो रही है आपकी
1: आज?
0: जी, चलिए कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है, आगे भी बात होती रहेगी। जब आप फोन मिलाते रहेंगे कार्यक्रम में तो बातें होती रहेंगी।
1: जी, आप कब रिटायर हो
0: जी?
1: आप रिटायर कब होंगे सर?
0: आपको, आप जब चाहेंगे तब रिटायर हो जाएंगे, बताइए।
1: वो तो लगा कि तुम्हें मिलती है आपको।
0: देखिए, अब ये सारी बातें तो रेडियो पर नहीं हो सकती दोस्त, क्योंकि ये कार्यक्रम आपकी फरमाइश का कार्यक्रम है जिसमें आपको गाने सुनवाए जाते हैं।
1: हाँ जी
0: जी, तो इसमें आप सिर्फ अपने गानों की बातें करें, फिल्मों की बातें करें तो अच्छा रहेगा, है ना?
1: हाँ जी, आप बच्चे पूछ सकते हो कि क्या काम कर सकते हैं।
0: जी जी, कोई बात नहीं, आप कभी हमारे केंद्र पर आइए, तब आमने सामने जब बातें होंगी तो सबके बारे में आप जान पाएंगे। जी
1: हाँ जी
0: जी, तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, किस फिल्म का? ठीक है ठीक है, आपकी पसंद पर ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं दोस्त, आपने फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद
0: जी।

0: नमस्ते कुरुक्षेत्र
1: जी। नमस्ते, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: बहुत बहुत स्वागत है दोस्त, कैसे हैं, क्या कर रहे थे अभी?
1: जी मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। अभी हमारे खेत में ट्रैक्टर चल रहे हैं।
0: अच्छा, ट्रैक्टर चल रहे हैं
1: जी। हाँ, अच्छा, अच्छा। मतलब खेत को समतल बनाया जा रहा है, सोयाबीन की फसल के लिए तैयार किया जा रहा है।
0: अच्छा अच्छा, आखिरी बार जब बात हुई थी आपसे तब भी कोई फसल लगाई हुई थी, शायद कटाई की थी आपने, है ना?
1: हाँ जी, बिल्कुल सही पहचाना, मेरा कॉल आपसे बात हुई थी मार्च के एंडिंग में हुई थी।
0: हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहचान लिया, क्योंकि आप जब उस वक्त भी शायद आप कोई फसल आपने लगाई हुई थी, उसकी कटाई हुई थी, और उसके बाद
1: गेहूँ की फसल की कटाई हो रही थी हमारी।
0: हाँ हाँ, गेहूँ की फसल की कटाई हुई थी।
1: बहुत ही अच्छा लगा, आपको याद है अब तक हमारी बातचीत का जो हमने बात करी थी।
0: देखिए, बात पता क्या होती है, जो अंदाज होता है ना, जैसे आपको हमारा अंदाज पसंद है, आवाज पसंद है, या आप आवाज से पहचान लेते हैं कि आज कौन से उद्घोषक बैठे होंगे या उद्घोषिका कौन सी होंगी, तो आप जिस तरह से पहचान लेते हैं कि आज किन की प्रस्तुति चल रही है, तो उसी तरह हम भी अपने श्रोताओं से जब बात करते हैं तो हम भी पहचान लेते हैं, क्योंकि उन सबका, सब श्रोताओं का अपना एक अलग अलग अंदाज होता है बात करने का, अपनी बात को हमारे तक पहुंचाने का एक अलग अंदाज होता है, हमसे बात करने का अलग अंदाज होता है, तो उसी अंदाज से हम भी पहचान लेते हैं।

0: जी बिल्कुल सर, ये तभी तो कहा जाता है ना कि आकाशवाणी ये तो श्रोता है, वो श्रोता है तो आकाशवाणी है, तभी तो मतलब आकाशवाणी ने 90 साल पूरे किए।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इतना बड़ा जुड़ाव है, इतने समय से जुड़ा हुआ है आकाशवाणी जो कुरुक्षेत्र है और आपके साथ जुड़ा हुआ है, पूरे हमारे देश में तमाम जितने भी हमारे केंद्र हैं सभी इतने समय से चल रहे हैं और सभी को इतना ज्यादा सुना जा रहा है, क्योंकि आकाशवाणी ने अपना इतना लंबा सफर जो है अपने श्रोताओं के साथ ही तो तय किया है।
0: जी बिल्कुल है ना सर, बताऊं मोबाइल ऐप से कार्यक्रम सुनता हूं मैं आपके और फोन इन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करता हूं, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का नियमित श्रोता हूं। अभी खेतों में मतलब ट्रैक्टर चल रहे हैं तो सोयाबीन की फसल हमारे यहाँ पे 25 जून के बाद में बरसात के बाद में लगाई जाती है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: जी हाँ।
1: तो रेडियो आप मतलब फोन से सुनते रहते हैं और अपना काम भी करते रहते हैं?
0: हाँ जी बिल्कुल सर, हम तो मोबाइल से शुरू सुबह से सुनते रहते हैं कार्यक्रम को।
1: अच्छा।
0: और जी बिल्कुल पार्टिसिपेट भी
1: करते हैं। हाँ, भागीदारी
0: कार्यक्रम सुनते सुनते काम में
1: बिल्कुल करते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी भागीदारी भी बनाते हैं, सुबह का जो सुबह सवेरे कार्यक्रम होता है उसमें आपकी भागीदारी भी होती है?
0: जी हाँ, जैसे कि कुछ काम होता है ना हमको खेतों में तो हम पहले से उसको कार्यक्रम शुरू होता है ना उससे पहले कार्यक्रम मतलब काम को निपटाने की कोशिश करते, जल्दी जल्दी काम हो जाता है इस वजह से हमारा।
1: जी तो अभी अभी गर्मी कितनी पड़ रही है?
0: जी अभी गर्मी तो अभी मतलब 15 दिन पहले तो वहाँ पे 45 डिग्री के करीबन टेम्परेचर था, लेकिन अभी यहाँ से 2-4 दिन के मतलब थोड़ा कम हुआ है, मतलब 32 से 35 के लगभग भी चल रहा है अभी।
1: अच्छा, अभी भी गर्मी तो है? गर्मी है,
0: गर्मी तो फिर भी काफी है, मतलब सुबह और शाम को घर से बाहर निकलते हैं, बाकी बस अभी 11 बजे के बाद हम घर चले जाएंगे।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप तो इस जगह ऐसी जगह से बात कर रहे हैं जो महाकालेश्वर का स्थान है, बहुत लोग जाते हैं है ना वहाँ पे, बहुत लोग जाते हैं, तो बहुत अच्छी जगह से बात कर रहे हैं आप, तो अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और आपका बात करने का अंदाज भी एक अलग है, तो अच्छा लगा आपसे बात कर।
0: आपको बताऊं महाकालेश्वर बाबा का मंदिर तो बहुत ही फेमस है, फेमस इस वजह से होता है क्योंकि जब बाबा हमेशा मतलब भक्तों के ऊपर दया दृष्टि रखते हैं और एक बार महाकालेश्वर बाबा के दरबार में अर्जी लग जाए या उनके दर्शन हो जाए ना तो मन की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है,
1: दोबारा भी बुलाते हैं बाबा, है मैंने ऐसा भी सुना है।
0: जी एक बार आने के बाद उसे बार बार आने का मौका मिलता है।
1: बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बातें करते हैं आप, तो बताइए आज कार्यक्रम में कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
0: जी किस्मत फिल्म का है पुरानी वाली, इसमें है कजरा मोहब्बत वाला, शायद ये गाना संसद बेगम जी ने गाया हुआ है।
1: जी आप सुन लीजिएगा, हम भी सुनते हैं आपके साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया, अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: थैंक यू सो मच सर, मुझे भी आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
1: जी जी।

0: नमस्ते कुरुक्षेत्र।
1: तुमसे मिलके आज फिर ऐसा लगा, तुम थे तो सब कुछ था जिंदगानी में, रिश्तों को सवाल कर रखना मेरे दोस्त, ये अक्सर बदल जाते हैं जवानी में। नमस्कार सर जी।
0: जी नमस्कार नमस्कार। शुरुआत शेर से की आपने।
1: आपकी आवाज फिर धीमी मिल रही है सर जी।
0: अच्छा अच्छा, अब आ रही है तेज।
1: हाँ जी अब आ रही है। राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोड़िया, तहसील नवाबगंज, झुमका सिटी, बरेली से बोल रहे हैं सर जी।
0: बहुत बहुत स्वागत है दोस्त आपका। कैसे हैं, क्या कर रहे थे अभी?
1: सर जी आपका प्रोग्राम सुन रहे थे, कहा नमस्ते कुरुक्षेत्र, और ट्राई भी करते जा रहे थे जो प्रेम सिंह

0: सोदिया जी ने अभी बड़ी बड़ी अच्छी सी बातें की, हमें अच्छा लगा।
1: हाँ,
0: जा रहे थे, कॉल भी लग गई, हमें अच्छा लगा।
1: देखिए आपका बरेली से कॉल लग गया, और बरेली में एक बात बताइए, वो झुमका आपको मिला या नहीं मिला अभी तक जो गिरा था?
0: अभी तो खैर झुमका तो गिर गया था, लेकिन अभी मिला नहीं, तो झुमका बना के दूसरा लटका दिया गया और झुमका राहा बना दिया सर जी।
1: देखिए ना कि इस गाने से बरेली कितना मशहूर हो गया था, ये गाना जब आया फिल्म इंडस्ट्री में।
0: वैसे भी सर जी हमारी बरेली के कई ऐसे
1: काफी चीजें मशहूर हैं,
0: प्रसिद्ध हैं।
1: बांस का फर्नीचर भी तो बरेली में बनाया जाता है, तो वो भी तो मशहूर है ना शायद।
0: हाँ जी, बांस बरेली से भी जाना जाता है, झुमका बरेली के नाम से भी जाना जाता है, और क्या कहते हैं नाथ नगरी बरेली से भी जाना जाता है सर।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: भोलेनाथ। हाँ जी
1: जी, तो देखिए कितनी बढ़िया बात है ना कि बरेली इतना मशहूर हो गया कि फिल्मी दुनिया में भी बरेली का नाम चलता है आज भी उस गाने के जरिए। और आज आपने देखिए, आज आपने बरेली से फिल्म फोन किया है, और आपको बता दें कि जिन्होंने ये गाना डायरेक्ट किया था, जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की थी, जिन्होंने जो निर्देशक हैं राज खोसला, आज उनकी पुण्यतिथि भी है।
0: हाँ जी,
1: आज रेडियो पर उनका जी जिक्र भी हो रहा था
0: जी, उनको सत्संग नमन करते हैं सर जी। और उन्हीं की लिखी हुई राज खोसला जी की मूवी का मेरा साया मूवी का गाना सुनवा दीजिएगा, जो हमारी बरेली फेमस हुई।
1: हाँ।
0: उनका घेरा रे बरेली के बाजार में, यही सॉन्ग सुनना है सर जी।
1: ठीक है, आपकी पसंद पर ये गाना हम आपको सुना रहे हैं दोस्त, और इत्तेफाक की बात है कि आपने फोन मिला लिया जी। इत्तेफाक की बात है
0: सर जी, कुछ दोस्तों के नाम ले सकते हैं?
1: हाँ हाँ बिल्कुल ले लीजिए।
0: हाँ जी, सबसे पहले तो आपको सॉन्ग रेडी कर रहेगा, और हमारे भगवान सिंह परमार जी हैं, सारू नूर अंसारी जी हैं, लोकेन्द्र वर्मा जी हैं, सोनू जी हैं, गंगा दत्त सावंकर जी हैं, गौतम राय जी हैं, और जिन्हों के अभी कॉल लगी उनको भी सॉन्ग रेडी कर रहेगा सर जी, और जितने लाइव श्रोता सबने सभी को।
1: ठीक है, आपकी पसंद पर सभी तमाम श्रोताओं के लिए गाना हम सुनवा रहे हैं। फोन किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त।
0: नमस्कार सर जी।

श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर साराभाई ने, विक्रम साराभाई ने 1969 में इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की। उनके ही प्रयासों से 1963 में केरल के थुम्बा से पहला रॉकेट लॉन्च किया गया। उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर उनकी बात की जाए तो वो एक महान दूरदर्शी के रूप में उन्हें जाना जाता है। उन्होंने देश में वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा के विकास के लिए कई प्रतिष्ठित संस्थानों की नींव रखी, जिसमें भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, भारतीय प्रबंध संस्थान और इसके साथ ही डॉक्टर होमी भाभा के निधन के बाद 1966 में डॉक्टर साराभाई ने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाला। उन्होंने देश में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग और विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अगर बात की जाए तो उनका मानना था कि विज्ञान का उपयोग देश की वास्तविक समस्याओं के समाधान और आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने 1966 में कम्युनिटी साइंस सेंटर, जिसे अब विक्रम साराभाई कम्युनिटी सेंटर कहा जाता है, की स्थापना की थी। उनके अद्वितीय योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण मरणोपरांत उन्हें सम्मानित किया गया था। 30 दिसंबर 1971 को उनके निधन के बाद विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नाम उनके सम्मान में रखा गया। विज्ञान, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान भारत के स्वर्णिम इतिहास का एक अभिन्न अंग है। इसके साथ ही दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो एक पास्को एक्ट है वो क्या है? पास्को एक्ट 2012 में एक विशेष भारतीय कानून है जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और बाल पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। पास्को की फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। अगर इस कानून की बात की जाए तो इस कानून का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गरिमा की रक्षा करना और उनके साथ होने वाले

समापन अपराधों के मामलों में त्वरित तथा संवेदनशील न्याय सुनिश्चित करना है। अब पास्को एक्ट का महत्व क्या है? ये कानून लैंगिक भेदभाव से परे है, अर्थात किसी भी 18 वर्ष से कम आयु के लड़के या लड़की दोनों को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें विभिन्न प्रकार के बाल यौन अपराधों जैसे पेनिट्रेटिव और नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट, यौन उत्पीड़न, अश्लील प्रदर्शन और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को स्पष्ट रूप से प्रभाषित कर दंड का प्रावधान किया गया है। बच्चों के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों में इस एक्ट में उम्र कैद से लेकर मृत्युदंड तक की कड़ी सजा का प्रावधान है। बच्चे को मानसिक आघात को कम करने के लिए जांच और सुनवाई के दौरान बच्चे को आरोपी के सामने जाने की आवश्यकता नहीं होती। सुनवाई के दौरान विशेष न्यायालय बंद कमरे में कार्रवाई करते हैं। यह एक्ट बच्चे की पहचान को गुप्त रखने का अधिकार देता है। इसके अलावा पीड़ित को शारीरिक और मानसिक पुनर्वास के लिए अंतरिम या अंतिम रूप से मुआवजा देना भी प्रावधान है। तो ये तो था पास्को एक्ट और विक्रम साराभाई का देश की प्रगति में और विज्ञान में क्या योगदान रहा है। तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का नमस्ते कुरुक्षेत्र कार्यक्रम अब समाप्त करने के अपने दोस्त राजीव धीमान को इजाजत दीजिए। आपको छोड़े जा रहे हैं इस संगीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे नमस्ते कुरुक्षेत्र एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजते हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

हम सुन रहे थे अनफॉरगेटेबल ट्रीट आशा भोसले के इस एल्बम से, आशा भोसले की आवाज में मीरा भजन और जयदेव की इस कृति को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अगला गीत, जो कि है शंकर शंभू कव्वाल और साथियों की इस एल्बम से, जिसे गाया है शंकर शंभू कव्वाल और साथियों ने। एल्बम का नाम है जिम्बो फाइंड्स हसन, अनजान के बोल हैं और सरदार सिंह का संगीत।

0: کام بھلا ہوش کسے باقی ہے،
1: کسے پینے کی حسرت تھی

सितम एल्बम से यह नगमा हम सुन रहे थे चंदन दास की आवाज में। इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: था सुदर्शन फाकिर ने। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। सुन रहे हैं रंग तरंग। आइए सुनते हैं मीरा भजन बाय लता मंगेशकर इस एल्बम से, लता मंगेशकर की आवाज में, गीत के बोल मीराबाई के, हृदयनाथ मंगेशकर के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे एल्बम मनमस्त कबीरा से बैजू मंगेशकर की आवाज़ में, कबीर के बोल और बैजू मंगेशकर के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे वडाली ब्रदर्स की आवाज में याद पिया की आए। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में जिगर मुरादाबादी के बोलों से सजे हुए इस नगमे को, जिसे महेश चेदर ने संगीतबद्ध किया है और इस एल्बम का नाम है जिगर से जिगर तक।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, चुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा। करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलय

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अंतिम नगमा, जिसे गाया है लता मंगेशकर जगजीत सिंह ने, शाहिद कबीर ने इसे लिखा है, जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया है और हमने लिया है द बेस्ट ऑफ सजदा सजदा एल्बम से।

0: और इसी के साथ कार्यक्रम रंग तरंग समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में

कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धनशोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके और उनकी कंपनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर धन शोधन और 100 करोड़ रुपए से अधिक के कथित जीएसटी धोखाधड़ी तथा फर्जी मोबाइल फोन बिक्री का पर्दाफाश किया है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा का जीवन साहस, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। श्री शाह ने कहा कि आज भी बिरसा मुंडा का धर्मांतरण के विरुद्ध संघर्ष और आदिवासी गौरव के प्रति उनका समर्पण लाखों देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 26वें ओवर में 3 विकेट पर 112 रन बना लिए हैं। कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 114 अंक बढ़कर 73,668 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में।

हम सुन रहे थे दो आंखें बारह हाथ फिल्म से यह गीत, जिसे साथियों ने गाया भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ। आज दिनांक है 9 जून और आज ही के दिन यानी 9 जून 2012 को सोनावड़े विलेज यानी सोनावड़े गांव में सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र में जन्म लिया था वसंत देसाई ने, यानी आज उनका जन्म दिवस है। तो चलिए उनके ही गीतों के साथ यानी वसंत देसाई के गीतों के साथ हम उन्हें याद करते हैं।

0: हम सुन रहे थे दो बहनें फिल्म से प्रदीप की आवाज में, प्रदीप के ही बोलों को वसंत देसाई ने जिसे संगीतबद्ध किया है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली तनू।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
5: तुम्हारी याद सताती है
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में गुड्डी फिल्म का यह गीत। वाणी जयराम की आवाज में गुलजार की बोल है और संगीतकार वसंत देसाई ने इसे संगीतबद्ध किया है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं बसंत देसाई को। गूंज उठी शहनाई, इस फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी ने गाया है। भरत ब्यास के बोल हैं और वसंत देसाई का है संगीत। आइए सुनते हैं।

ना हार, मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना या भलाई में मर जाना,

हम सुन रहे थे गीत तूफान और दिया फिल्म से मन्ना डे की आवाज में भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं फिल्म प्यार की प्यास से लता मंगेशकर तलत महबूब पर की आवाज में भरत व्यास के बोल हैं और वसंत देसाई का है संगीत।

के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला गीत सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म से महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें हैं। अनंत श्याम ने इसे लिखा है और वसंत देसाई ने संगीतबद्ध किया है।

0: गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं अगला गीत, जो कि है फिल्म यादें से, लता मंगेशकर की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं और वसंत देसाई का संगीत।

हम सुन रहे थे आशीर्वाद फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में गुलजार के बोल बसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में जहां हम याद कर रहे हैं बसंत देसाई को उनके सुंदर गीतों के लिए। गूंज उठी शहनाई फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज है, भरत व्यास के हैं बोल और बसंत देसाई का है संगीत।

और इसी के साथ समाप्त होता है आज का यह कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें याद कर रहे थे हम संगीतकार वसंत देसाई को। आज उनका जन्मदिवस है और उनको याद करते हुए हमने उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए गीतों को सुना। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन

चलिए स्वागत है आप सभी का विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में और स्वागत है कार्यक्रम सुरीला सफर में। अब ये सुरीला सफर शुरू हो रहा है और आज की जो इबारत है वो हम आपके बीच में पढ़ना चाहते हैं क्योंकि कुछ मित्र हैं जो सोशल मीडिया पर हमें नहीं पढ़ते हैं तो उनके लिए इबारत हम जरूर पढ़ेंगे। इबारत थोड़ी बड़ी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें बहुत सारी पहेलियां हैं तो हम प्रत्येक गीत के पहले आपको ये पहेली सुनाते जाएंगे। हम कुछ पहेलियां दे रहे हैं उसके साथ आज के शब्दों को ढूंढना है और बताना है और पहेली प्रत्येक गीत के पहले आपके बीच में रखी जाएगी। और अभी अब हम जो चल रहे हैं इस इबारत के साथ में, हमने एक और बात आपसे कही है कि अगर आपके पास में कुछ पहेलियां हैं जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो जरूर करें। हो सकता है उससे जुड़ा हुआ कोई गीत हम आपको सुनवा दें कार्यक्रम के होने होने तक। तो चलिए चलते हैं, आज के कुछ संदेश हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे भेजे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर को शब्द संगीत पहेली का रूप दिया गया है। हम श्रोताओं को दिमागी कसरत और कुछ नवीन प्रयोग अच्छा लगा और सराहनीय भी। धन्यवाद कुछ नई सोच के लिए। और उन्होंने सारे उत्तर दिए हैं एक के बाद एक। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने लिखा कि कार्यक्रमों में विविधता ही विविध भारती की पहचान है। पहेलियों का सुंदर प्रयोग कुछ अलग हटकर करने की प्रामाणिकता है। समरसता अक्सर मनोरंजन बाधित होती है, अतः यह विविधता स्वागत योग्य है। और इसके साथ ही उन्होंने भी हर पहेली का उत्तर दिया है। इसके साथ ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है एक और संदेश जहां हमारे मित्र लिखते हैं कि विविध भारती के सुरीले सफर में आज पहेलियां पूछते हैं। कभी कक्षा के खाली समय में दो चार लोग यह खेल खेला करते थे या

और सीखी जाती है। पहेलियां प्रायः व्यंजना शैली में रची जाती है। इनकी भाषा में विशिष्ट भंगिमा होती है, रचना में बाकपन होता है। इस कारण इसका अर्थ लगाने में दिमागी कसरत तो होती ही है, भाषा भी निखरती है और विषय वस्तु के प्रति जिज्ञासा और हाजिर जवाबी भी बढ़ती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कुछ तो कह रहे हैं कि वो अपने बचपन को याद कर रहे हैं इन पहेलियों के साथ में, तो वह भी बहुत अच्छी बात है। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि पहेलियां दिमाग की कसरत नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं, धैर्य और दृष्टिकोण का एक खूबसूरत दर्पण है। वे सिखाती हैं कि जीवन की उलझन में गहरा अर्थ छिपा है। यह जीवन के उस फलसफे को दर्शाती हैं जहां हर सवाल का जवाब हमारे अपने भीतर मौजूद होता है और शब्दों और छवियों का यह खेल हमें अपनों के साथ जोड़ता है, संवाद बढ़ाता है और कठिन परिस्थितियों में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। चाहे वह जीवन की जटिलता हो या शब्दों का कोई मनमोहक खेल, हर पहेली हमें बेहतर और समझदार बनाती है। तो चलिए हम चल रहे हैं उन्हीं पहेलियों की तरफ। हमारे श्रोता ने एक और बात लिखी है कि ये पहेली वाला विषय नहीं है, इन्होंने अपने किसी दूसरे पहेली विषय से जोड़कर लिखा है। तब हम जब वह गीत हम सुनाएंगे तब उसके बारे में चर्चा करेंगे, परंतु अब हम चलते हैं इस पहले गीत की तरफ। और ये पहला गीत जो है वो बड़ा

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा विधानसभा के तत्वाधान में चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन के जोन 2 सम्मेलन के आज दूसरे दिन प्रथम एवं द्वितीय सत्र में भविष्य की चुनौतियों से निपटने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में जागरूक समाज एवं विधायकों की भूमिका विषय पर मंथन किया गया। तीसरे सत्र के
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में जागरूक समाज एवं विधायकों की भूमिका विषय पर मंथन किया गया। तीसरे सत्र के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मीडिया के साथ वार्ता करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प एक राष्ट्रीय संकल्प है, जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक और संस्था को सहयोग करना होगा। श्री बिरला कल चंडीगढ़ स्थित हरियाणा विधानसभा के चैम्बर में राष्ट्रमंडल संसदीय
2: को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संकल्प को साकार करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हमारी नीतियां, योजनाएं, कार्यक्रम और बजटीय प्रावधान समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले हों। उन्होंने कहा कि विधायकों की इस संकल्प की प्राप्ति में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि विधायक अपने क्षेत्रों में नीतियों और जन कल्याणकारी पहलों के माध्यम से धरातल पर परिवर्तन लाने के सबसे प्रभावी माध्यम होते हैं। संसदीय लोकतंत्र में जन भागीदारी के महत्व को रेखांकित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि जन संवाद और सार्थक चर्चाओं के माध्यम से नागरिकों में यह विश्वास पैदा होना चाहिए कि यह सदन उनका अपना है और जन प्रतिनिधि उनकी वास्तविक आवाज है। लोकसभा अध्यक्ष ने आह्वान किया कि देश में ऐसा जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए जिससे प्रत्येक नागरिक यह महसूस कर सके कि विकसित भारत के निर्माण में उसका भी अमूल्य योगदान है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि जब समाज के हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होगी, तब भारत की सामूहिक शक्ति और विशेष रूप से हमारी युवा शक्ति इतनी सुदृढ़ हो जाएगी कि हम वर्ष 2047 से पहले ही विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध कर लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कल हरियाणा विधानसभा भवन में नव स्थापित पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर का भी उद्घाटन किया, जो विधायी कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। हरियाणा विधानसभा के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन के जोन 2 सम्मेलन की सांस्कृतिक संध्या के अवसर पर कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संविधान लोकतंत्र की आत्मा है। इस अंतरात्मा की आवाज को सुनकर देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। वो चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में हरियाणा कला एवं संस्कृति विभाग तथा रास कला मंच के सहयोग से मंचित नाटक संविधान के नायक को देखने के बाद संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष

0: तथा पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने भी नाटक के संदेश एवं कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। श्री नायब सिंह सैनी ने नाटक के जीवंत अभिनय एवं प्रेरणादायक प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा कि जिस प्रकार से रामायण में हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाने का संस्मरण है, उसी प्रकार आज इस नाटक के माध्यम से कलाकारों एवं लेखक ने दर्शकों को संविधान के प्रति उनके दायित्वों की याद दिलाई है। ऐसे नाटक समाज को संस्कृति एवं देशभक्ति का मार्ग दिखाने में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। नाटक के मंचन के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उपसभापति श्री हरिवंश, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्णलाल मीठा, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार के अलावा विभिन्न राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सांसद, विधायक एवं विधानमंडलों के अधिकारी उपस्थित रहे। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जींद के चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय आज एक दिवसीय जिला स्तरीय योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
1: पर कभी सचमुच बड़े नहीं हो पाते हैं, और इसका उत्तर हमारे श्रोताओं ने सही दिया और उत्तर दिया माँ। बिल्कुल सही बात है, माँ ही है ना जो हमारे जन्म के पहले, यानी हर कोई हमारे जन्म के बाद हमें प्रेम करता है, लेकिन माँ होती है जो हमारे गर्भ में आने के बाद ही वो हमें प्रेम करने लग जाती है, और उसी प्रेम के लिए हम उसे याद करते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि सभी सांस्कृतिक प्रश्नों पर गीतों पर चर्चा का समन्वय रहेगा। जन्म लेने से पहले माँ का साथ रहता है, किंतु जब वह हमें छोड़कर जाती है तो बहुत अकेलापन महसूस होता है। बिल्कुल सही कहा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि वो माँ है, अपने बच्चों को के बारे में कितना कुछ सोचती है, कितना करती है। उस आंगन में नन्ही सी चिड़िया की तरह उदकते हम कब बड़े हो जाते पता नहीं चलता। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहो, लाख पैसा कमा लो, पर अपना घर अपनी माँ हमेशा दिल में रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने भी, और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं। पर मैं आपको अगला गीत सौंपना चाहती हूँ। ये बड़ा सुंदर सा, बड़ा प्यारा सा गीत है। बस बता दीजिए, माँ के लिए इतना प्यारा लिखने वाले गीतकार कौन है, इस गीत को लिखने वाले गीतकार कौन है, ये नाम बस बता दीजिए। और अगर आपके मन में कोई पहेली आ रही है तो वो हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा।

अपनी माँ के साथ जाते हुए बच्चों को एक सुंदर सी घोड़े की टाप के संगीत के साथ रोशन ने संगीतबद्ध किया इस गीत को। मन्ना डे और महेंद्र कपूर ने अपनी सुरीली आवाज़ के साथ इसे गाया। दादी माँ फिल्म से लिया गया यह गीत है और हमने आपसे पूछा था कि इतना सुंदर गीत रचा किसने, यह ज़रूर बताएं उस गीतकार का नाम। तो सच में इतने सुंदर गीत को रचने के लिए मजरूह सुल्तानपुरी को धन्यवाद बनता है। माँ के प्रति समर्पित हमारी भावनाओं को हम तक, हमारा वहां तक पहुंचाना। अब हम बात कर रहे हैं, अच्छा हमारे श्रोताओं ने इस गीत के बारे में भी लिखा है कि इस गाने की शूटिंग उदयपुर में हुई थी, हमने वो रास्ता देखा है। अरे वाह, इसके साथ ही हमने आपसे जो प्रश्न पूछे उसमें हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया कि फिल्म दादी माँ का गीत है और मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है। बिल्कुल सही, हमारे श्रोता ने लिखा है, कहते हैं तेरी शान से ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का मोल नहीं। बिल्कुल, माँ का, माँ के बिना तो ईश्वर भी स्वयं को ईश्वर कहलाने के लिए इस धरती पर नहीं आ सकते, उन्हें भी उनकी आवश्यकता होती है। और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि हाथ दुआ वाले सदा रहते हैं सदा सर पर, तू है तो अंधेरे पथ में भी सूरज की ज़रूरत क्या होगी। बहुत खूबसूरत गीत हम सब ने अभी सुना और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने कुछ बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें हमारे बीच में लिखी हैं और कुछ पहेलियां लिखी हैं। जैसे हमारे एक श्रोता लिखते हैं, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, उन्होंने बताया 3 तीतर। चलो बढ़िया बात है, पर हमारे एक श्रोता ने एक और प्रश्न छोड़ दिया है, अब उसका उत्तर मुझे भी नहीं पता, शायद आपको पता हो और अगर सही होगा तो हमारी ये श्रोता आपके उस पर जाकर अवश्य बता देंगी कि आपने सही उत्तर दिया या नहीं इस पहेली का। काले रंग का प्राणी हूँ, उजाले के साथ में रहता हूँ, रात के अंधेरे में छुप जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। अब ये प्रश्न आपके बीच में हमने हमारी श्रोता का रख दिया है कि काले रंग का प्राणी हूँ, उजाले के साथ में रहता हूँ, रात के अंधेरे छुप जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। चलिए इसका उत्तर आप ढूंढिए। इसके साथ ही हम चलते हैं अगली पहेली की तरफ। फूलों की गलियों का मैं मुसाफिर अनजाना, आज की इबारत में हमने लिखा है कि फूलों की गलियों का मैं मुसाफिर अनजाना, गुनगुन मेरा गीत ना कोई शब्द पुराना, शाम वसन ओढ़े फिरूं मधु की खोज में, बताओ कौन हूं मैं जिसका घर है हर बाग में। हम जानते हैं आप सही उत्तर दे चुके हैं और इसका उत्तर आपने दिया है बहुत अच्छे से, भंवरा। और जब भंवरे की बात चल रही है तो हमने हमारी श्रोता की वो पंक्तियां भी आपको सौंपी हैं और ये गीत भी हम आपको सौंप रहे हैं। बस इतना बता दीजिए इस गीत के संगीतकार कौन है, और अगर आपकी कोई पहेली है जो बड़ी सुंदर सी है तो हमारे साथ साझा

0: देखिए, हम सुन रहे थे ये बढ़िया सा गीत, और इस बढ़िया से गीत में हमने आपसे पूछा था कि बताइएगा इसके बारे में, और आपने बड़े अच्छे से उत्तर हमें दिए हैं। हमारे श्रोताओं के उत्तर सुनते सुनते बड़ा आनंद आ रहा है, पढ़ते पढ़ते बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत सारी पहेलियाँ हमारे बीच में आ रही हैं और उन पहेलियों के साथ बड़े प्यारे जज्बात भी आ रहे हैं। और हम ये जो गीत सुन रहे थे वह आज और कल, आज और कल फिल्म से सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज़ में हसरत जयपुरी के पोल, और जो प्रश्न है वो शंकर जयकिशन ने इसे संगीतबद्ध किया है। इसके साथ ही हमने आपसे पूछा था तो हम आपका उत्तर काले रंग की परछाई है ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए देखते हैं उत्तर सही है या नहीं, आप अवश्य देख लीजिए। अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ, लेकिन उस गीत के पहले हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे से लिखा है कि फिल्म कल आज और कल का सदाबहार गीत भंवरे की गुंजन हसरत जयपुरी के द्वारा रचित, किशोर कुमार द्वारा गाया गया एक मधुर रोमांटिक गीत है। बिल्कुल सही बात है, आपकी प्लेलिस्ट से भी गाने बच जाते हैं, इस बात की हमें बड़ी खुशी होती है, उसका भी आपको बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता ने लिखा है, दो लड़के लड़ते जाएं उनका खेल बढ़ते जाए, इसका उत्तर उन्होंने बताया स्वेटर बुनने वाली दो सलाइयाँ। हाँ, माँ जब स्वेटर बुनती थी तो कुछ ऐसे ही बुनती थी। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे से उसका उत्तर भी दिया है, हमने जो आपसे पूछा था। हमारे एक और श्रोता ने बोला है कि एक गुफा में 32 चोर हमेशा करते आपस में शोर, बताइए इस पहेली का उत्तर। तो इस पहेली को उत्तर सहित हमारे एक और श्रोता पहले ही बता चुके हैं, इसका 32 चोर होते हैं हमारे दांत। इसका उत्तर हमको पता है। इसके साथ ही हम आपसे कह रहे हैं कि आप इसका उत्तर सहित बता दें, क्योंकि हम तो बड़े अनभिज्ञ व्यक्तित्व हैं, तो अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिख रहे हैं, वो कौन है जिसकी परछाई नहीं होती रास्ता। अच्छी बात है, ये भी बढ़िया बात आपने कही है। इसके साथ जब हम आगे बढ़े तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पहेली पूछना और समझना एक दिमागी विकल्प है, आज के समय में हर इंसान पहेलियों में उलझा हुआ है। बहुत बढ़िया, हमारी एक श्रोता की एक संवेदना हम आपके साथ साझा नहीं कर पाए जो पिछले गीत के लिए उन्होंने की थी, कि हजारों गम हो मेरी जिंदगी में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां माँ साथ हो वहां कोई भी दुख ठहर नहीं सकता, लिखूं जो माँ पे तो स्याही कम पड़ जाए, वो एक हस्ती है जिसके आगे सारा जहान भी झुक जाए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हमारे श्रोता ने एक बढ़िया सी पहेली लिखी है कि वो कौन है जो पूरे गांव में घूमती है पर मंदिर नहीं जाती, उन्होंने लिखा चरण पादुका। कटोरे के अंदर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, कौन होता है बताइएगा जरूर। इस पहेली का अर्थ आपको बताना है, उत्तर बताना है। बचपन की पहेली है जो हम सुनते आए हैं, कटोरे के अंदर कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, इस पहेली का उत्तर आप बताइए। और अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ, ये गीत के साथ इसकी पहेली भी हम आपको सुनवा देते हैं। तो ये पहेली है कि नन्नी सी मैं उड़ती जाऊं, चीची करके गीत सुनाऊं, पेड़ों पर मैं घर बनाती, पूछो कौन कहलाती, और इसका उत्तर है चिड़िया। जब चिड़िया पर मैं आपको ये सुंदर सा गीत सुनवा रही हूँ, और इसके पहले मैंने भंवरे पर आपको गीत सुनवाया, हम मान लें तो मधुमक्खियाँ और जो भी फूलों का रस चखती हैं उन सबको अगर इसमें हम जोड़ लें तो ये सब जीव खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, इनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं विचार कीजिएगा। और गर्मियों के दिन है, चिड़ियों के लिए दाना पानी तो जरूर डालिएगा। गायक का नाम बताइएगा।
1: चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया।

का हाथी मुन्ने का हाथी मुन्ने का हाथी सीधा दिल्ली जाऊंगा तेरी दुल्हनिया लाऊंगा मोर भी आया कौवा भी आया चूहा भी आया बंदर भी आया।

0: चुन चुन करती आई चिड़िया, ये गीत बड़ा सुंदर सा है जो हम सुन रहे थे। ये फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं से है, हसरत जयपुरी के बोल हैं, दत्तराम का संगीत है, और हमने पूछा था कि आवाज़ किस गायक की है, तो आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। और ये प्यारा सा गीत हम सुन रहे हैं, इस गीत के साथ एक शिक्षा तो मिलती है कि ये छोटे छोटे जीव हैं और हम इतने बड़े बड़े मनुष्य, छोटे जीवों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर विचार करते हैं और उन जीवों को बचाते हैं, क्योंकि अगर ये जीव नहीं होंगे तो ये बड़े बड़े मनुष्य भी समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये प्रकृति, ये विज्ञान कहता है। तो चलिए हम अगले गीत की तरफ बढ़ेंगे, उसके पहले हमारे श्रोताओं ने और भी बहुत सारी पहेलियां भेजी हैं। जैसे हमारे एक श्रोता ने पंजाबी कहावत पहेली भेजी है कि गुड़िया विच तकतेनी परने सड़ गए थे कुआरे अख्तेनी, शादी की इच्छा रखने वाले ऐसा कुछ कहते हैं। और एक बहुत अच्छा उन्होंने पहेली भेजी है, बूझ मेरा बुझक का सुंदर लाल मेरा सक का सुंदर लाल मेरा भाई मैं सदा कुछड़ पाई। इसका उत्तर उन्होंने घड़ा या मटका दिया है। हर भाषा में अपने अपने अलग अलग बात आ जाती है ना। इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है, लिखा नहीं जाता पर पढ़ा जाता है, खामोश रहकर भी बहुत कुछ कहा जाता है, आंखें इसे देखकर नम हो जाती हैं, बताओ वो क्या है जो दिल को छू जाता है। तो उन्होंने इसके दो उत्तर दिए हैं, पुरानी यादें या एक भावुक पत्र। बहुत बढ़िया, बड़ी मजेदार सी बातें भी आई हैं, ना खून का रिश्ता है ना घर का नाम फिर भी रहता हरदम साथ, और इसका उत्तर उन्होंने दिया है सोशल मीडिया। जी इसके बिना तो जीवन चल ही नहीं रही है, इसके साथ ही जीवन चलता नहीं है, जीवन रुक जाता है ऐसा हम मान के चलते हैं, पर चल सकता है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, ये जो जेब में रहता है काम में आता है, बाजार जाके शॉपिंग भी करवाता है, आजकल वो स्मार्टफोन भी है, फोन भी हो सकता है भाई, इसके बिना कहाँ रहा जाता है। जी आपकी इस बात को भी हम मान लेते हैं। एक पहेली है जो हम आपको सौंप रहे हैं, और हमने इसके पहले आपको सौंपी थी कि कटोरे में कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, तो आपने सही उत्तर दिया नारियल। अब एक पहेली सौंप कर मैं बस आपको एक संदेश सुनवाने वाली हूँ। वो पहेली है, हरी थी मन भरी थी मोतियों से भरी थी, राजा जी के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। हरी थी मन भरी थी मोतियों से भरी थी, राजा जी के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। इसका एक हिंट दे देती हूँ, अरे बड़े शौक से इसे कोयले पर सेक कर उसमें नींबू और दही घी लगाकर नमक लगाकर हम बड़े चाव से खाते हैं, बताइएगा। तब तक सुनिए ये संदेश।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सुरीला सफर, और सुरीला सफर कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं बहुत सारी पहेलियां। और अगली पहेली आपको सौंपने से पहले, पिछली पहेली जो हमने यूं ही पूछी थी उस पहेली का हरी थी मन भरी थी, इस पहेली का जो उत्तर हमने आपसे पूछा था उसका उत्तर आपने दिया है भुट्टा, बिल्कुल सही बताया आपने। और इसके साथ ही हम कई सारे और प्रश्नों के साथ चल रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने प्रश्न दिया है, मुझे पहेली बस का उत्तर पता नहीं होता है तो मैं पहेली बताती नहीं, मैं भी थोड़ी सी चीटिंग कर लेती हूँ। जी चलिए, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जहाँ जितने ज़्यादा पेड़ पौधे फूल होते हैं वहाँ चिड़िया पंछी भंवरे तितलियाँ दिखते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना सारी समस्याओं, बहुत सारी समस्याओं का हल है। आपने बहुत अच्छा हल बताया है और हम सबको ये हल मानना चाहिए। और अभी मौसम भी आ रहा है, जैसे ही बरसात का मौसम आता है ऐसा कहा जाता है कि बरसात के मौसम के कुछ 10-15 दिन पहले गड्ढा खोद देना चाहिए ताकि ज़मीन जो है वो सूख जाए, एक कीट रहित हो जाए, और उसके बाद जब वह गड्ढा सूख जाता है 10-15 दिन में तो फिर उसमें पेड़ लगा देना चाहिए और पानी डाल देना चाहिए, और धीरे धीरे बारिश आएगी, बरसात स्वयं उसको पानी देती रहेगी और 4 महीने में वो हरा भरा हो जाएगा। तो अभी ये काम कर सकते हैं, मौसम आ गया है, गड्ढा खोदने की शुरुआत कर दीजिए। हमारे श्रोता ने लिखा है, हवा में उड़कर आती हूँ, बिना छुए दिल को छू जाती हूँ, मेरी हर सुर में कहानी है, विविध भारती की मैं रानी हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। और उन्होंने उत्तर दिया है, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का सुरीला सफर। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में हम सब छुट्टियों में दादी के घर जाते थे तो रात को सब अपने बिस्तर पर लेटे लेटे पहेलियाँ बुझा करते थे, और हमारे बड़े भी हिस्सा लेते थे, और उनमें से एक पहेली, पंछी उड़ता आकाश में मगर रहता कहाँ। हाँ, इसका उत्तर उन्होंने बहुत अच्छे से दिया, पानी में रहता है मगर। पंछी उड़ता आकाश में मगर रहता कहाँ, तो मगर रहता है पानी में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खामोशी और मौन दोनों ही, एक श्रोता ने पूछा कि अच्छा आपने इसका उत्तर दे दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। उन्होंने प्रश्न पूछा था कि बोलते ही क्या टूट जाता है, तो उन्होंने कहा खामोशी और मौन टूट जाता है। बिल्कुल सही। चलिए अब हम चल रहे हैं कि अब बड़ी खूबसूरती के साथ में अगले गीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अगली जो इबारत में से जो कवि पहेली है वो हम आपको सौंप रहे हैं। ईंटों पत्थरों का तन मेरा, पर यादों से सजता मन मेरा, हंसी आंसू सपनों का स्वर, बताओ कौन हूं मैं। ईंटों पत्थरों का तन मेरा, पर यादों से सजता मन मेरा, हंसी आंसू सपनों का स्वर, बताओ कौन हूं मैं। और इसका उत्तर है घर। और सुनते हैं ये घर का गीत, बस बता दीजिए कौन सी फिल्म का गाना है। और इसके साथ ही आपके जो पहेलियों के किस्से हैं, या किसी ने आपसे कोई पहेली पूछी है, या आपके परिवार में सबसे बढ़िया पहेलीकार था कौन जो बड़ा सताता था, जरूर बताइएगा।

हम सुन रहे थे ये गीत जगजीत सिंह चित्रा सिंह की आवाज में, जावेद के बोल और जावेद अख्तर के बोल और कुलदीप सिंह के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा कि ये गायक कलाकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया जगजीत सिंह और चित्रा सिंह। बिल्कुल सही उत्तर आपने यहाँ पर दिया है। और इसके साथ ही अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। और अगले गीत की तरफ बढ़ने से पहले जो आपने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं, सुझाई हैं, संदेश भेजे हैं, वह तो हमें आपको सुनवाने ही हैं। तो हमारे श्रोताओं ने इसके बारे में बहुत अच्छी बात लिखी, दीप्ति नवल, फारूक शेख, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, फिल्म साथ साथ, बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता लिखते हैं, घर वो जगह है जहाँ आकर हमें सबसे ज़्यादा सुकून और शांति मिलती है, सुरक्षित महसूस करते हैं और घर चाहे बड़ा हो या छोटा हमें आश्रय देता है। हमारे श्रोता लिखते हैं, आज भी लोग रिश्ता करने जाते हैं तो घर देखते हैं, कैसी बड़ी बिल्डिंग हवेली, वर नहीं देखते पर वर के खूबसूरत बलवान कितना कमाता है, विचार

ये देखना चाहिए। बिल्कुल सही संदेश आपने दिया। और हमारे श्रोता ने हमने भुट्टे के बारे में पूछा था, उसे छल्ली भी कहते हैं, मक्की भी कहते हैं। अरे वाह, इतने सारे नाम हैं भुट्टे के, हमें भी पता पड़ गए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से चिड़िया या गौरैया को कम देखा जा रहा है। हमारे घर में चिड़िया का एक जोड़ा जहाँ हम दाना डालते हैं आता है। पिछले कुछ महीनों से दो जोड़े आने लगे हैं। उनके लिए मिट्टी का घर टाका है छज्जे पर, और आज ही एक चिड़िया का जोड़ा उसका मुआयना कर रहा था। आशा है कि घर में घोंसला बनाए और उनकी संख्या बढ़ जाए, फिर से उनकी चहचहाट से मेरी आँख खुले और मेरा दिल दिन खुशनुमा हो जाए। कितनी बढ़िया बात है। हमारी श्रोता लिखते हैं कि बिहार में जब लड़की की शादी होती है तो मायके में ही लड़का लड़की कोहबर में बैठने के लिए लाया जाता है। तब घर की सालियां दरवाजे से को घेरती हैं और दूल्हे राजा से गाने की कुछ लाइनें या कुछ पहेलियां पूछती हैं। पहले तो दूल्हे राजा गड़बड़ाते हैं, गाने की दो लाइन गा देते हैं, फिर उन्हें शगुन भी देना पड़ता है। ये सब प्रेम की बातें हैं ना। हमारी श्रोता लिखते हैं, बचपन में रीत के बहुत से घर बनाते थे। जब दो मंजिला घर बन जाता था तो बहुत खुश हो जाते थे, और वो दो मंजिला घर भी हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं होता था। और टूट भी जाता था तो हम फिर से बनाते थे, टूटते नहीं थे, है ना। अब हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जितना पास आए उतना कम दिखाई दे, और इसका उत्तर उन्होंने बताया, अंधेरा। आहा, क्या बात है। एक बचपन वाली पहेली भी हमारे पास में आई है। एक खड़ी, एक पड़ी, एक चमाचम नाच रही, बताओ कौन। और उसका उत्तर है रोटी, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता। ये हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिए हैं। और इसके साथ ही हम चलते हैं हमारी अगली पहेली की तरफ। और वो जो पहेली है बड़ी सुंदर सी है, और इन पहेलियों की स्मृति दौर में हम चल रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि हम अपना कहीं ना कहीं बचपन या हम अपने वो दिन जी रहे हैं जो हमने आज की तकनीकी युग में कहीं छोड़ दिए हैं। तो चलिए हम अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। और हमने हमारी जो इबारत है उस इबारत में अगली पहेली लिखी है, जेब में रहता काम ना आता, जेब में रहता काम में आता, बाजार जाकर चीज दिलाता, सबको मेरी होती चाह है, बताओ मेरा नाम क्या है। और इसका उत्तर है पैसा या रुपया या धन। जी बिल्कुल, सबको चाहिए होता है, इसके अलावा इसके बिना कुछ काम होता नहीं है। लेकिन जब यही पैसा लालच बन जाता है तो इस लालच के कारण बहुत सारा नुकसान भी होता है। तो पैसा जो है वह एक सोच और समझ के साथ आना चाहिए, और सोच और समझ के साथ संभालना भी चाहिए, है ना। चलिए मैं आपको अगला गीत सौंप रही हूँ। आप बताइएगा कि आपको लालच आया था कभी पैसा देखकर? किसी उम्र में तो आया होगा, किसी के पर्स में रखा पैसा देखकर लगा होगा, काश इतना मेरे पास होता। अरे मैं अपना बता देती हूँ, मैं तो बचपन में सोचा करती थी कि काश कोई बड़ा रईस आदमी आए, वो हमसे कहे चलो हम तुम्हें इस शहर में ले चलते हैं, बड़ा बना देते हैं। बैठे बैठे बड़े बनने के ख्वाब सबके होते हैं, है ना, आपके भी होंगे, मेरे भी थे, पर बाद में सत्य का पता चला। चलते हैं अगले गीत की तरफ। बताइएगा ये गायक कलाकार कौन है।

हम सुन रहे थे पापा कहते हैं फिल्म का यह गीत, और हमने पूछा था कि इसके गायक कलाकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया है, परंतु हम गीतकार जावेद अख्तर इसके हैं और राकेश रोशन ने इसे संगीतबद्ध किया है। और हमारे श्रोताओं ने जो उत्तर दिया वो बिल्कुल सही दिया कि कुमार सानू की इस आवाज़ को हम सुन रहे हैं। और हमने आपसे पूछा था कि आप बताइए कि आपको लालच किस चीज का है, तो हमारी श्रोता लिखती है, मुझे तो पति के पॉकेट से मिलने वाले पैसे का लालच आज भी है, जब भी उनके कपड़े धोती हूँ मेरी नजर पॉकेट पर ही रहती है, कुछ सिक्के भी मिल जाए तो खुशी होती है, वो नोटों की गड्डी से भी नहीं मिलती। बिल्कुल सही है, और ये तो हमारा अधिकार में भी आता है ना जी। और एक और श्रोता ने लिखा है कि एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें से एक ना गिरे। इसका उत्तर मुझे पता है, आपने उत्तर नहीं दिया था लेकिन मुझे पता है, आसमान। और मैं आपको अगली पहेली सुनाने से पहले एक पहेली दे रही हूँ, मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे, मैं हरी मेरे बच्चे काले है ना, और मुझे छोड़ मेरे बच्चे खाले, बताइएगा ये कौन है। मैं हरी हूँ, मेरे बच्चे काले हैं, मुझे छोड़ दे और मेरे बच्चों को खा ले, ये उत्तर है, इसका उत्तर आपको देना है। और इसके साथ ही अगली पहेली हम आपके बीच में पढ़ने वाले हैं, और अगली पहेली के साथ में जो अगला गीत है उस अगले गीत के गायक कलाकार का नाम भी आप बता दीजिएगा। हम आपके बीच में बस इस पहेली को पढ़ देते हैं। न खून का रिश्ता है न घर का नाम, फिर भी रहता हरदम साथ, हंसाए खिलाए दुख भी बांटे, बताओ कौन है इतना खास, और वो होता है दोस्त। चलिए इस दोस्ती के नाम ये गीत, बताइए गायक कलाकार कौन है।

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, मोहम्मद रफी की आवाज का में था यह गीत। और आपने बहुत सारे संदेश भेजे हैं, उन सब संदेशों को हम पढ़ देते हैं जल्दी से। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे, पांच भाई एक साथ घूसा मारता है, भात भी खाता है, पांच उसके साथ हैं, दोनों मिलकर करते हैं नमस्कार, बिल्कुल सही, और दोनों हाथ का पंजा, इसका इन्होंने कहा है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, ये इनकी भावना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं जब भी लॉटरी वॉटरी की टिकट रखती है तो उनको लगता है कि विदेश यात्रा मिल जाए तो बड़ा मजा आएगा। देखिए, लालच तो सबको होता है, पर ये लालच कोई थोड़ी सी भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को अपन देख सकते हैं। अब मैं अंतिम पहली की तरफ जा रही हूँ। सागर जिसके चरण पखारे, हिमालय जिसका ताज कहाए, अनेक भाषाएं अनेक रंग, बताओ वह देश कौन सा कहलाए। और हमारे देश का नाम है भारत, भारत, भारत। ये अद्भुत देश जो बहुत विशाल है, बहुत सुंदर है, और जिसका ताज, जिसके सर पर मुकुट है हिमालय जैसा, और जिसके चरण प्रतिदिन पखारे जाते हैं समंदर से, ऐसा देश वहाँ के अलावा और क्या हो सकता है। ये गीत मैं आपको सौंपती हूँ, और बताइएगा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, और पहेली वाला कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, बड़ा मजा आया होगा मुझे ऐसा लगता है।

0: Industries and Ambula, Sri Lanka. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
2: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय

0: ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी

0: भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी।
0: जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
3: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है, और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
0: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक के

0: प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

धवन के बोल और चित्रगुप्त के संगीत के साथ आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं डाक फिल्म से यह गीत। लता मंगेशकर की आवाज है, शैलेंद्र के बोल है, शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अपनेपन का गांव छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सदाबहार नगमे कार्यक्रम हम सुन रहे हैं।

0: हम हिंदुस्तानी फिल्म से हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में साहिर लुधियानवी की बोलों से सजे हुए उषा खन्ना के संगीत के साथ संगीतबद्ध इस गीत को। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है सदाबहार नगमे मॉडर्न गर्ल। इस फिल्म का यह गीत

जब प्यार किसी से होता है, फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है घराना फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल और रवि का है संगीत।

हम सुन रहे थे भाभी की चूड़ियां फिल्म का यह गीत आशा भोसले मुकेश की आवाज में महेंद्र नरेंद्र शर्मा के बोल और सुधीर फड़के ने इसे संगीतबद्ध किया। इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार नग्न में समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: Haley.
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी बहुत सारी सखियों सहेलियों और अन्य सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा का नमस्कार।
2: और मेरा भी अपने सभी जो भी सखियां हैं, जो भी सखा हैं, सभी सभी को, सभी श्रोताओं को और चंचल जी आपको नमस्कार।
1: आरती नमस्कार। हमारे सभी सुनने वाले बड़ी बेताबी से इंतजार करते हैं अपने पसंदीदा कार्यक्रम का। और बहुत सारे श्रोता हैं जो फेसबुक पेज से जुड़े हैं, लेकिन कुछ श्रोता हैं जो नहीं जुड़े हैं
2: जी।
1: तो आज किन विषयों पर हम बात करेंगे ये बता देते हैं। तो गर्मियों का समय है और पानी का बड़ा महत्व होता है। बहुत सारे लोग अनायास ही
2: बिल्कुल
1: बहुत सारा पानी खर्च कर देते हैं। तो किस तरह से इस पानी की बचत बहुत महत्वपूर्ण है, करनी चाहिए, क्यों जरूरी है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे।
2: और मौसम कोई भी हो, पानी तो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और पानी के बारे में आप हमें भी बताइए, आप किस तरीके से पानी की बचत करते हैं, आपको और लोगों को किस तरह से जागरूक करते हैं इस चीज के लिए। और साथ ही आज हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत ज़िनिया पर्सी मास्टर जी की, जो की है संस्थापक है ज़िनिया हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस की। और साथ ही हम हल्की फुल्की बातों में करेंगे बहाना ऐसा कौन सा है जो अक्सर काम कर जाता है।
1: बिल्कुल, ये बात तो बड़ी कहते हैं ना कि एक रोचक भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अपने आप को बचाने के लिए या सुरक्षित करने के लिए कोई ना कोई बहाना उनके पास में तैयार होता है।
2: और बहुत सारे लोग बहाने तो बनाते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं कि हाँ, नहीं झूठ बोल रहे, बहाना बना रहे। लेकिन आप कैसे, कौन सा बहाना बनाते हैं जो कभी पकड़ा नहीं जाता है,
1: और कौन सा ऐसा बहाना है जो अक्सर काम आता है आपके, आपको सुरक्षित रखने के लिए?
2: बिल्कुल,
1: बहाने क्यों बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, इन सब चीजों के बारे में ढेर सारी बातें होंगी। और मुहावरे की आज हम एक बात करते हैं। तो आज हमने जो मुहावरा चुना है वो है आम के आम,
2: गुठलियों के दाम। यानी वैसे भी आम का मौसम है ना, आम खाए जा रहे हैं।
1: हाँ, तो दोहरा जो फायदा है उसकी बात होगी, लेकिन भाई अब आम के आम गुठलियों के दाम तो जानकारी होगी, मनोरंजन होगा और गीत भी होंगे।
2: बिल्कुल। और चंचल जी मैं ये कहूंगी अपनी जो भी श्रोताएं सखियां हैं, जो भी सखा हैं, कि आप उसमें आम के आम जो गुठलियों के दाम मुहावरा है ना, खाली इसका अर्थ ही मत लिख के भेजिए, क्योंकि अर्थ तो चलिए हमने समझा, आप थोड़ा सा उसके बारे में और रोचक बना के भेजिए उसको।
1: बिल्कुल, सुनने से ही पता लगता है कि दोहरे फायदे की बात हो रही है, तो उसका अर्थ तो सभी जानते हैं, लेकिन आप कि जीवन में दोहरा फायदा किस तरह हुआ, मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम,
2: और आपने किसी को ऐसा दोहरा फायदा पहुंचाया हो तो वो भी बताइए।
1: तो भाई कार्यक्रम में कैसे होते हैं आम के आम गुठलियों के दाम,
2: गीत सुनने से
1: जी।

0: तो कोरा कागज यानी कि बहुत सारी चिट्ठियां पहले हमें मिला करती थी, लेकिन अब हमें संदेश मिलते हैं हमारे सुनने वालों के।
1: और अभी हम जो सेगमेंट सबसे पहले लेने वाले हैं वो है हमारा सखी विशेष, यानी अपने सखी विशेष के बारे में कुछ बातें बता,
0: हम बात करेंगे ज़ीनिया पर्सी मास्टर के बारे में।
1: जी, तो ज़ीनिया पर्सी मास्टर भारत की एक जानी मानी महिला उद्यमी हैं जो बिजनेस और फाइनेंशियल रणनीतिकार हैं। और ज़ीनिया एक व्यवसायिक परिवार से आती हैं, उनके परिवार का लॉजिस्टिक्स और बिजनेस क्षेत्र में लंबे समय से संबंध रहा है।
0: ज़ीनिया पर्सी ने स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध गिलियन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस और रेवेन्यू मैनेजमेंट में पढ़ाई की। इसके अलावा उन्होंने लंदन में फिट्ज़ी विलियम इंस्टीट्यूट से इवेंट मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी लिया हुआ है।
1: और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दुबई और अन्य स्थानों पर होटल इंडस्ट्री में काम किया। उन्होंने प्री ओपनिंग टीमों में भी काम किया जिससे उन्हें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का व्यवहारिक अनुभव मिला। और साल 2013 में उन्होंने अपना फ्रीलांस इवेंट से शुरुआत की।
0: और इसे पहले ज़ीनिया इवेंट्स कहा जाता था। बाद में 1 अगस्त 2014 को उन्होंने अपनी कंपनी ज़ीनिया हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस को आधिकारिक रूप में स्थापित किया। और ये कंपनी इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और रणनीति साझेदारियों के क्षेत्र में कार्य करती है।
1: जी, उन्हें विशेष रूप से लग्जरी हॉस्पिटैलिटी, कॉरपोरेट गवर्नेंस और इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कामों के लिए जाना जाता है। उनकी कंपनी मुख्यतः वेडिंग प्लानिंग, कॉरपोरेट इवेंट्स, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और डेस्टिनेशन इवेंट्स, लग्जरी गेस्ट जो मैनेजमेंट होता है वो सेवाएं प्रदान करती है।
0: और उनका काम वी इन्वाइट यू यू ओन इवेंट इस विचारधारा पर आधारित है, यानी ग्राहक अपने कार्यक्रम का पूरी तरह से आनंद ले और बाकी व्यवस्था सब कंपनी संभाल लेगी। हॉस्पिटैलिटी के साथ साथ वो कॉरपोरेट गवर्नेंस में भी सक्रिय हैं।
1: जी, वो कुछ बड़ी और प्रसिद्ध कंपनियों में निदेशक के रूप में भी जुड़ी हुई हैं। और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कॉमेडी क्लब और लाइव इवेंट्स में काम करते हुए उन्हें अपने व्यवसाय की प्रेरणा मिली थी।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम सखी सहेली, और अब जो बातें होंगी वो होंगी पानी के बारे में, पानी की बचत के बारे में।
1: बिल्कुल, पानी, और देखो पानी का जो रहते कहते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा,
0: पानी का कोई रंग नहीं है फिर भी हर एक की जरूरत है। कहते हैं कि जिंदगी अगर है तो पानी सबसे जरूरी चीज है हमारे लिए।
1: और जितनी भी सोचिए सभ्यताएं बसी, जितनी भी हमने प्रगति करी, वो सब कहां, सिर्फ नदियों के किनारे बसी
0: जी,
1: जिससे कि हमारे देखो जीवन के लिए जरूरी क्या चीज है, पानी। और अभी कुछ रिसेंटली हम लोगों ने अभी कुछ खबरें भी सुनी कि किस तरह से पानी नहीं मिलने की वजह से 50 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो ये सोचिए, ये हमें जागरूकता का विषय भी है कि अभी से हमें चेत जाना चाहिए कि अगर पानी नहीं होगा तो हमारे पास कल भी नहीं।

0: से वेस्ट ना करें। पानी के बहते नल को बंद करना जरूरी है। वर्षा का जल का संचयन करना चाहिए जो साल भर तक शुद्ध रह सकता है। यदि हम समय पर सतर्क नहीं हुए तो जल बिन मछली जैसे तड़पती है, वैसे ही कभी हमें भी तड़पना होगा।
1: बिल्कुल, और कह सकते हैं कि जल की हर एक बूंद में जीवन का विस्तार है। सूखी धरती की प्रार्थना का ये मधुर उपहार है। मत छीनो इसकी सांसें, मत इसका मान हरो, जल बचेगा तो ही जग में मानवता का श्रृंगार है।
0: बिल्कुल सही है आरती, क्योंकि जल ही जीवन है। ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि बहुत बड़ी सच्चाई है। पृथ्वी पर जीवन का आधार जो है वो कह सकते हैं कि पानी है
1: जी।
0: पीने के लिए, खेती के लिए, बड़े बड़े जो उद्योग चलते हैं उनके लिए, स्वच्छता रखने के लिए भी, अगर हमें घर को अपने आप को स्वच्छ रखना है तो उसके लिए भी पानी जरूरी है, और पर्यावरण संतुलन के लिए भी पानी जरूरी है। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या, जल प्रदूषण और पानी का जो दोहन हो रहा है सबसे ज्यादा, उसके कारण जल का संकट दिनों दिन बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल, और चंचल जी सबसे बड़ी बात यह है ना, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी है
0: जी,
1: ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पे जीवन भी पनपा, क्योंकि कहते हैं ना महासागरों में सबसे पहले जीवन पनपा था। तो ये सोची कि अगर हम यहाँ पे अगर जल को ही खत्म कर देंगे तो फिर हमारा अस्तित्व ही कहाँ बचेगा। तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से पानी को जरा सा भी ना बर्बाद करें। जैसे छोटे बच्चे, उनको अकल नहीं है, तो अगर उस चीज को वो कर रहे हैं तो उनको समझाइए, सिखाइए। अभी से हम सिखाएंगे तो ही वो आगे जाके समझेंगे।
0: इसी पर हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत कैसे ना करें। कपड़े बर्तनों को धोया पानी कपड़ों में डालकर नल खोलकर कोई काम ना करें। मग्गे बाल्टी पानी का इस्तेमाल करें जिससे पानी की मात्रा कम खर्च होगी। और इस समय गर्मी के मौसम में पंछी जानवरों के लिए भी पानी जरूर से रखें। पेड़ पौधे लगाएं, आसपास गड्ढे करें जिससे उनमें पानी का संचय हो सके। और छतरी रखकर टंकी को ओवरलोड किया हुआ पानी सीधा आप इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह निकासी करे हुए पानी को गड्ढों या पेड़ पौधों में छोड़ सकते हैं और पानी की बचत हम कर सकते हैं।
1: बहुत जरूरी है। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि आंखों में आंखों का पानी और धरा का पानी सूखना बड़ा ही दुखदायी होता है, जो अंदर तक दर्द के रेगिस्तान को जन्म देता है और जहां फिर प्रेम का अंकुर पर अपना मुश्किल हो जाता है, जीवन खतरे में आ जाता है। पिछले कुछ महीनों से लोगों को पानी के लिए भटकते देखते हुए मन में टीस सी उठती है, परंतु एक बार बरसात हो गई तो लोग भूल जाते हैं और फिर वही पानी का अपव्यय शुरू हो जाता है, जो कि बहुत चिंता का विषय है।
0: सही बात है, बारिश का जो मौसम है वो सिर्फ 3 महीने या ज्यादा से ज्यादा 4 महीने रहता है।
1: बिल्कुल,
0: इसके बाद के जो 8 महीने हैं उसमें पानी नहीं बरसता। इसी पानी से हमें बाकी के 8 महीने निकालने हैं, इसीलिए बचत बहुत जरूरी है। लेकिन इस समय कार्यक्रम में गीत सुनना भी जरूरी है
1: जी।

0: तो अब हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जिन्होंने अपना संदेश हमें लिखकर भेजा है वो बताते हैं। पानी की बचत के महत्व को लेकर हमारे श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अमूल्य संसाधन को सुरक्षित रख सकते हैं। हमें नलों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए और पानी का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। यदि हम आज पानी बचाएंगे तो भविष्य में जल संकट से बच सकेंगे। इसीलिए हमें जल है तो कल है के संदेश को अपनाकर पानी की एक एक बूंद की रक्षा करनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी की बचत का महत्व बहुत ज्यादा है, हम कई तरीकों से पानी को बचा सकते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि घर में नल को खुला छोड़ देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, मोटर लगाया है तो मोटर बंद नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज सही नहीं है। इस तरीके से हम पानी की बचत नहीं करेंगे तो कल को ये जल जो हमारा जीवन है ये हमारे आने वाले लोगों को पीढ़ियों को कैसे मिलेगा। तो पानी की बर्बादी को रोकने के लिए हमें कई तरीके से अपना सकते हैं। नल को खुला ना छोड़ें। अगर किसी के घर में टंकी है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि टंकी बंद करना भूल जाते हैं, तो उसको आप बंद करें सही समय पे करके, टाइमर लगाइए उसमें। और अगर किसी कोई इस तरीके के मतलब जो उन्होंने लिखी है इस तरीके की चीजों का आप पालन करेंगे तो आप पानी बचा सकते हैं। घर में किस तरह से बचा सकते हैं ये इन्होंने बताया। और साथ ही एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी को बर्बाद जो पृथ्वी का 70% पानी है वो जो 70% पानी है और मतलब पानी से ढका होने के बाद भी पीने लायक पानी जो है वो बहुत ही कम है। तो वही वो भी बता रहे हैं कि नलों को आप खुला मत छोड़ें, मोटर को बंद करें, और अगर कोई नल टिप टिप करता रहता है तो उसको भी ठीक कराइए। उसको ऐसे ही नहीं कि आपने से छोड़ दिया, अगर कहीं आपको बाहर भी ऐसा दिखाई दे रहा है तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो उसको आप ठीक करने की कोशिश।
0: बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है जब वो कपड़े धोती हैं या बर्तन धोती हैं तो नल चालू है, इधर कपड़ों पे वो साबुन लगा रही हैं, बर्तन को साबुन लगा रही हैं और पानी लगातार बह रहा है, तो उतनी देर के लिए जब आप साबुन का इस्तेमाल कर रही हैं, नल का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, तो आप नल को बंद कर दीजिए। इसी तरह से कुछ पुरुषों की आदत भी होती है जब वो सुबह सुबह शेव करते हैं तो इधर नल चालू है, यहाँ उधर काम चल रहा है उनका, तो उतनी देर के लिए जब तक आप शेव कर रहे हैं आपको अपना रेजर नहीं धोना है तो आप उसको बंद कर सकते हैं ना नल को। इसी तरह से महिला पुरुष बच्चे ये सबकी जिम्मेदारी है।
1: छोटी छोटी चीजें जैसे कि पानी पीते हैं तो हम पानी थोड़ा सा पानी पिए, दो घूट पानी पिए और पानी बाकी फेंक दिया,
0: आधा ग्लास पानी पीते हैं और आधा फेंक दिया।
1: पीने लायक पानी होता है, कितना कीमती पानी है उसको हम फेंक देते हैं यूं ही।
0: कई बार जब हम किसी समारोह में जाते हैं, किसी आयोजन में, उत्सव में जाते हैं तो आजकल पानी की बोतल देने का सबसे ज्यादा चलन है, तो वहां भी आधी बोतल पी के आधी बोतल को हम फेंक देते हैं, तो ऐसा ना करें। आप बची हुई आधी बोतल पानी को अपने पास ही रखिए ताकि दोबारा जरूरत पड़ने पर एक नई बोतल का इस्तेमाल करने की बजाय आप उसी बोतल के पानी का फिर से इस्तेमाल कर सके। और इसी तरह से एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि पृथ्वी पर अगर पानी नहीं होता तो ये अन्य ग्रहों की तरह सूखा और वीरान होता। पानी की बचत आज समय की सबसे बड़ी मांग है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी बहुत सीमित है और बढ़ती आबादी के साथ इसका संकट भी गहराता जा रहा है। पानी की एक एक बूंद बचाना पर्यावरण और भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यकता है, जबकि इसकी बर्बादी गंभीर परिणाम ला सकती है। घर में किसी भी नल या पानी से पाइप टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक करें। ये बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है, तो अगर सभी जागरूक हैं तो जो जागरूक नहीं है उन तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए। आगे उन्होंने लिखा है कि आजकल सभी घरों में वाटर प्यूरिफायर लगे हुए होते हैं और सबसे अधिक पानी की बर्बादी यहाँ होती है, तो कुछ लोग इसे संग्रहित करके पौधों में डालते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
1: और अगर आप कपड़े धो रहे हैं या इस तरीके का पानी आपका बच रहा है या आपने सब्जियां धोई तो वो पानी जो आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, अलग से आपको वहां पे पाइप लगा के डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बहुत ज्यादा पानी की बर्बादी होती है पाइप लगा के जब हम पानी डालते हैं।
0: इसी तरह से बहुत से लोग एसी लगाकर जब घर में रहते हैं तो उसके पाइप से जो पानी कर धीरे गिरते रहता है और बाल्टी में जमा हो जाता है, तो उसको भी आप पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बार छत या आंगन धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो इस तरह की आप छोटी छोटी चीजें भी करेंगे ना तो बहुत सारा पानी बचेगा, और बहुत जरूरी अपने जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि अब अगली जो युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा तो इसलिए हम उस युद्ध को रोक सकते हैं होने से।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो उसके लिए हमें, क्योंकि अब देखिए खरीद के हमें पानी पीना पड़ता है, अगर हमें साफ पानी चाहिए तो जरूरी है पानी की बचत करनी।
0: तो बातें और भी बहुत सारी करनी है लेकिन इस समय

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा।
1: और मैं हूं आरती श्रीवास्तव।
0: और हम बात कर रहे थे पानी की बचत के बारे में। तो बहुत अच्छे अच्छे संदेश हमें मिल रहे हैं श्रोताओं से। एक श्रोता ने लिखा है कि सभी इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ जल की उपलब्धता से बीमारियों को भी रोका जा सकता है। पानी की कम खपत से प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदियों, झीलों पर दबाव घटता है, जिससे जलीय जीवों और जैव विविधता का संरक्षण होता है। जनसंख्या और पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है। समझदारी से पानी का इस्तेमाल करने से पीढ़ियों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
1: बिल्कुल। और साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम जब नहाते हैं तो ढेर सारा वो शॉवर चला के नहाने की आदत होती है ना, तो बहुत सारा पानी बर्बाद होता है। अब तो उससे बाल्टी से नहाइए, मग्गे से नहाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। बल्कि जो इस तरीके से पानी की जो वेस्टेज है, जो बर्बादी है, वो भी रुकेगी। और साथ ही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, जो वर्षा का जो जल होता है उसको भी आप इकट्ठा करके रख सकते हैं, जिस तरह से वो बना के बताया गया, जैसे हमारे श्रोताओं ने भी बताया। इस तरीके से आप पानी की बचत ज़रूर करिए।
0: और जैसे कहते हैं कि जो चीज हमें फ्री में मिलती है, मुफ्त में मिलती है, कई बार उसकी कदर नहीं होती। जिस तरह से हवा हमें मिल रही है, जो जीवनदायिनी ऑक्सीजन हमें जहां से मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते। पेड़ों का कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। इसी तरह से जब वर्षा का जल हमें कोई बिना कीमत चुकाए वो वर्षा जल हमें मिलता है, हम उसका संचय करते नहीं और बाद में वही पानी हमें खरीद कर लेना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया भर में जहां जल संकट अति का बहुत ही ज्यादा है। वहां चाय की कीमत से ज्यादा पानी की कीमत होती है, ऐसा हमारे श्रोता भी लिखकर बता रहे हैं कि चाय या अन्य चीजें वहां सस्ती मिल सकती हैं, लेकिन पानी वहाँ पर बहुत ज्यादा कीमत देकर खरीद कर वो लोग लेते हैं।
1: और जब से मैं बताऊं कि मैंने तो ये चीज खबर सुनी तो सच में अजीब सा ही लगा। अब जब भी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो खुद ही एकदम सचेत हो जाती है। बस सोच के कि सोचो उस समय उन लोगों को सिर्फ एक दो बूंद पानी मिल जाती तो उनकी जान बच जाती। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, पानी का क्या महत्व है। जब तक हमारे पास बहुत पानी आ रहा है, हम पानी पी रहे हैं, फेंक रहे हैं, और जब जिस समय कहते हैं ना कि अब पानी कटौती होने वाली है या पानी दो दिन नहीं आने वाला, तब लगता है अरे यार अब कैसे होगा, अब का ऐसे काम चलेगा। तो हमें सोचना चाहिए इसी तरह से, समय से आप काम करना चाहिए कि अब पानी नहीं आए तो हम क्या करेंगे।
0: एक दिन की कटौती में अगर हम इतना परेशान हो जाते हैं, अगर ये कटौती पानी को बहुत जल्द से अगर घट गया तो बहुत ज्यादा अगर होने लगी तो कितना हम परेशान होंगे। उस परेशानी से बचने के लिए महत्व इसका हम बता रहे हैं। और आप सुन लेते हैं गीत।

0: पंखुड़ियां बच गई, वो एक नर्सरी को बेच दी ताकि नए पेड़ आम के लगाए जा सके। तो यानी कि जो मूल चीज है उससे तो आपने मुनाफा कमाया ही, लेकिन जो बची हुई चीज है उससे भी आपको मुनाफा मिला, दोहरा फायदा, दोहरा लाभ, डबल मुनाफा। इसीलिए कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम,
1: गुठलियों के दाम भी उसने ले लिए और खाली उसी ने नहीं ली, पेड़ लगाने से सबको फायदा हुआ, तो बहुत अच्छी चीज है।
0: तो ये तो समझ कहावत है, लेकिन बहुत सारे इसी तरह से हम काम करते हैं कि दोहरा फायदा हमें मिलता है। तो हमारे श्रोताओं के साथ क्या अनुभव रहे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई।
1: बिल्कुल, तो हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम ये बहुत ही लोकप्रिय मुहावरा है, जिसका मतलब एक ही काम या किए गए प्रयास का दोहरा लाभ प्राप्त होना है। जैसे कि मैं ठहरा बुजुर्ग व्यक्ति, मेरे लिए सखी सहेली सुनना और कमेंट लिखना समय जो प्रसार करने के साथ साथ मनोरंजन और उपयोगी जानकारी प्राप्त करना होता है। मतलब आम के आम और सखी सहेली के नाम।
0: हमारे श्रोता लिखते कि आम तेंदुआ हम रोज ही खा रहे हैं और गुठलियों को सहेज कर रख दिया जाता है ताकि जब बारिश आएगी तो इन्हें उगा देंगे। तो हो गया ना आम के आम और गुठलियों के दाम, एक पंथ दो काज की तरह ही होती है ये कहावत।
1: जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और एक और हमारे श्रोता जो कहते हैं कि इसमें इसे अंग्रेजी में टू बर्ड्स विद वन स्टोन भी कहा जाता है, यानी कि एक तीर से दो निशाने। मतलब एक ही मुहावरा है, उस मुहावरे को बहुत कई तरीकों से कहा जाता है।
0: एक पंथ दो काज, आम के आम गुठली के दाम और एक तीर से दो निशाने, लगभग एक जैसा ही अर्थ है इन बातों का।
1: बिल्कुल, और व्यवहारिक जीवन में इसको कहा जाता है कि यदि कोई छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी पुरानी किताबें अच्छी कीमत पर बेच देता है तो उसे दोहरा लाभ होता है। और व्यापार की बात करें तो जब कोई किसान आम बेचने के साथ साथ उसकी गुठलियों या छिलकों का उपयोग करके अचार, तेल या अन्य उत्पाद बनाने के लिए करता है तो आम के आम और गुठलियों के दाम भी, तो सच में एकदम सही बैठा कि उन्होंने आम खाया और गुठलियों से उसके छिलकों से अचार भी बना लिया।
0: और आगे एक श्रोता का संदेश है कि ये मुहावरा हमें संसाधनों का सही उपयोग करने और अवसरों का पूरा लाभ उठाने की सीख देता है। दैनिक जीवन में जब किसी व्यक्ति को एक प्रयास से कई फायदे मिलते हैं तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि मुहावरा आज भी उतना ही प्रासंगिक है और लोकप्रिय भी है।
1: बिल्कुल, और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि भाषा की सुंदरता वृद्धि में मुहावरों और कहावतों का महत्वपूर्ण योगदान भी होता है। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ ही है उपभोक्ता के पूरे पैसे वसूल। वार्तालाप या कहानी लेख में विषय संग वस्तु का कोई संबंध नहीं रहते हुए भी वस्तु अपनी उपयोगिता, गुण और महत्वपूर्णता की उपस्थिति दर्ज करा ही देती है।
0: और हमारे श्रोता तैयार हो जाए भी अपने बहाने बनाने के लिए, जिन्हें वो अक्सर काम में लेते हैं, लेकिन तब तक एक गीत सुन लेते हैं।

0: आरती, अक्सर हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए बहाने का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ बहाने मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सभी के द्वारा, कि बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ या 5 मिनट में पहुंच रही हूँ, या अगर फोन नहीं उठाया तो क्या बोलते हैं, भाई मेरा तो फोन ही साइलेंट पे था इसलिए कॉल नहीं देखा, या कहेंगे कि नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, कहीं अगर समय पे ना पहुंचे तो कहेंगे भाई ट्रैफिक बहुत मिल गया, और अगर समय पे ना पहुंचे या फोन भी नहीं देखा तो अगर मैसेज करने की बात हुई मैसेज करना भी भूल गए, अचानक से बहुत जरूरी काम आ गया, फोन की बैटरी खत्म हो गई, इस तरह के ब्ला ब्ला बहुत सारे बहाने हैं जो बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है बहाने के बारे में, अब ये बात है पढ़ने वाली।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बहाना बनाना कोई आसान काम नहीं है, सभी को उल्लू बनाना ये भी आसान काम नहीं है, अगर बहाने में वफाएं हो तो तूफा भी किनारा है, वरना साहब के गुस्से से गिरती बिजली का नजारा ही नजारा है,
0: क्या बात है?
1: सामने वाला आसानी से विश्वास कर सके, ऐसा बहाना बनाओ कि हम राहत की सांस ले सके। ज्यादातर लोग तबीयत ठीक नहीं होने का बहाना बनाकर आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन ऐसे बहाने का उपयोग कब और कहां करना है ये सोचना चाहिए, नहीं तो आपके योग वियोग में बदल सकते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को लगने लगता है कि नहीं ये तो बहाना बनाया जा रहा है तबीयत खराब होने का, जो बच्चे अक्सर बनाते हैं स्कूल से छुट्टी लेने के लिए।
0: और बहाना जो अक्सर काम करता है, सबसे पहले तो बहाना विद्यालय में बच्चे होमवर्क नहीं करें और कहेंगे कि मैडम कर तो लिया लेकिन कॉपी घर पे रह गई, अब क्या कहें, और शिक्षक बहाना एक्सक्यूज किसी काम करने के लिए बचने के लिए, अपनी गलतियां छिपाने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए ये एक कारण होता है, यानी कि अलग अलग तरह का बचाव है।
1: बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण मिलने लगे तो समझ लीजिए बहाना है।
0: बिल्कुल, बहानों का इस्तेमाल लोग स्थिति से बचने के लिए, टाल मटोल करने के लिए या असफलता को सही ठहराने के लिए करते हैं, जैसे लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत था, तबीयत खराब हो गई, बैटरी खत्म हो गई, कोई जरूरी काम आ गया वगैरह वगैरह।
1: बिल्कुल, एक श्रोता है जो कहते हैं कि बहाने जो अक्सर काम आते हैं, इस विषय पर एक बहाना ऐसा है जो हम सभी ने कभी न कभी बहुत लोग अक्सर करते ही है, और वो भी सटीक लग भी जाता है, और वो है फोन कॉल से संबंधित। अगर किसी अनचाहे का कॉल अटेंड नहीं करना हो तो सीधा सीधा बहाना होता है, अरे फोन तो चार्जिंग पर लगा था या साइलेंट मोड में चला गया था। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल हटकर है, कोई भी रिश्ता झूठ से नहीं बल्कि सच से चल सकता है। ये तो आप सही कह रहे हैं कि अगर हम जबरदस्ती में बार बार बहाना करेंगे तो सामने वाले को भी एहसास हो जाएगा कि ये बहाना ही है।
0: और हमारे श्रोता ने लिखा है कि बचपन में जब भी स्कूल जाने का मन नहीं होता तो सबसे बड़ा अच्छा बहाना होता था कि पेट दुख रहा है, और अक्सर बच्चे ये बहाना करते हैं। और आगे श्रोता लिखते हैं कि बहाना जो अक्सर काम आता है, तो ये कहूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दफ्तर ना जाना हो तब भी हम यही बहाना बनाते हैं, घुटनों में दर्द है, कहीं जाना आना संभव ही नहीं है,
1: अक्सर होता है ऐसा। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि बहानों में हमारी श्रीमती जी का, हमारे जो श्रीमती जी है वो एक नंबर है, कुछ काम कहो तो बहाना बनाती है, तो मैं समझ जाता हूँ कि, और वो स्वयं काम कर लेता हूँ, और फिर वो कहती है मैडम अरे वाह तनिक थोड़ा धैर्य रखते तो हम कर ही देते, लेकिन इसमें हल्की फुल्की बहाने नोक झोंक प्यार और स्नेह है तो दोनों खुश हो जाते हैं, और फिर वो हमारी तारीफ भी करती है, भाई आप काम कर देंगे तो तारीफ तो आपकी होगी। बस अच्छी चीज है ये, इस तरीके का बहाना, और आप उनकी बात मान के थोड़ा बहुत काम का हाथ बटा देते हैं।
0: हमारे श्रोता ने लिखा कि बचपन में स्कूल जाने के नाम पेट दर्द का बहाना बनाया करते थे, पर मैंने एक बहाना अभी भी मारा है, मुझे सोशल मीडिया पर कुछ अटेंड करना था, स्कूल में ट्रेनिंग चल रही थी तो मैंने ऐसे

0: बहाना मार दी कि मेरा पेट खराब है, लेकिन मैं पकड़ी गई और मुझे स्कूल जाना ही पड़ा। और उस समय सोशल मीडिया पर प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाए, वो प्रोग्राम सोशल मीडिया पर भी आ रहा था और वीडियो पर भी था, लेकिन मैंने ना दे दिया और इसलिए सोशल मीडिया, लेकिन मुझे याद है कि मैंने क्या किया था।
1: हाँ, लेकिन अब सबको पता चल गया कि वो आपने बहाना बनाया था।
0: जी,
1: एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे हिसाब से हर व्यक्ति के अपने अपने बहाने होते हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार लोग वही बहाना चुन लेते हैं जो उस वक्त उनको सही लगता है। और मेरे साथ भी एक मजेदार घटना हुई। मेरा एक दोस्त का जन्मदिन था, मुझे उसे विश करना था। सुबह तक तो मुझे उसका जन्मदिन याद था, लेकिन दिन भर की व्यस्तता में मैं उसे विश करना भूल गई। शाम को जब उसका फोन आया तो वो मुझसे थोड़ी नाराज थी। तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार मुझे याद था, बस दिमाग से निकल गया। सच कहूं तो अरे हां मैं तो भूल ही गई थी, या मुझे याद था बस दिमाग से निकल गया, ऐसे बहाने हैं जो में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी जरूर इस्तेमाल करते हैं। मैं करती हूँ अक्सर, हालांकि कई बार ये सिर्फ बहाना नहीं बल्कि सच भी होता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच कुछ बातें सचमुच दिमाग से निकल जाती हैं।
0: तो चलो अब एक गीत सुन लें।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो आरती तुमने कभी कोई बहाना बनाया है? बताओ मुझे।
1: बनाए तो बहुत सारे बहाने मैं अक्सर बना लेती हूँ बहाने, लेकिन अभी मैंने बनाया था कि हाँ यही वाला कि मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ था इसलिए मैं उठा नहीं पाई।
0: ये जो है ना फोन साइलेंट पे था, बैटरी खत्म हो गई थी, चार्जिंग पे लगा था। आजकल क्योंकि जब कहते हैं भाई फोन करना भूल गए तो ये बहाना तो हर कोई बनाता है, या हम कहेंगे कि भाई घर पे कोई आ गया था, ये भी बहाना बहुत होता है। तो अब बहानों की बात चली है तो बताएं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। कहते हैं कि बहाने यानी दो तरह के होते हैं, इससे हमें नहीं मिलना होता है तो हमारे किसी से अगर हमें नहीं मिलना होता है तो हमारे पास 100 बहाने आ जाते हैं, और किसी से मिलना चाहते हैं तो बहुत बहाने हम निकाल ही लेते हैं। बस बहाने की ही बात है, मिलना ना हो तो हम बहाने बनाकर मिलने भी जाते हैं, ना मिलना हो तो बहाना बनाकर टाल देते हैं, और यही बता रहे हैं।
1: बिल्कुल। और एक हमारी श्रोता है जो लिखती है कि अभी कल की ही बात है, मैं अपनी बहन के घर आई हूँ, वो लोग कहीं घूमने गए, उनकी देवर की लड़की इतवार को मेरे साथ मेरे ही घर पर लंच करना चाह रही थी अपनी माँ के साथ, इतनी गर्मी हो रही है, मैंने बचने के लिए कहा कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही हूँ, इस तरह से मैं कहीं गई भी नहीं और घर में इतनी गर्मी में किचन में काम करने से बच गई। ये बहाना मेरे लिए बहुत लाभदायक रहा, लेकिन अब उनको पता चल गया अगर उन्हें सुना होगा प्रोग्राम,
0: अगर वो रेडियो सुनते हैं उन्हें रेडियो पर बात पता लग गई होगी
1: कि आपने बहाना बनाया था खाना बनाने से बचने के लिए।
0: तो और हमारे श्रोता ने लिखा है कि जब बहुत छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे तो एक तो बच्चों का कॉन्वेंट स्कूल और बहुत खर्च भी वहां पर था, और कई बार बजट डिस्टर्ब ना हो जाए तो कई बार बहाने बनाने पड़ते थे। जैसे एक बार बच्चों ने महंगी साइकिल लाकर देने को कहा तो मुझे बहाना बनाना पड़ा कि मेरे मित्र ने अपने बेटे के लिए जो साइकिल खरीदी थी वो 15 दिन में ही टूट गई और वो यहाँ बन भी नहीं पाती है, इसीलिए फैक्ट्री में जाकर चीज लानी पड़ती है तो बहुत पैसे लग जाते हैं। और इसी तरह बहाना बनाकर बच्चों ने जब साइकिल मांगने की जो जिद थी वो छोड़ दी।
1: बहुत बढ़िया बात है। और हम इस समय एक थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम पर भी हमारे जो एक सखी उन्होंने लिखकर भेजा है, कहती है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उसमें चूसने वाले आम बहुत आते थे, उसमें जब हम आम खा चुकते थे तो गुठली को मेरी दादी एक टीन के डिब्बे में इकट्ठा कर लेती थी, बाहर छत पर रखा डिब्बा बहुत दिन तक रखा रहता था और गुठली इकट्ठा होती रहती थी, और फिर बरसात में भी भीगती थी, जब बहुत सी गुठली इकट्ठा हो जाती थी तो उसी डिब्बे में उबाल कर ठंडा होने पर गुठली को तोड़कर उसके बीज को नमक लगाकर खाते थे। यही हमारा मुहावरा बन गया कि मतलब आम तो खाए गुठलियां भी खाएं।
0: अचार में भी कई बार गुठलियों का प्रयोग किया जाता है और गुठलियों में बड़ा अच्छा सा स्वाद होता है, लेकिन बहुत मीठा स्वाद होता है। हमारे पुराने फिल्मी गीतों में भी तो सुन लें गाना।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: दिल तो हमारा भी नहीं भरा अपनी सखियों से बातचीत करते करते, लेकिन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें जाना होगा, इसलिए ये था इस कार्यक्रम का आज का आखिरी गीत। लेते हैं विदा चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फिल्मी दुनिया के चमकीले सितारों से। आज एक ऐसी सितारा आ रही है जिन्होंने एक दिन नीले आसमान की तरफ देखकर ये कहा था।

0: जी हाँ, जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं और उनकी मौजूदगी से रोशन है हमारी दुनिया। आइए वहीदा रहमान से करते हैं ढेर सारी बातें अपने साथी कमल शर्मा के साथ।
1: प्रिय श्रोताओ, आज हमारे स्टूडियो में उतर आया है चौदहवीं का चांद। इन्हें इंडियन स्क्रीन की क्लासिक ब्यूटी कहा जाता है और इन्हें जाना जाता है अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए। आप समझ गए होंगे, जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में हमारी खास मेहमान हैं वहीदा रहमान जी। वहीदा जी, मैं अपनी ओर से विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। नमस्कार।
2: नमस्कार, शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आकर के आपको?
2: मेरे ख्याल से पहली बार आई हूँ मैं स्टूडियो में और अच्छा लग रहा है। अच्छा है
1: क्योंकि इस समय करोड़ों लोग आपकी बातचीत सुन रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से और जिन्होंने आपकी फिल्में देखी उन्हें बहुत सारी बातें याद आ गई होंगी, बहुत सारे सीन याद आए होंगे, कभी आपने उनको रुलाया होगा, कभी हंसाया होगा। मैं इससे पहले कि फिल्मों की जो आपकी यात्रा शुरू हुई, हम जानना चाहेंगे आपके बिल्कुल बचपन में जाना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहते हैं कहाँ आपकी पैदाइश हुई।
2: मेरी पैदाइश हुई चेन्नई के पास, एक जगह, छोटी सी जगह है, इसका नाम है चेंगलपेट।
1: अच्छा।
2: तो वहाँ पर मेरे वालिद साहब कमिश्नर थे, तो वहाँ पैदाइश हुई। मेरे ख्याल से कुछ घंटे डेढ़ घंटे का सफर है चेन्नई से वहाँ, मतलब मैं तमिलियन हूँ समझिए।
1: अच्छा, अच्छा। हाँ। लेकिन आपने शुरुआत की तेलुगु फिल्म से?
2: हाँ, वो क्या हुआ, मेरे वालिद साहब का ट्रांसफर हुआ करता था हर तीन साल, यू नो, पोस्टिंग होती थी जो आईएएस ऑफिसर्स की होती थी। तो हम विजयवाड़ा में थे, आंध्र प्रदेश में, तो मैंने कई बार डांस परफॉर्मेंस स्टेज पे दिए थे। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, 11-12 साल की। तो साउथ इंडियन मूवीज जो थी वहाँ से मुझे ऑफर्स आ रहे थे। अच्छा। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब ने कहा, ये उम्र बहुत छोटी है, अभी पढ़ाई भी नहीं ख़त्म हुई, तो अभी वैसे एज ए प्रोफेशन शुरू करने का इरादा भी नहीं था। मगर उसके बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो मैं 13 साल की थी। फिर भी मेरी मुझसे तीन बड़ी बहनें हैं, उन सब की शादी हो चुकी थी तो मैं रह गई थी, मेरी बारी थी शादी होने की। तो फिर इत्तफाक की, किस्मत की बात है मैं कहूँगी, फिर से ऑफर आने लगे साउथ से, मतलब मद्रास में। उस वक्त सारी इंडस्ट्री मद्रास में थी, वहाँ तेलुगु या तमिल दोनों फिल्में बनती थी। तो फिर जब एक ऑफर आया तो मेरी वालदा कहने लगी, नहीं अभी मेरे हस्बैंड नहीं हैं तो मैं नहीं इजाज़त दे सकती। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, एक्साइट हो गई। तो वो जो प्रोड्यूसर थे वो किसी जगह के आंध्र प्रदेश के छोटे से ज़मींदार थे, वो प्रोडक्शन में जा रहे थे। तो उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि नहीं, मैं रहमान साहब को जानता हूँ, मिल चुका हूँ, तो अभी वक्त बदल रहा है, इसको भी एक बाकायदा प्रोफेशन समझा जाता है और सिर्फ एक डांस ही तो करना है, स्टेज पे करती थी, एक फिल्में कर ले तो क्या हर्ज है। तो मैं तो बहुत मेरे पीछे पड़ गई मम्मी के कि प्लीज इजाजत दे दीजिए, करने दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो, अभी तक कोई लड़का मिला नहीं, चलो कर लेने दो। और फिर किस्मत की बात थी कि वो पहली फिल्म में जो एक सिर्फ मैंने फोक डांस किया था वो बहुत कामयाब हुआ, बहुत ही ज्यादा कामयाब हुआ, जो किसी को उम्मीद नहीं थी और मुझे तो

0: बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर वहां से सिलसिला शुरू हो गया।
1: कुछ बोल याद है उस डांस के जो बोल थे गीत के, कुछ याद है आपको?
0: पूरे तो याद नहीं है। हीरवा का साकारो रन्नो चिन्नन्ना आगे।
1: क्या बात है, क्या बात है, तो बहुत सुरीली भी। अच्छा, वो फिल्म कौन सी थी?
0: उसका नाम था रोजलू माराई, मतलब था कि डेज आर चेंज, विच लिटरली चेंज माई लाइफ एंड डेज। तो फिर वो बहुत कामयाब हुई फिल्म। तो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहने लगे, आपको पता है जब आपका गाना आता है और ख़त्म हो जाता है तो लोग पैसे फेंकते हैं स्क्रीन की तरफ। तो मैंने सोचा मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, फिल्मों में मैंने तो कभी नहीं देखा लोग पैसे फेंकते हैं और जब मेन आर्टिस्ट नहीं हो। तो फिर मैं और मेरी वालदा और मेरी बहन सब मिलके देखने गए थे थिएटर में। हाँ, तो वाकई लोग पैसे फेंक रहे थे और कहते थे इसको दोबारा दिखाया जाए। तो मेरी नहीं समझ में आया, दोबारा फिल्म एक चल रही है कैसे हो सकता है। तो फिर हमको वो एग्जिबिटर थे, उन्होंने कहा पॉसिबल है क्योंकि वो रील निकालते हैं फिर दोबारा चलाते हैं। तो कई शहरों में वो निकाल के फिर एंड के बाद, एंड से पहले मतलब वो गाने को दोबारा प्ले करते थे। तो वो इतना ज्यादा कामयाब हुआ था वो गाना।
1: क्या कह रहे हैं?
0: और फिर इसके लिए मैं अपनी डेस्टिनी पे बहुत मानती हूँ। और ये इसके सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस हो रहे थे पूरे आंध्र प्रदेश में, तो हम हैदराबाद गए। तो वहाँ इत्तेफाक से गुरुदत्त जी क्यों गए थे वो खुदा ही बेहतर जाने, वहाँ थे वो। तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में बैठे हुए थे, तो काफ़ी शोर शराबा, दो तीन मोटरें जा रही थी, लोग भाग रहे थे। तो उन्होंने पूछा भाई क्या हो रहा है बाहर? तो उन्होंने कहा एक बहुत कामयाब तेलुगु फिल्म बनी तो उसके आर्टिस्ट हैं तो लोग। अच्छा अच्छा। तो फिर वो उन्होंने गुरुदत्त जी से कहा कि उसमें एक नई लड़की ने काम एक डांस किया है वो बहुत कामयाब हुआ और उस लड़की का नाम है वहीदा रहमान। तो उन्होंने सुना के बोले वहीदा रहमान तो मुस्लिम लड़की होगी। बोले नहीं है भी मुस्लिम, तो उर्दू बोल सकती है? तो उन्होंने कहा हाँ जरूर बोल सकती है, क्योंकि क्या है डाउन साउथ इंटीरियर गांवों में वो अब तेलुगु बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में तमिल वाले तमिल बोलते हैं हालांकि है मुसलमान, केरला उस तरह मलयालम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये बोलती हैं। तो बोले आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा कल फंक्शन था तो स्टेज पे गए थे, वो स्टेज पे आर्टिस्ट आए थे तो मैं भी उसमें था, तो ये लड़की आई स्टेज पर उर्दू में बोल रही थी। बोले अच्छा, तो क्योंकि आजकल मुझे नए चेहरों की तलाश है तो ये क्या मुनासिब है कि मैं उससे मिल सकूं? तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने अपने हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनके जरिए एक मीटिंग अरेंज की, तो वहाँ मुलाकात हुई। तो कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई, थोड़ी देर 10-15 मिनट मैं और मेरी वालिदा थे, फिर चुप। कुछ खास कहा नहीं उन्होंने, ये नहीं कहा कि आप बॉम्बे आइए। खैर हम वापस मद्रास पहुँचे तो इस चीज़ को भूल गए हम। 6 महीने बाद फिर उन्होंने किसी को भेजा मद्रास, तो उन्होंने कहा हम मिले थे हैदराबाद में, उनको कहिए बॉम्बे आने के लिए, तो उनका टेस्ट फिर से लेंगे हम, फिर हम साइन करना चाहते हैं उस तरह से, यू नो।
1: तो उसके बाद में आपको सीआईडी मिली?
0: सीआईडी पहली मेरी हिंदी फिल्म थी और दूसरी प्यासा।
1: तो सीआईडी और प्यासे की बातें करें उसके पहले हम वेदा जी चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
0: मुझे प्यासा का वो गाना बहुत पसंद है जिससे मेरा काम लोगों को भी बहुत पसंद आया, जाने क्या तूने कही जाने क्या मैंने सुनी।

0: बहुत ही खूबसूरत गाना है और खास तौर से सचिन दा का जो म्यूजिक है उसका जवाब ही नहीं है। आप याद है जब आपने गुरदुत साहब के डायरेक्शन में पहली बार वो कैमरा फेस किया था, हिंदी की अगर हम बात करें, कौन सा दृश्य था, कुछ याद है आपको?
1: नहीं, पहले तो सीआईडी थी, उसके डायरेक्टर थे राज खोसला।
0: हाँ जी।
1: तो एक महीने दो महीने तो सिर्फ सीआईडी की शूटिंग हो रही थी, उसके बाद उन्होंने साइमल्टेनियसली दो तीन महीने के बाद प्यासा की भी शूटिंग शुरू हुई थी। और दोनों डायरेक्टरों में मैंने फर्क बहुत पाया, क्योंकि राज खोसला जो थे वो अच्छे डायरेक्टर थे फिल्मों में के लिए, मगर नए आर्टिस्ट को हैंडल करना उनको इतना नहीं अच्छा आता था। हालांकि गुरदत्त जी तो वो आर्टिस्ट की क्या परेशानी है वो सोचते थे, गौर से देखते थे, फिर पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ क्या है, आप समझ नहीं पाए या ये करते वक्त आपको किस चीज़ की तकलीफ हो रही है, तो उससे फिर लगता था कि हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। और राज खोसला थे कि ये ऐसे करना है, कर दिया, अगर कोई बात मेरी समझ में नहीं आए, और चूंकि मैं नई नई थी और बहुत शाई थी तो पूछती नहीं थी। यहाँ गुरदेव जी पूछते थे कि आपका कुछ प्रॉब्लम है लगता है, क्या है, क्या तकलीफ हो रही है, आपको डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है, तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता सकती हूँ कि ये नहीं हो रहा है मुझसे।
0: गुरदेव साहब हाँ को कैसा डायरेक्टर मानते थे?
1: डायरेक्टर तो वो बहुत ही बढ़िया थे, क्योंकि वो बहुत गौर से देखते थे, वो खामोश रहते थे तो स्टडी करते थे कि किस कौन सा आर्टिस्ट क्या का किस हद तक क्या क्या कर सकता है। उसीलिए उनके मेरे परफॉर्मेंस या माला सिन्हा के प्यासा में या रहमान साहब या जॉनी वॉकर या महमूद वगैरह, वो सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते थे, क्योंकि उनके वो समझते थे इनकी ये इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ।
0: उनके डायरेक्शन में कौन सा सीन आपको सबसे बेहतरीन लगता है?

0: डर लगता है अपना, कौन सा सीन?
1: कागज के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है, इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर है वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं मगर बिना लिप मूवमेंट के, ये जैसे दिल की आवाज है। और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा ये कैसे गाना होगा, तो बोले आप कीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये इससे फीलिंग है, ये लड़की अब वो इसमें नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स को, जैसे शॉट्स होंगे उस पे वो जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा।
0: आपको सिर्फ एक्सप्रेशन लाने चाहिए।
1: हाँ, एक्सप्रेशन लाने थे और उसमें तो मैं कहूंगी एक्सप्रेशंस बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉइट किए और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज एनहांस हुई थी मन और बढ़िया दिखती थी।
0: आपने जिस गाने का जिक्र किया कागज के फूल का, ये गाना भी बड़ा हॉन्टिंग
1: हाँ
0: है और इसकी मेलोडी जो है आज तक हाँ बहुत दिल को छू लेने वाली है।
1: बिल्कुल,
0: क्यों नहीं गाना सुना जाए?
1: बिल्कुल क्यों नहीं।

0: वहीदा जी, कागज के फूल का हमने गाना सुना। ये एक जो फिल्म है इंडियन क्लासिक्स में इसका शुमार होता है, लेकिन ये फिल्म असफल रही और कई लोग कहते हैं वक्त से पहले बन गई थी इसलिए ऐसा हुआ, तो आपकी क्या राय है?
1: ये सही बात है, वो वक्त से पहले बनी थी और जब पूरी फिल्म बन गई थी तो ट्रायल पे हमने सबने देखी तो सब एक दूसरे आपस में बात करते हैं कैसी है क्या है, तो मैंने फट से कह दिया कि पिक्चर चलेगी नहीं।
0: तो आपने कह दिया?
1: हाँ, मैंने कह दिया। तो अबरार साहब जो थे, जो डायलॉग राइटर थे, उनको बहुत बुरा लगा, बोले अभी तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता क्या किस हिसाब से कह रही। मैंने कहा बहुत हैवी है पिक्चर, बहुत ज्यादा हेवी है, और पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि चलेगी नहीं क्योंकि इट्स टू सैड एंड टू हेवी। तो बोले अच्छा, एनीवे देखते हैं। तो वो इत्तेफाक से वो हो गई, तो इतनी उस वक्त कमर्शियली बुरी थी कि बहुत दुख तो हुआ और मुझे इतना शौक नहीं लगा कि मैंने कहा मुझे तो पता ही था कि पिक्चर नहीं चलने वाली,
0: लेकिन बाद में वो बिल्कुल ऐसे लगने लगा कि जैसे वो अपनी कहानी कह रहे हो।
1: नहीं, मगर जब वो गुजरे तो उनका डाउनफॉल तो नहीं हुआ था ना। उसके बाद चौदहवीं के चांद बनी तो सुपर हिट हो गई थी फिल्म, फिर अपने क्या बा? उसके बाद बनी थी साहब बीबी और गुलाम, उसको भी अप्रिशिएट बहुत किया गया, अप्रिशिएट, और फिर वो फेस्टिवल में गई थी।
0: अच्छा विधु जी, साहब बीबी और गुलाम का जिक्र आया है, डायरेक्टर के रूप में नाम आता अबरार अलवी साहब का, लेकिन पूरी फिल्म में ऐसा लगता है कि शैडो के रूप में गुरदत्त साहब मौजूद हैं। पूरी फिल्म में वो झलक जो है गुरदत्त साहब की जरूर दिखाई पड़ती है, उनके निर्देशन की झलक दिखाई पड़ती है।
1: अभी देखिए अबरार साहब क्योंकि उनसे उनके साथ शुरू से काम कर रहे थे तो नेचुरली उनका इन्फ्लुएंस तो होगा ही ना, तो उन्होंने हमेशा गुरदत्त जी के पॉइंट ऑफ व्यू से शूटिंग की होगी और डिस्कशन होते थे होंगे उन दोनों के आपस में, क्योंकि जब मैं अकेली काम कर किया जैसे चंद सीन्स थे जहाँ गुरदत्त जी नहीं थे तो उसमें गुरदत्त जी नहीं आए थे सेट पे, और जब गुरदत्त जी थे सीन में एज ए लीडिंग मैन तो नेचुरली होते थे, मगर जब ऑब्वियसली आई एम श्योर कि अबरार साहब और गुरदत्त जी के डिस्कशन जरूर होते थे होंगे आपस में कि इस चीज को इस तरह से किया जाए, इस तरह से किया जाए।
0: हमने सुना है कि उसमें जो छोटी बहू का किरदार जो मीना कुमारी जी ने प्ले किया वो आप करना चाहती थी।
1: बिल्कुल, जब कहानी सुनाई गई और नॉवल से लिया गया बंगाली नॉवल से, तो मुझे बहुत दिल किया कि मैं रोल करूं, तो गुरदत्त जी ने कहा देखो आप नहीं कर सकती ये रोल, तो मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा। तो मैंने कहा आपका मतलब ये है कि मैं अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूं? तो बोले नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है, आप समझ नहीं रही, एक एक मैच्योर औरत का रोल है, जो औरत अपने हस्बैंड के प्यार के लिए बहुत ज्यादा तड़पती जो उसको मिलता नहीं है, ये आप नहीं कर पाएंगी। तो फिर मैंने कहा क्या आपका मतलब कि औरत शादीशुदा होना चाहिए तो शादीशुदा औरत का रोल करें? नहीं, बोले वो नहीं, आप समझेगी नहीं, आप अभी बहुत छोटी हैं इस चीज को कि हाउ यू वेट एंड पाइन फॉर योर हस्बैंड। खैर फिर भी मैंने कहा नहीं, कुछ तो कोशिश तो करते हैं। तो उन्होंने वैसा गेटअप दे के स्टिल फोटोग्राफ्स लिए, लेने के बाद मूर्ति साहब जो उनके कैमरामैन थे वो हमने सब ने स्टिल्स देखे, मैं तो बड़ी खुश थी कि मैं बुरी नहीं लगती हूँ, अच्छी लग रही हूँ। तो मूर्ति साहब ने कहा नहीं, गुरदत्त जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप यू नो यू लुक वेरी यंग, कि ऐसा नहीं कि शादी हो के कुछ पाँच

0: करने लगे तो वो एक दिन घर पे आके लेंगे, देखो मैं पहली बार डायरेक्शन कर रहा हूँ, अगर आप नहीं करोगे तो लोग सोचेंगे क्योंकि मैं नया डायरेक्टर हूँ इसके लिए नहीं करें। मगर मैंने कहा उसकी तो कास्टिंग हो गई है अभी मीना जी के साथ। बोलेंगे जबा का रोल है वो भी तो कर सकते हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं कर लूंगी। तो गुरुदेव उन्होंने जाके गुरुदेव जी को बताया तो उनको ताजुबा, भाई तुम आप समझ नहीं रहे हैं, चौदहवीं के चांद के बाद आप एक बहुत बड़ी स्टार बन गई हैं, ये तो सेकेंडरी रोल है, टाइटल रोल नहीं है, क्यों करेंगी आप। तो मैंने कहा मुझे कोई हैंग अप नहीं है, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैंने कहा वो भी काफी इंटरेस्टिंग है जबा का रोल, डिफरेंट डेफिनेट कैरेक्टर है। तो बोले आप सोच लीजिए क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ आपको करने के लिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं अब्रार साहब ने इतना कहा तो मैं कर लूंगी, तो इसलिए मैंने किया।
1: तो इसका जिक्र चला है, क्यों ना इस फिल्म का कोई गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो।
0: एक तो मेरा अपना गाना है भंवरा बड़ा नादान, उसके इसमें जो शरारत कैरेक्टर की थी वो बहुत अच्छी थी। मगर उसका दूसरा जो गाना जो मुझे बहुत पसंद है कि ना जाऊं सैया छुड़ा के बैया।

0: अब इसके पहले बातचीत में आपने जिक्र किया था चौदहवीं का चांद का, एक बड़ी वो भी एक बहुत अलग तरह की फिल्म आपकी, बड़ी खूबसूरत फिल्म, और उसमें भी गुरुदत्त जी आपके साथ में थे, तो उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग कैसी थी बतौर, जैसे वो एक एक्टर एक्ट्रेस के बीच में जो एक ट्यूनिंग होनी चाहिए, कहते हैं कि वो बहुत जरूरी है, मायने रखती है, खासतौर से परफॉर्मेंस को लेकर के।
1: क्या हुआ, प्यासा जब शुरू हुई, क्योंकि कई सीन में गुरुदत्त जी नहीं सिर्फ डायरेक्ट कर रहे थे, तो मेरे दिल दिमाग में गुरुदत्त जी मोर अ डायरेक्टर देन एन एक्टर, तब तक आदत हो गई थी कि वो के समझने लगे हमारे प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करती है, अच्छा ऐसे नहीं हो सकता तो ऐसे कर लो, तो वो एक रैपोर क्रिएट हो गया था उनके साथ, हाँ इनके साथ बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई ये नहीं हो रहा है हमसे, तो वो समझाते थे, वो था। फिर

0: देख, फिल्मों की एक बड़ी अच्छी बात थी कि वो एक ही किस्म के नई फिल्में बनाते थे। जैसे CID बनाए, सस्पेंस थ्रिलर थी, फिर प्यासा इतनी सीरियस पोएट की थी, फिर चौदहवीं का चांद रोमांटिक मुस्लिम बैकग्राउंड पे थी, फिर साहेब बीबी खान, बड़ी वैरायटी हुआ करती थी, वो बड़ी अच्छी बात थी। और फिर चौदहवीं का चांद फिर उन्होंने खुद नहीं डायरेक्ट की, एम सादिक साहब ने की, तो तब मैंने पूछा ये किस लिए आप किसी और को दे रहे हैं, तो कहने लगे भाई कुछ भी कहो मैं तो रहूंगा सेट पे, मगर वो जो उर्दू जबान का वो जो मजा है वो कोई छोटी सी बात मैं नहीं समझ सकूंगा, क्योंकि ये मेरी अपनी जबान है ही नहीं। अगर सादिक बाबू करेंगे तो छोटी छोटी बातें होंगी, हाय अल्लाह कहने का भी अंदाज उनको जो मालूम होगा जो मुझे नहीं पता होगा, यू नो, और खासकर वो लखनऊ के हैं उस तरफ से, सही बात थी, तो उनका अगेन डिस्कशन जरूर होते थे होंगे, बट ऑन द सेट सिर्फ सादिक बाबू, ऐसा नहीं महसूस हुआ कि गुरदेव जी बैठे हो कह रहे नहीं आप बैठिए मैं ये शॉट ले रहा हूँ, ये वो उतनी रेस्पेक्ट देते थे अपने डायरेक्टर्स को।
1: आप लोग की राय ली जाती थी डिस्कशंस में?
0: नहीं, मैं तो यू नो ऐसी वैसी कोई बड़ी आर्टिस्ट नहीं थी कि मेरी राय ली जाए, अगर कोई गलत ऐसा लगे तो मैं पूछती थी लॉजिकली ये कैसे हो सकता है, तो कहते थे भाई आप लॉजिक में बहुत जाती हैं, एक चीज होती है फिल्मों में उसको कहते हैं सिनेमैटिक लिबर्टी, तो वो हमको लेनी पड़ती है।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान, इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा।
1: देव साहब के साथ में कैसी जुड़ी थी आप?
0: देव साहब के साथ क्योंकि पहले वो CID में थे तो मेरा उनका बहुत अच्छा एक वो भी अगेन ही वाज अ वेरी क्वाइट पर्सन, बट ही वाज नॉट अ टॉकेटिव पर्सन, मगर वेरी नाइस, वेरी डिसेंट और बहुत अच्छा था उनके साथ।
1: उनके साथ कोई यादगार संस्मरण आपका किसी फिल्म का?
0: हाँ, एक बार हम उनकी प्रोडक्शन थी काला बाजार नवकेतन की, उसकी शूटिंग चल रही थी ऊटी में, तो यूनिट होटल से कुछ डेढ़ घंटे की ड्राइव थी दूर लोग के आउटडोर शूटिंग के लिए जा रहे थे, तो यूनिट पहले जा चुका था, तो देव मैं और मेरी सिस्टर थी और मेरी हेयर ड्रेसर थी, हम जा रहे थे, देव ने कहा मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ, तो ठीक है। हो एक आधे घंटे के बाद देव कहने लगे, फॉग आने लगी पहाड़ियों में, तो कहने लगे वहीदा मुझे दिख नहीं रहा है। मैंने कहा क्या मतलब आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि पहले कभी मैंने उनको देखा नहीं चश्मा पहनते हुए, नहीं एक तो फॉग है, मैंने कहा हाँ फॉग तो है मगर ये क्या मतलब आपका दिख रहा है, तो बोले मैं चश्मा लगाते, तो फिर मैंने कहा आपने चश्मा क्यों नहीं लगाया, तो बोले जी मैं अपने कमरे में भूल आया, तो मैंने कहा अब क्या होगा, तो बोले ऐसा करो मैं गाड़ी रोकता हूँ तुम आगे बैठो और अपनी दीदी और हेडसे को पीछे बैठने दो और तुम मुझे बताते रहना राइट में लेफ्ट में जाना है। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है, फिर उससे बढ़कर टेंशन ये हुई, एक तो फॉग और पहाड़ी का रास्ता, आगे से एक मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था। ओह मैंने कहा देव भाई आगे से मिलिट्री कॉन्वॉय, और ये रास्ता इतना नैरो था कि कोई एक दूसरे को ये नहीं कह सकता, मैंने कहा अब तो मरवा दिया आपने, हम पीछे भी नहीं जा सकते और आगे तो जाना ही है, और वो जो ट्रक्स आ रही हैं, तो बोले मैं बहुत आहिस्ता चलाऊंगा। अच्छा आहिस्ता चलाइए, और कोई और रास्ता ही था। ओ इतनी टेंशन में हम अपने लोकेशन पहुंचे तो एक घंटा देर पहुंचे, तो वहाँ यूनिट वाले परेशान और विजय आनंद जो थे गोल्डी वो डायरेक्टर थे वो पहुंचे, भाई क्या हुआ आप लोगों को, तो मैंने कहा विजय आनंद को सब गोल्डी बुलाया करते थे, गोल्डी आपके भाई साहब चश्मा छोड़ा और फॉग थी और मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था, तो तुम्हें नहीं पता हम कितने टेंशन में खैरियत से पहुंच गए, तो दैट वाज अ वेरी डेंजरस एक एपिसोड हुआ था।
1: तो उसी फिल्म में भी गाने बहुत अच्छे हैं, कोई गाना याद करिए आप?
0: खोया खोया चांद।

0: वहीदा जी, गुरली साहब का भी जिक्र है और इसके पहले हमने बात की गाइड की, और गाइड में डांस बड़े खूबसूरत फिल्माए. वैसे गुरली साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं, और सुना कि उसका जो एक डांस का सीक्वेंस था जिसमें आप थोड़ी सी घबरा गई थी, वो कौन सा सीक्वेंस था जिसमें दीवार पे चढ़ के डांस करना था?
1: आज फिर जीने की तमन्ना है, बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज किया गया था. उसका जो मूड था वो गाने में, उस म्यूजिक में, उसके लिरिक्स में और पिक्चराइजेशन में इतना उभर के आया तो वो एकदम परफेक्ट था. तो चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे. कुछ खंडर थे वहाँ पर, वो ऊंची सी दीवार थी, कुछ 6-7 फुट की और ज्यादा चौड़ी भी नहीं थी, और बीच में एक गैप था. तो वो कहने लगे, आप इतनी खुश और इतनी, मतलब लिटरली जो आप कह रही हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, मगर खुश हैं. तो गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जप कर जाती हैं. तो मुझे थोड़ी कभी कभी हाइट से वर्टिगो सा होता है. मैंने नीचे देखा, मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने कहा टूटे हुए पत्थर, खंडर, मैंने कहा गिरे तो हड्डी तो जरूर टूटने वाली है, मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है? तो बोले 2-4 बार आप मेरे साथ रिहर्सल कीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि पैर ये हो तो रुक जाना. मैंने कहा वो तो बाद में पता चलेगा, पैर फिसलेगा तो फिसलेगा. खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं.
0: गाइड की पूरी बात कर रहे हैं तो भी कम है, उसमें बहुत सारे दृश्य एक से बढ़कर एक हैं. वैसे जी, उसमें आपने रोजी का एक करेक्टर किया था, और उस दौर में विमेन लिप की बात अगर हम कर रहे हैं या नारी की मुक्ति की बात करें, इस तरह के आंदोलनों का नाम भी शायद लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन रूसी एक ऐसा करेक्टर जिसने उस स्त्री की जो एक परंपरागत इमेज थी, ट्रेडिशनल इमेज, उसको तोड़ा उसने. वो विद्रोही उसमें रिबेलियस है. तो अमूमन इस तरह के खतरे लेने से जो अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां डरते हैं कि इससे उनकी इमेज पे फर्क पड़ेगा, पता नहीं पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी.
1: ये क्या हुआ, जब मैं फिल्मों में आई, मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि जो भी रोल हो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए. और क्योंकि हो सकता हमारी फैमिली में कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं था, परफॉर्मेंस से मेरा मतलब था. क्योंकि आजकल भी लोग पूछते हैं आपने CID का रोल कैसे किया, वो तो वैम्प का रोल था. फिर मैं कहती हूँ वो वैम्प का रोल नहीं था. अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से वैम्प वो होती है जो इंटेंशनली किसी का बुरा चाहती है. वो कैरेक्टर वैसा नहीं, तो वो फंसी हुई थी, एक गरीब लड़की थी किसी के चुंगल में, उनके कहने पे जो भी कर रही है वो कर रही थी. रोजी का कैरेक्टर रोल लिया, मेरे दूसरे डायरेक्टर्स उन्होंने कहा आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार.

मैंने कहा क्यों, तो बोले एक तो रोजी नाम है और पहले सीन में ये दिखाया जाता है कि आप शादीशुदा औरत हैं, उसके बाद जाके आपका राजू से इश्क होता है वॉटर, तो ये कैसे हो सकता है, ये तो नेगेटिव कैरेक्टर है। फिर मैंने कहा भाई मैं नहीं मानती नेगेटिव कैरेक्टर या पॉजिटिव कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर है, एक नॉवल लिखी गई है। और ये नहीं कि अक्सर फिल्मी कहानियां क्या होती हैं, दिमाग में जिस आर्टिस्ट को लेने वाले हैं उनके पर्सनालिटी के हिसाब से लिखी जाती है, ये एक प्रोफेशनल ऑथर ने लिखी, उसको हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक मेरी बन रही थी फिल्म नीलकमल, उसमें मेरा नाम था सीता और मनोज का नाम था मेरे ख्याल से राम ऑब्वियसली, तो वो उन्होंने बहुत ऑब्जेक्ट

आती है, ये एक प्रोफेशनल ऑथर ने लिखी, उसको हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक मेरी बन रही थी फिल्म नीलकमल, उसमें मेरा नाम था सीता और मनोज का नाम था मेरे ख्याल से राम, ऑब्वियसली। तो वो उन्होंने बहुत ऑब्जेक्ट

वो भी कंप्लीट कसम का रोल था, उसमें वेरिएशन बहुत थे इमोशंस के, कि एक तवायफ है, उसको किडनैप किया जाता है, फिर उसे शादी होती है, फिर वो माँ बनती है, कैसे उसमें चेंज आता है, कैसे वो अपने हस्बैंड को डाकू को समझाती कि भाई छोड़ दो इन सब चीज़ों को, सरेंडर कर दो, बच्चे की

0: बहुत अच्छा भी लगता था उन लोगों को देखकर, खुशी भी होती थी, दुख भी होता था, और काफी प्रोग्राम वगैरह हमने किए। फिर बांग्लादेश वॉर के बाद वहां भी गए थे ट्रूप को एंटरटेन करने के लिए।
1: तो ऐसा है कि कुछ देर पहले हमने मुझे जीने दो की बात की है, तो उसमें भी बहुत अच्छा संगीत है, उसका कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो?
0: उसमें जयदेव जी का म्यूजिक था।

0: एक और आपकी बड़ी ऑफबीट फिल्म रही है, बड़ी खूबसूरत फिल्म रही है, सुनील दत्त साहब ने उसका निर्माण किया, जयदेव साहब का उसमें संगीत था, रेशमा उषा और अमिताभ बच्चन साहब खासतौर से, जो अपने खूबसूरत और गहरी दानेदार आवाज के लिए जाने जाते हैं, असरदार आवाज के लिए जो उनके डायलॉग सुनने जाते हैं, उसमें उनको गूंगा बना दिया गया है और उसमें जयवंत भी थे आपके साथ में, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: रेशमा शेरा भी बनी, उसके आउटडोर्स खासकर बड़े इंटरेस्टिंग थे क्योंकि हमको टेंटों में रहना पड़ता था और जैसलमेर से कुछ 80 किलोमीटर आगे रेगिस्तान में, मगर बड़ा मजा आया। और हाँ, मैं मानती हूँ, मगर उस वक्त अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार नहीं बने थे और उससे पहले उन्होंने एक फिल्म की थी साथ हिंदुस्तानी, ये उनकी दूसरी फिल्म थी और सब उस वक्त सोचते थे कि इसमें अमिताभ बच्चन आगे क्या होगा इनका, क्योंकि एक तो माशाल्लाह बहुत लंबे हैं और सब कहते थे थोड़े ऑकवर्ड से लगते हैं उनकी लंबाई की वजह से, तो मैंने कहा सुनील साहब भी बड़े लंबे हैं, वो भी उनको 6 फुट तो होंगे ही, और जब पैकअप हो जाता था कुछ करने को नहीं, रेगिस्तान में टेंटों में रहते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उस वक्त अमिताभ ये जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा काम है, रोज ढोलकी बजा के गाया करते थे। मगर उनके एक दो शॉट देखे मैंने रेशमा शेरा में, तो जब सुनील जा रहे हैं तो माँ कहती है छोटू उसको ये खाना दे दे, तो भागते हैं तो तब तक वो ऊंट निकल चुके हैं, बहुत दूर चले गए, तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का जो एक्सप्रेशन था अमिताभ का जो बहुत अच्छा था, तो हम आपस में नरगिस जी हुआ करती थी बैठे, हम दूसरा शॉट हो रहा था तो बैठे गप्पे मार रहे हैं, मैंने कहा मुझे लगता है ये एक दिन बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे, तो बोले कैसे, एक तो

0: अपने बेचारे का तुम किस हिसाब से कह रही हो। मैं कहा नहीं, इस फिल्म में साइलेंट एक्सप्रेशन देना बहुत मुश्किल होता है। अगर इफ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ साइलेंट एक्सप्रेशन तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डायलॉग साथ में, मैंने कहा उसकी बाद उनकी आवाज इतनी अच्छी है, जब टॉकिंग डायलॉग हमें इन रोल मिल जाएगा, मेरे ख्याल से यू डू वेरी वेल। तो फीलिंग होती है कि ये बहुत बड़े आर्टिस्ट और स्टार बनेंगे, वो जो हो चुका।
1: मैंने तो अखबारों में पढ़ा कि अमिताभ बच्चन साहब ने भी कहा और अभिषेक बच्चन ने, उनके बेटे ने भी कहा कि हमारी फेवरेट एक्ट्रेस में से वेदा जी हैं। और अमिताभ बच्चन साहब की बात करें तो आपने उनकी नायिका की भूमिका भी की है और उनकी माँ का किरदार भी अदा किया। कैसे कलाकार आगे चल के लगे आपको, वो जो शुरू में वो जो बात होती थी उस समय, बाद में तो सब कुछ बदल ही गया है पूरा, उन्होंने साबित भी कर दिखाया, लेकिन आपका अनुभव कैसा रहा उनके साथ?
0: मेरा अनुभव उनके साथ बहुत ही अच्छा रहा है आज तक, रेशमा शेरा से लेकर आज तक। और क्या, हर इंसान बदलता है, उसमें बदलना भी चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। मगर मेरे साथ तो उनका स्वभाव, जो भी कहिए, उनके बच्चे जया, सब कुछ का बहुत ही अच्छा रहा है। और वो इतने ज्यादा प्रोफेशनल हैं, पंक्चुअल हैं, उनके साथ कई फिल्में काम की तो कोई तकलीफ परेशानी कुछ भी नहीं हुआ। ये नहीं कि बहुत बड़े स्टार हो गए, जब मैंने कैरेक्टर रोल शुरू कर दिए तो उनमें बदलाव आ गया कि नहीं, बहुत ही मतलब इट्स वेरी क्रेडिटेबल, बहुत ही अच्छा है उनका।
1: दिलचस्प सीन याद है उनके साथ किया हुआ आपको किसी फिल्म का?
0: हाँ, रेशमा और शेरा में वो न्यू कवर थे, एक सीन था एंड में कि मैं उसको तमाचा मारती हूँ बड़े जोर का, तो इत्तेफाक से आंटी बच्चन मतलब अमिताभ की वालदा सेट पे बैठी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले वहीदा बहुत जोर का नींद लगाना तमाचा। ओ, मैंने कहा, उधर से सुनील दत्त ने कहा जी एक कसके लगाइए ताकि रीटे की जरूरत नहीं। मैंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। फिर मैं वापस गई जहाँ आंटी बैठी थी, तो मैंने कहा आंटी आप क्यों नहीं थोड़ा बाहर घुमाइए, कितनी देर से गर्मी में कहाँ बैठी हैं आप सेट पे, आप जरा बाहर ताजी हवा खाइए। फिर कह लिए तुम पता है मुझे क्यों बाहर भेज रहे हो? मैंने कहा क्यों, तुम कस के मार। तो मैंने कहा देखिए, अगर मैं

0: कृष्णा कैसे वो एक मीठी सी चुबन एक हाँ बहुत मीठा गाना बहुत अच्छा है
1: एक मीठी सी चुबन एक ठंडी सी अगन

0: जडेजा जी, आपको अपनी मतलब किस फिल्म की भूमिका बहुत चुनौतीपूर्ण लगी, बहुत चैलेंजिंग लगी?
1: मैं तो कहूंगी गाइड का रोल, इसलिए तो 40 साल पहले बनी फिल्म, 40 साल हो गए हैं, बियॉन्ड इट्स टाइम, और इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट रोल. कभी वो रोल देख के ये नहीं लगा कि ये बुरी औरत है, यू नो, जस्टिफिकेशन था. और एक था, दे वर नॉर्मल कैरेक्टर्स, जैसे कि मार्को का या राजू का या रोजी का, कि हर इंसान हर वक्त कोई सेंट तो होता नहीं है और ना ही पूरा बुरा होता है. और एक पॉइंट आता है लाइफ में, सिर्फ जो अपने आप के लिए जीना चाहते हैं, जो भी चीज हम अपने लिए करना चाहते हैं. तो रोजी का पैशन था डांस करना, वो उसको मार्को से नहीं मिलता, तो उसको एनकरेजमेंट राजू से मिलता है. फिर एक पॉइंट आता है जहां सडनली राजू सेल्फिश हो जाता है, कि वो एक जगह एक सीन कहते हैं, अभी बस मैं रिटायर होना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ. राजू कहते हैं, नहीं अभी तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने हैं, अभी जल्दी क्या है. ये कहती है, नहीं मुझे बच्चे चाहिए. अरे बच्चे भी हो जाएंगे, इसकी क्या. उस वक्त राजू सेल्फिश हो जाता है, उसको एक अय्याशी की आदत पड़ जाती है, पत्ते खेलना, शराब पीना. वो कहते हैं, कहाँ से जिम्मेदारी लें शादी बच्चों की. सो हर एक मौके पे, कभी मार्को सेल्फिश हो गया था तो अपने पैशन में, तो उसने अपनी बीवी को भूल जाता है. अब रोजी पैशनेटली डांसर बनना चाहती, वो बन जाती है, फिर कहती है, नाउ आई वांट टू गेट सेटल्ड. फिर उस वक्त राजू कहता है, नहीं अभी कहाँ सेटल होंगे. तो ये चीज जो थी उसको बड़े डेलिकेट ये था. सो यू नेवर फील जब आप मूवी देखते हैं कि ये करेक्टर अच्छा नहीं है, ए बैड पर्सन. नो, नोबडी इज बैड एंड नोबडी इज गुड.
0: देव साहब के साथ में, और जो आपके नाम, क्योंकि वो भी बड़े सदाबहार अभिनेता रहे हैं और उनके साथ में आपकी बड़ी यादगार फिल्में रही हैं, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे उनके बारे में कुछ और. आपके मन की बातें कुछ और बताइए उनके बारे में, कैसा है उनके साथ में केमिस्ट्री थी आपकी खास. उससे एक होता है कि

0: अभिनेता और अभिनेत्री के बीच में एक वही ट्यूनिंग वाली बात है, फिर एक इंसान के रूप में भी हमारे रिश्ते होते हैं, कैसे थे वो?
1: जैसे मैंने कहा वो भी बड़े टॉकेटिव नहीं, उनको बात करने बाहर निकालना पड़ता था सवाल कर करके। तो हम प्रेम पुजारी जब सुनाने आए तो वो उनकी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू डायरेक्टोरियल मूवी थी, तो कहने लगे मैं पहली बार डायरेक्ट कर रहा हूँ तो तुमको तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है कर लेंगे,
0: इतना हक
1: हाँ हक जता रहे थे जैसे। तो बड़े कोऑपरेटिव, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती। जब हम यूरोप गए थे प्रेम पुजारी की शूटिंग के लिए, लंदन, स्विट्जरलैंड, बार्सिलोना वगैरह, तो वो काफ़ी केयर लेते थे बहुत अच्छी तरह से। तो ही इज वेरी नाइस एज ए प्रोड्यूसर,
0: और एक एनर्जी से भरे हुए
1: बेहिसाब। मैं तो उनको मजाक में एवर रेडी बैटरी बुलाती हूँ क्योंकि वो कभी थके कभी, मैं तो कहती भाई मैं थक गई अभी पैकअप कर लें, तो वो तो कभी नहीं कहते थे। वो उतने जब खासकर जब वो प्रेम पुजारी डायरेक्ट कर रहे थे तो शॉट देते थे, शॉट अरेंज किया ओके हो गया, फिर कैमरामैन को कहते थे ये शॉट है ऐसा है, फिर भाग दौड़ फिर वो पसीना पसीना हो जाते थे तो ऊपर कमरे में मेकअप रूम में जाते थे, फिर ताजी शर्ट पहन के आते थे ताकि पसीने वाली शर्ट नहीं हो शॉट के लिए। फिर वो हुआ, फिर उसको सुखाते थे, वो कहते थे, मैं कहती देव आप हमेशा ऑल द टाइम यू आर फुल ऑफ एनर्जी सो यू आई will call you ever ready battery.
0: अभी भी उनके अंदर जैसे एक नौजवान होता है और वो फिल्में बनाए जा रहे हैं, बेशक वो सफलता मिले ना मिले लेकिन वो कारवां नहीं रुका है, उनका जज्बा अभी भी वैसे ही है और फिल्में बनाए जा रहे हैं। तो अभी उनसे कभी फोन पे आपकी बातचीत होती, मुलाकात होती है?
1: नहीं, तो एक बार फिल्म खत्म हो जाती है हम कभी एक दूसरे से मिलते ही नहीं किसी से भी, क्योंकि सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। मेरे जो फिल्मों में दोस्त हैं वो एक्सेप्ट नंदा मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं, और उसके बाद सिवाय काला बाजार के बाद हमने कोई काम ही नहीं किया, मगर 40-45 साल की दोस्ती रही है। सलीम साहब हैं, यश जौहर हैं, जो जौहर थे बेचारे, उनसे उनकी फैमिली से वैसे भी काम से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि उनकी फिल्मों में तो यश जौहर के काम नहीं किया। हालांकि यश जौहर को मैं तब से जानती हूँ जब वो मुझे जूनियर में थे प्रोडक्शन कंट्रोलर, और फिर नवकेतन में थे गाइड के वक्त, प्रेम पुजारी में थे, तो तब से मुलाकात दोस्ती है, वो हमेशा मिलते रहे हम।
2: दोस्तों वहीदा जी से करने को इतनी सारी बातें हैं कि समझ में नहीं आता कहां से शुरू करें और कहां से खत्म करें। आज के कार्यक्रम का वक्त खत्म होने को आया लेकिन हमारी बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं, इसलिए वहीदा जी अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को फिर से रोशन करेंगी। भूलिएगा मत, अगले रविवार फिर से सुनिएगा सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम। हम आपको बता दें वहीदा जी से हमारे साथी कमल शर्मा ने बातचीत की। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी ने दिया। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा दे दें।

से कुछ ही पलों में 5:05 पर आप सुन सकते हैं गाने नए पुराने। शाम 5:30 पर हमारे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा युववाणी। शाम 6:00 हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार और प्रादेशिक समाचार। शाम 6:20 पर आप सुन सकते हैं गीता संदेश। गीता संदेश में आज गीता के 5वें अध्याय से श्लोक 16 से 19 की व्याख्या सुनिए। व्याख्याकार होंगे सोमनाथ शर्मा।

श्रोताओं, शाम 6:30 पर हमारे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा किसान वाणी, और शाम 7 कार्यक्रम ग्राम संसार। शाम 7:30 पर सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आपकी बात।

रात्रि 8 बजे आप सुन सकते हैं गीतों भरी कहानी। रात्रि 8:45 पर हिंदी में समाचार और उसके तुरंत बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार। रात्रि 9:15 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आपके लिए और 9:30 से 10 बजे तक सुनिए कार्यक्रम छाया गीत। ये दोनों ही कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से रिले किए जाएंगे।

रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक आप आनंद ले सकते हैं। आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित हमारा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चांदनी रातें हैं।

दोस्तों रात्रि 8 बजे से सुनना ना भूलें गीतों भरी कहानी। और आज जो हम आपको कहानी सुनवाने वाले हैं वो है रस्किन बॉन्ड की एक प्रसिद्ध कहानी, देवली की रात की ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, देवली की रात की ट्रेन, ये कहानी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। तो आप सुनना ना भूलें रात्रि 8 बजे गीतों भरी कहानी। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं गाने नए पुराने।

दोस्तों, अमर अकबर एंथनी फिल्म का ये गीत आपने सुना, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मुकेश और मोहम्मद रफी की आवाजों में। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। दोस्तों, अमर अकबर एंथनी फिल्म मनमोहन देसाई द्वारा डायरेक्ट की गई थी और एक ये मल्टी स्टारर फिल्म थी। ये जो गीत आप सुन रहे थे, ये स्क्रीन पर फिल्माया गया था अमिताभ बच्चन, प्रवीण बाबी, ऋषि कपूर, नीतू, विनोद खन्ना और शबाना आजमी पर।

दोस्तों, किशोर कुमार की आवाज में सागर फिल्म का यह गीत आपने सुना। इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीतकार थे आरटी बर्मन। दोस्तों, सागर फिल्म 1985 में रिलीज हुई थी और ये डिंपल कपाड़िया की कमबैक फिल्म थी, क्योंकि डिंपल कपाड़िया ने बॉबी फिल्म से जो धमाका मचाया था उसके बाद वो फिल्मों को छोड़कर चली गई थी। फिर 1985 में दोबारा से उन्होंने फिल्मों में कमबैक किया और ये फिल्म जो थी वो बेहद सफल फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रमेश सिप्पी ने और ये जो गीत आप सुन रहे थे स्क्रीन पर फिल्माया गया था ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया पर।

दोस्तों, कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाजों में दुश्मन फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीतकार थे उत्तम सिंह। साथियों, दुश्मन फिल्म 1998 में रिलीज हुई थी और ये जो गीत आप सुन रहे थे ये स्क्रीन पर फिल्माया गया था संजय दत्त और काजोल पर।

दोस्तों, द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का ये गीत आपने सुना आशा भोसले, अमिताभ बच्चन और शरद कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीतकार थे आर डी बर्मन। दोस्तों, द ग्रेट गैम्बलर फिल्म 1979 में रिलीज हुई थी और ये जो गीत आपने सुना स्क्रीन पर फिल्माया गया था अमिताभ बच्चन और जीना तमान पर। दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम गाने नए पुराने समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

दोस्तों आप सबका स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में। आज का युववाणी का ये अंक लेकर हाजिर है आपका दोस्त विपिन सहगल। युवा दोस्तों, आप अपनी जॉब के लिए या किसी कंपटीशन के लिए आप तैयारी करते होंगे, तो भाई आपको जनरल नॉलेज की तैयारी बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि जो सामान्य ज्ञान है वो भारत में लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे से तैयारी करके किसी भी एग्ज़ाम को यदि आप क्रैक करना चाहते हैं तो जनरल नॉलेज का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास आपके इर्द गिर्द चल क्या रहा है और पास्ट में इतिहास में क्या हुआ था और सरकार की क्या योजनाएं हैं। इस तरह की बातें आपको पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, आपको मनोरंजन के साथ साथ हम आपकी जो ज्ञान में वृद्धि है वो भी कराने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है वो आपके लिए बना है, आपकी तरक्की के लिए बना है और आप जीवन में सफल हों इसके लिए ही हम इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से ही कर लेते हैं। दोस्तों, आपको बताना ये है कि हिमाचल प्रदेश का कोल बांध किस नदी पर स्थित है। एक बार फिर सुनिए, हिमाचल प्रदेश का कोल बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता है तो जो हमारा नंबर है 9466021336 यानी 9466021336 इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप संदेश भेजिए अभी। यदि आपका उत्तर सही हुआ तो आपका नाम आज के ही कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा दोस्तों। तो भाई अब देर किस बात की है, आपको यदि इसका उत्तर पता है तो जल्दी से संदेश भेजिए, यदि आपको इसका उत्तर नहीं पता है तो भाई सर्च कीजिए, पढ़िए और जल्दी से बस हमें व्हाट्सएप संदेश भेज दीजिए। सुनते रहिए 101.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी कुरुक्षेत्र।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: दोस्तों आज है 9 जून और 9 जून को भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस मनाया जाता है। महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा के रूप में विख्यात बिरसा मुंडा ने 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की अल्प आयु में रांची जेल में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे दिया था। उन्होंने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और स्थानीय जमींदारों के शोषण के खिलाफ ऐतिहासिक महान विद्रोह का नेतृत्व किया था और उस विद्रोह का नाम था उल गुलाम। उन्होंने आदिवासी समाज के अधिकारों विशेष रूप से जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए एक नई चेतना और स्वाभिमान जगाया। आदिवासियों को एकजुट करने और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए बिरसा मुंडा ने बिरसा धर्म की भी स्थापना की। दोस्तों शहादत दिवस यानी कि आज के दिन 9 जून के अलावा भारत सरकार उनकी जयंती जो कि 15 नवंबर को मनाई जाती है तो 15 नवंबर को हर साल पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है बिरसा मुंडा का जन्म दिवस। तो दोस्तों ये थी जानकारी भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जिनका कि आज शहादत दिवस है 9 जून को। दोस्तों सुनते रहिए 101.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी कुरुक्षेत्र।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी अपने दोस्त विपिन सहगल के साथ। साथियों, जैसे कि हमने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में भी बात की कि यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि आपको करनी चाहिए, यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, कोई कॉम्पिटिशन का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो आपकी जनरल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको न केवल

भारत का जो आज है उसके बारे में पता होना चाहिए, बल्कि आपको भारत का जो इतिहास है उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत आपके साथ करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सल्तनत एक मध्यकालीन भारत का प्रमुख इस्लामी साम्राज्य था, जो कि 1206 से 1526 तक माना जाता है। और दिल्ली सल्तनत जो थी वो अपनी राजधानी दिल्ली से लगभग 320 वर्षों तक इस सल्तनत ने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। दोस्तों इस दौरान कुल 5 राजवंशों ने बारी बारी से दिल्ली की सत्ता संभाली। तो ये 5 राजवंश कौन कौन से थे वो हम आपको आज इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले तो गुलाम वंश हुआ, जिसको कि स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। ये 1206 से 1290 तक इन्होंने राज किया, और गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था। इस वंश के जो दूसरे प्रमुख शासक थे वो इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान थे। तो ये तो था पहला वंश, जिसको कि गुलाम वंश बोलते हैं, जिन्होंने 1206 से 1290 तक राज्य किया। फिर बारी आती है खिलजी वंश की, जिन्होंने 1290 से 1320 तक राज्य किया। दोस्तों खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, और इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी थे। इसके बाद तुगलक वंश ने दिल्ली पर राज किया, जो कि 1320 से 1414 तक माना जाता है। तुगलक वंश के संस्थापक दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक थे, और ये सल्तनत काल का सबसे लंबा चलने वाला राजवंश था। जी हाँ दोस्तों, तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत काल का सबसे लंबा चलने वाला राजवंश था। इस वंश में मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोजशाह तुगलक जैसे शासक हुए। उसके बाद बारी आती है सैयद वंश की, जिन्होंने कि 1414 से 1451 तक राज किया। इसके संस्थापक खिज्र खां थे। इस सल्तनत का एकमात्र शिया राजवंश था। और दोस्तों अंत में बारी आती है लोदी वंश की, जिन्होंने 1451 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। इसके संस्थापक बहलोल लोदी थे। ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र अफगान राजवंश था। 1526 में पानीपत का जो बड़ा फेमस युद्ध हुआ था, पानीपत के प्रथम युद्ध में इस वंश के अंतिम शासक जिनका नाम इब्राहिम लोदी था, उनको बाबर ने हरा दिया था। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये था दोस्तों बड़ी ही संक्षेप में दिल्ली सल्तनत का लेखा जोखा, जिसमें कि 5 राजवंश थे। और दोस्तों इस काल में कुतुब मीनार, अलकाई दरवाजा और कई मस्जिदें व मकबरे बनाए गए थे। इस वंश का जो सांस्कृतिक प्रभाव था वो ये था कि दिल्ली सल्तनत के दौरान फारसी भाषा यानी कि पर्शियन भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों ये हमने आपको जानकारी दी दिल्ली सल्तनत के बारे में। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ और आप दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ सकते हैं, ताकि आपकी नॉलेज तो बढ़ ही जाए और साथ साथ आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिले। दोस्तों अभी आप सुनते रहिए 101.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी कुरुक्षेत्र।

दोस्तों, कार्यक्रम के जो शुरुआत में हमने आपसे प्रश्न किया था, वो प्रश्न ये था कि हिमाचल प्रदेश का कोल बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सतलुज नदी। कोल बांध दोस्तों हिमाचल प्रदेश की सतलुज नदी पर स्थित है और इसे 2000 में शुरू किया गया था और ये राज्य की ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। सतलुज नदी दोस्तों प्रदेश की मुख्य नदियों में शामिल है। तो ये था आज के प्रश्न का सही उत्तर, और जिन श्रोताओं ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया, आइए अब आपको उन श्रोताओं के नाम बता देते हैं। जो सबसे पहले हमें सही उत्तर के साथ व्हाट्सएप संदेश मिला, वो मिला कैथल हरियाणा से जय भगवान शर्मा की तरफ से। एक और सही उत्तर स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वो है टिया कृष्णा सोलन हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से ही एक और आंसर हमें मिला है मोहित शर्मा और राजीव शर्मा की तरफ से। करनाल से मैसेज मिला है हमें मोहित बंसल, रोहित बंसल और कृतिक बंसल की तरफ से। एक और स्क्रीन पर सही आंसर नजर आ रहा है, वो हमें मिला है सहारनपुर से मोहम्मद आलम खान की तरफ से। तो दोस्तों, आप सबको बधाई, शुक्रिया, आपने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया और आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस प्रश्न का जवाब देने में। तो आपको बधाई, शुक्रिया, और हम आशा करते हैं कि आप यूं ही हमारे कार्यक्रम सुनते रहेंगे और यूं ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवाते रहेंगे। दोस्तों, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम आपसे कुछ और बातचीत करें। हम आपको इस गीत के साथ छोड़े जा रहे हैं। अब अपने दोस्त विपिन सहगल को यह कार्यक्रम जिसका नाम है युववाणी समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने ही वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके तुरंत बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार और प्रादेशिक समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद्य और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट के सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित एनटीए मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को लगाया गया है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। अमरीका के एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित $1,00,000 के H-1B वीजा शुल्क को रद्द करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। इससे कई कुशल भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन शुल्क को लगभग 2,000 से बढ़ाकर $1,00,000 करने की घोषणा की थी। श्रीलंका के दामोला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 48 ओवर में 7 विकेट पर 268 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने ऋतुराज गायकवाड़ के 101 रन की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media, New Delhi External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
1: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
3: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the Land Port Management System Vinimay in New Delhi to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across India's land borders. Addressing the gathering, Mr. Shah said, the initiative marks a significant step towards building a modern and technology-driven border management system. He said the platform is aligned with the vision of Viksit Bharat 2047 and will strengthen trade facilitation, connectivity and national security.
2: कि लैंड पोर्ट का तेजी से विकास होने के बाद
4: आफ्टर द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द लैंड पोर्ट नॉट ओनली हैज ट्रेड इंक्रीज्ड बट सिक्योरिटी हैज आल्सो बीन इंश्योर्ड इट हैज हेल्प ट्रांसफॉर्म इलीगल ट्रेड इनटू लेजिटिमेट ट्रेड इन द विजन ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज वेयर माइग्रेशन वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम द लैंड पोर्ट्स हैव मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन एड्रेसिंग दिस एज वेल
2: लैंड पोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है.
3: Defence Ministry has approved the establishment of a 250 megawatt solar power project with battery energy storage system BESS at Sitapur in Uttar Pradesh. This system will be established on approximately 850 acres of vacant defence land. This is the first of its kind project undertaken by the Ministry of Defence involving the development of a large-scale solar power generation facility with integrated BESS support on defence land. Prime Minister Narendra Modi held a telephonic conversation this afternoon with the Emir of Kuwait, Sheikh Mishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah. The two leaders exchanged views on the evolving security situation in West Asia. Prime Minister expressed deep concern over the escalation of tensions and reaffirmed India's strong condemnation of attacks on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He reiterated the call for de-escalation, dialogue and diplomacy for earliest restoration of peace and stability. Union Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda has said that in the last 10 years, the government is continuously strengthening the healthcare facilities for women during pregnancy through the Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan. Mr. Nadda said this while launching the nationwide celebrations to commemorate 10 years of the Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan in New Delhi today. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today visited the National Testing Agency headquarters and reviewed preparations for the re-NEET exam, which is going to be held on the 21st of this month. Talking to reporters outside the NTA headquarters in New Delhi, the minister said that the centre has ensured that all necessary measures are being taken while maintaining complete confidentiality from the preparation of the question papers to all subsequent procedures. In US, thousands of skilled immigrants are set to benefit after a federal judge struck down the Trump administration's proposed $1 lakh H-1B visa fee and called it unlawful. US District Judge Leo Sorokin issued the decision following a lawsuit filed by 20 Democratic State Attorneys General. The lawsuit challenged a policy announced by President Donald Trump in September last year that sought to increase the H-1B visa application fee from about $2,000 to $1 lakh. And that is the end of this news bulletin.

0: ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकेरती से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा विधानसभा की मेजबानी में चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में 40 वक्ताओं ने सर्वसम्मति से 4 प्रस्ताव पारित किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जागृत ग्राम पुरस्कारों के तहत 6 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज विभिन्न योजनाओं की कुल 2600 करोड़ रुपए की राशि जारी की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 जिलों में 350 अटल पुस्तकालयों का लोकार्पण किया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा की मेजबानी में चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन के जोन 2 सम्मेलन के आज दूसरे दिन प्रथम एवं द्वितीय सत्र में भविष्य की चुनौतियों से निपटने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में जागरूक समाज एवं विधायकों की भूमिका विषय पर मंथन किया गया। तीसरे सत्र के उपरांत मीडिया के साथ वार्ता करते हुए राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने बताया कि सम्मेलन में अलग अलग राजनीतिक दलों और अलग अलग विचारधारा के 40 वक्ताओं ने मिलकर संवाद किया और सर्वसम्मति से 4 प्रस्ताव पारित किए।
1: कार्यक्रम और जन जागरूकता पहल के माध्यम से विधेयक निर्माताओं और नागरिकों के बीच निकटता सुदृढ़ करना। संकल्प 2, निरंतर प्रोफेशनल प्रशिक्षण, बेहतरीन संदेहों के आदान प्रदान, आधुनिक तकनीकों के उपयोग और बेहतर अनुसंधान सपोर्ट के माध्यम से विधेयक निर्माताओं की क्षमता को सुदृढ़ करना। सम्मेलन ने माना कि प्रभावी शासन के लिए जानकार और सक्षम विधेयक निर्माता आवश्यक है। संकल्प 3, विधायी निगरानी को सुदृढ़ करना, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता का विश्वास बढ़ाना और नीति बनाने व उसे लागू करने में नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना।
0: उन्होंने कहा कि पहले प्रस्ताव का उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना और तकनीक का जिम्मेदारी से उपयोग करना है ताकि एक ऐसा समाज निर्मित हो जो जानकार, जागरूक और सशक्त हो तथा विकसित भारत 2047 के विजन को प्रभावी योगदान दे सके। अंतिम और छठे संकल्प को लेकर उन्होंने बताया कि सार्वजनिक सेवा प्रदायिकी में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और सुलभता बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकों, AI यानी कृत्रिम बुद्धिमता और डाटा आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया के अधिक उपयोग को बढ़ावा देना है। हरियाणा लोकसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने बताया कि आज लगभग 5.5 घंटे तक चर्चा हुई है।
2: लगभग 5.5 घंटे तक आज चर्चा हुई है और उसमें लगभग 40 सदस्यों ने, पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों ने इसके अंदर अपना विषय रखा है और 4 प्रस्ताव पास भी हुए हैं। और साथ ही इसके बाद अभी वैलिडिक्टरी सेशन होगा जिसमें हरियाणा के माननीय राज्यपाल प्रोफेसर अश्विन घोष उसके अंदर हिस्सा लेंगे, साथ में माननीय लोकसभा अध्यक्ष और माननीय उपसभापति राज्यसभा उसके अंदर मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। और उससे पहले सभी माननीय सदस्यगणों के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक छोटा सेशन रखा गया है कि किस प्रकार से हमें भविष्य में टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर आगे बढ़ना है और किस प्रकार से हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी कार्यक्षमता, कार्यकुशलता को बढ़ाने में हमें इस्तेमाल करना है।
0: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जागृत ग्राम पुरस्कारों के तहत प्रदेश की 6 ग्राम पंचायतों को विकास, स्वच्छता और सुशासन के नए मानदंड स्थापित करने के लिए सम्मानित किया। उन्हें 1,66,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत की असली शक्ति हमेशा गांवों और पंचायतों में है।
3: आज 17 जिलों में 44 करोड़ रुपए की लागत से बनी 350 अटल लाइब्रेरी का भी लोकार्पण किया गया है। और साथियों, जो पिछले दिनों मैंने घोषणा किया था कि मुख्यमंत्री जागृति ग्राम पुरस्कार के माध्यम से 6 ग्राम पंचायतों को आज यहां सम्मानित भी किया गया है, जिन्होंने जो हमने 5 पैरामीटर्स बनाए हैं उन पैरामीटर्स को, उन मानदंड को स्थापित किया है और इसकी एवज में आज 1,66,00,000 रुपए के पुरस्कार की राशि इन पंचायतों को देने का काम किया है।
0: इन पंचायतों में फतेहाबाद जिला के गांव जांडली कलां की ग्राम पंचायत को 51,00,000 रुपए, चरखी दादरी के गांव झिंझर की पंचायत को 31,00,000 रुपए, अंबाला के साहा की पंचायत को 21,00,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी में फतेहाबाद जिला के गांव जल्लोपुर की पंचायत को 31,00,000 रुपए, गांव गदली को 21,00,000 रुपए तथा करनाल के

0: तानहेड़ी गांव की ग्राम पंचायत को 11 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। उन्होंने इस दौरान कुरुक्षेत्र के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व पर आधारित धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पुस्तक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज विभिन्न योजनाओं की कुल 2697 करोड़ रुपए की राशि जारी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश की माता बहनों को 8वीं किस्त की 207 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।
1: दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हमने 8वीं किस्त जारी की है, जिसके माध्यम से आज महिलाओं के खाते में 207 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि पहुंचाने का काम किया है। चाहे हमारे बुजुर्गों की ये सामाजिक पेंशन की बात है या विडो पेंशन है, ऐसी सब पेंशनों को मिलाकर के आज 1151 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है।
0: मुख्यमंत्री ने बताया कि दयालु योजना के तहत भी पीड़ित परिवारों को 169 करोड़ 50 लाख रुपए की वित्तीय मदद जारी की गई है।
1: दयालु योजना के तहत अगर किसी परिवार के ऊपर कोई दुखों का पहाड़ टूट जाता है तो सरकार उसका सहयोग करती है। हमने दयालु योजना के तहत आज 4,538 परिवारों को 169 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि जारी की है और ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों के लिए 1056 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि खाते में डालने का काम किया है।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य किए हैं, जिनका सीधा लाभ देश की जनता को मिला है। उन्होंने सिलसिलेवार योजनाओं के हिसाब से आंकड़े प्रस्तुत किए। केंद्रीय मंत्री रोहतक के वैश्य कॉलेज सभागार में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असंभव को संभव बनाने का काम किया है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा कि गत 12 वर्ष के दौरान भारत ने स्थिरता और परिवर्तन दो शक्तियों का प्रमाण देखा है।
2: आज भारत में दो शक्तियों का एक प्रमाण पिछले 12 वर्षों में हमने देखा है, एक स्थिरता और दूसरा परिवर्तन। प्रधानमंत्री जी भारत वर्ष के सबसे लंबे प्रजातंत्र प्रणाली से चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हो चुके हैं, तो अभूतपूर्व स्थिरता और उसी के साथ भारत के घरेलू उत्पादन की दर 7.7% तक पहुंचकर पिछले 12 वर्षों में इसका एवरेज 7% के करीब आ चुका है, जिसके आधार पर अभूतपूर्व परिवर्तन भी हुआ।
0: उन्होंने रोहतक में 4 वर्ष पहले करीब 315 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का निरीक्षण भी किया और स्वच्छता अभियान में भी शिरकत की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि शामलात भूमि पर पिछले 20 वर्षों से मकान बनाकर रह रहे ग्रामीण परिवार मालिकाना हक लेने के लिए अगले वर्ष 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ऐसे परिवारों से वर्ष 2004 की कलेक्टर दर की 1.5 गुना की अनुसार भूमि खरीद की राशि जमा करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय सशक्त पंचायत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दस्तावेजी कठिनाइयों के कारण कई पात्र लोग आवेदन नहीं कर सके थे, ऐसे में सरकार ने उन्हें राहत दी है। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्र में कचरा प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली चालक और कचरा संग्रहण कर्मी उपलब्ध करवाए जाएंगे। यह ट्रैक्टर इलेक्ट्रिक होंगे। इसके अलावा वेस्ट टू एनर्जी परियोजनाओं पर भी सरकार काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने 17 जिलों के 179 गांवों की फिरनियों पर एलईडी स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन भी किया, जिन पर 23 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत आई है। साथ ही 17 जिलों में 44 करोड़ रुपए की लागत से बने 350 अटल पुस्तकालयों का भी लोकार्पण किया। उन्होंने ग्राम विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों हेतु 1056 करोड़ 75 लाख रुपए सीधे उनके खातों में हस्तांतरित किए। मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा विधानसभा की मेजबानी में चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन संपन्न हुआ। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे गीता संदेश। गीता संदेश में आज गीता के 5वें अध्याय से श्लोक 16 से 19 की व्याख्या सुनिए। व्याख्याकार हैं सोमनाथ शर्मा।
1: श्रोताओं नमस्कार। गीता संदेश कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 16 से आगे की व्याख्या। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणुर्मर्दनम देवकी प्रमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। पंचमोध्याय कर्मयोगः।

तत्परम। भगवान कहते हैं कि माया मनुष्य के वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहती है, किंतु जब कोई व्यक्ति अपने उस वास्तविक ज्ञान से प्रबुद्ध हो जाता है, जिससे मोह नष्ट हो जाता है, तो उस ज्ञान से सब कुछ ऐसे ही प्रकट होता है जैसे सूर्य उदय से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। ज्ञान सदैव सम्माननीय है। और वह ज्ञान क्या है? कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित होने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, और तभी हम संसारिक मोह माया जाल से बाहर निकल सकते हैं और अनेका अनेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावना अमृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ उसी तरह प्रकट होने लगता है जैसे सूर्य उदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं। कहते हैं जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होकर संसारिक दुखों में फंसा रहता है, अपने आप को अज्ञान व सब कुछ मानने लगता है और अंत में बहुत दुखी हो जाता है, तो फिर किसी कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण में जाकर ज्ञान प्राप्त करके संसार रूपी मोह एवं कलेश से मुक्ति पा सकता है और पा लेता है, वास्तविकता को जान जाता है कि असली ज्ञान क्या होता है। तद बुद्ध्यास्तदात्मानास् तन्निष्ठास्तत्प्रायणः गच्छन्त्यः पुनरावृतिम् ज्ञान निर्धोत कल्मषः। भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य की बुद्धि मन तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश दुखों से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता चला जाता है। तात्पर्य यह है, भगवान परम सत्य है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है। भगवान सर्वस्व है, भगवान प्रभु सत्य है, कि कृष्ण ही श्री भगवान है, यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। वेद भी यही मानते हैं कि भगवान सर्वस्व है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं मत्परः न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजयः। हे धनंजय, हे अर्जुन, मेरे से बढ़कर इस संसार में, इस लोक में कुछ भी नहीं है। कृष्ण भगवान निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं। कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम्। अतः सभी तरह से भगवान कृष्ण सत्य है। जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना भावित हैं, अर्थात कृष्ण में पूरी भक्ति में लीन रहते हैं, कृष्ण को ही सर्वस्व मानते हैं, उनके सारे कलमश धुल जाते हैं। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि कृष्ण में द्वैत अर्थात एक साथ एकता और भिन्नता है, तो वह व्यक्ति मुक्ति पथ पर प्रगति करता चला जाता है और अपना जीवन सफल बना सकता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि एक समभाव वाला व्यक्ति कैसा होता है, ये समत्वम योगः किस में यह जागृत होता है। समत्व योग के बारे में भगवान समभाव समदर्शिनः कौन होते हैं, उनके बारे में भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि विद्वान साधु पुरुष अपने ज्ञान के कारण एक विद्या संपन्न ब्राह्मण में, गाय में,

0: कि कृष्ण भगवान भावना भावित विद्वान पुरुष आंतरिक दृष्टि से यानी जाति भेद नहीं मानता है। वह कहता है कि हमने सभी में भगवान का स्वरूप ही देखना चाहिए। यदि हम ऐसा भाव रखते हैं तभी संभाव आ सकता है और इसी को समत्वम योगः उच्यते कहा जाता है। सामाजिक दृष्टि से इनमें भिन्नता हो सकती है लेकिन अंत रूप में ये सभी परमात्मा का ही जीवांश है। भगवान परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित रहते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान हैं और उसी स्वरूप को देखना चाहिए, तभी समत्वम आ सकता है। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं कि हमारे अंदर समभाव होना चाहिए, हमने सभी को एक ही दृष्टि से देखना चाहिए, चाहे वो कोई मनुष्य जाति है, चाहे कोई पक्षी जाति है, चाहे कोई वो जानवर है, सब में हमने भगवान का स्वरूप ही देखना चाहिए। इहैव तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। इहैर्तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितम्। भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि इस जीवन में जिन व्यक्तियों के मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने मृत्यु तथा जन्म के बंधनों को पहले से जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तात्पर्य है, कहते हैं कि जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, कहता है मैं सब कुछ हूँ, मैं भगवान के बराबर हूँ, तब तक वह बद्ध जीव माना जाता है। अर्थात उसका जो शरीर है सांसारिक बंधनों से जकड़ा रहता है, किंतु जहाँ ही वह साक्षात करके समभाव की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, अर्थात अपने अंदर साक्षात करके भगवान के स्वरूप को जान लेता है, तो वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। अर्थात उसे जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है और इस जीवन के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। इस श्लोक में बताया गया कि भगवान निर्दोष है क्योंकि वे संसारिक आसक्ति से दूर हैं, और इसी प्रकार जो व्यक्ति संसारिक क्लेशों से दूर रहेगा, संसारिक आसक्ति से दूर रहेगा, वह भी भगवान की तरह निर्दोष कहलाएगा। इस प्रकार समभाव को प्राप्त जीव ही निर्दोष बन जाता है और परम पिता की शरण को प्राप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को तो भगवान पहले से ही अपनी शरण में रखता है। श्रोताओं, गीता संदेश कार्यक्रम में आज आपने गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 16 से 19 तक की व्याख्या सुनी है।
1: अभी आप सुन रहे थे गीता संदेश। गीता संदेश में आज आपने गीता के 5वें अध्याय से श्लोक 16 से 19 की व्याख्या सुनी। व्याख्याकार थे सोमनाथ शर्मा। FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बाण भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी और भाई आज दिन है मंगलवार और इस दिन जो है नाम लेके आवा है कार्यक्रम फोन इन। और फोन इन कार्यक्रम में आज का हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा मिट्टी पानी की जांच का महत्व एवं विधि पे। और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी डॉक्टर किरण कुमारी, वरिष्ठ जिला विस्तार विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र करनाल से। और हमारे स्टूडियो का जो भाई संपर्क करना चाहेगा, जो संपर्क सूत्र है हमारा वो रहेगा 0174-221-322। जो भी किसान भाई इस विषय पर बात करना चाहे तो इस नंबर पर भाई कॉल कर सका है। तो आओ चलते हैं स्टूडियो में और उनसे बातचीत कर रहे हैं गिरधारी भाई।
7: कार्यक्रम के सभी सुनने गिरधारी की राम राम। साथियों, किसान वाणी कार्यक्रम दिन मंगलवार और इस दिन हम लाए आपके बीच में फोन इन। और फोन इन में एक ऐसा विषय जो जरूरी है मौसम समय परिस्थिति के हिसाब से, ताकि आपकी उस तरह संबंधित कोई भी समस्या हो, प्रश्न हो, उसका समाधान हम अपने विशेषज्ञ से करा सकें। तो आज इस कड़ी में जो विषय रहेगा वो रहेगा मिट्टी पानी की जाँच विधि। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर किरण कुमारी, जो वरिष्ठ जिला विस्तार विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र करनाल के अंदर। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
8: धन्यवाद बहुत बहुत।
7: डॉक्टर साहब, चाहे मानुष हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे फसल हो, सबको जरूरत पड़ती है उचित खुराक की, संतुलित खुराक की।
8: बिल्कुल।
7: कोई भी ज़्यादा कुछ खाएगा, अगर आदमी हम भी ज़्यादा घी खाएंगे तो नुकसान,
8: बिल्कुल
7: कम खाएंगे तो कमी रह जाएगी। ऐसे विटामिन के ऊपर है, हम कम ज़्यादा विटामिन लेंगे तो शरीर का संतुलन बिगड़ेगा। ऐसे ही स्थिति हमारी फसलों के साथ होती है। अगर हम किसी फसल में ज़्यादा खाद दे गए तो दिक्कत है, कम दें तो दिक्कत है। तो ऐसा मान के चलते हैं कि क्यों ना आवश्यक है उस खाद देने से पहले हम अपनी मिट्टी और पानी की जांच करा लें, ताकि हम सही तरीके से खाद दे सकें, कितनी उसकी मांग है फसल के हिसाब से। तो इसी विषय पर चर्चा करना चाहेंगे कि पहली बात तो क्यों आवश्यक है मिट्टी की जांच।
8: जी देखिए, जैसे इंसान भी अपनी शरीर की जांच करवाता है, पता चलता है हमारे सारे वाइटल्स ठीक हैं कि नहीं। उसी तरीके से देखिए, ज़मीन है वो हमें पता नहीं कितने सालों से खुराक भोजन दे रही है, ठीक है। तो आज वो स्थिति आ गई है कि किसान कहता है जी एवरेज घट रही है, कोई भी क्रॉप लेते हैं एवरेज घट रही है, हम इतना यूरिया डीएपी डाल रहे हैं एवरेज घट रही है। अब क्या है, किसान की सोच उस साइड नहीं जा रही कि हमारी मिट्टी की स्वास्थ्य भी हो सकता है घट रहा हो। तो मिट्टी का स्वास्थ्य घट रहा है या ठीक है उसके बारे में हम जानकारी कैसे लेंगे, उसकी जांच करवा के ही हमें उसकी जानकारी हो पाएगी कि हमारी मिट्टी आज के वक्त स्वस्थ है या नहीं है।
7: जी। तो स्वस्थ मिट्टी का मुख्य लाभ क्या होगा किसान को?
8: देखिए, आप एक बीज है, आप मिट्टी में डाल दीजिए, उसको थोड़ा सा पानी, रेत में भी डाल देंगे, उसको थोड़ा सा पानी मिल जाएगा ना तो वो उग जाएगा, वो दाने भी देगा। लेकिन बात है कि दाने में जान कितनी,
7: जान कितनी,
8: उसमें उस खुराक में कितने पोषक तत्व हैं जो आपके शरीर को मिलेंगे। अब वो पोषक तत्व उस बीज में, उस दाने में कब आएंगे, जब आपकी आपकी जमीन स्वस्थ होगी, उसमें वो पोषण प्राप्त होगा। तो इसीलिए पोषण की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए और आपकी मिट्टी में जैविक कार्बन, ये सबसे बड़ा सबसे जरूरी तथ्य है कि आपकी मिट्टी का जैविक कार्बन कितना है। जैसे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है वैसे ही मिट्टी का जैविक कार्बन होता है। तो जैविक कार्बन कितना है पता करने के लिए, पोषण कितना है पता करने के लिए, कोई बीमारी तो नहीं है हमारी जमीन को पता करने के लिए, क्या क्या होगा, हमें उसकी मिट्टी की जाँच करवानी।
7: ये

0: आदमी का ढांचा शरीर का तो है, लेकिन शरीर में जान कितनी है ये नहीं पता, ये पता चलेगा जो उसके टेस्ट होगा। कई बार हम कहते हैं हट्टा कट्टा आदमी था एकदम से गिर गया, और कई कहते हैं बहुत कमजोर आदमी था और लंबी समय काट गया, वो निर्भर करता होगा कि उसके अंदर कितने पोषक तत्व हैं, वही फसल के साथ होता होगा। तो ये तो बात है कि फसलों के पोषक तत्वों का पता करने के लिए या उस फसल को कितने तत्वों की जरूरत है उस मिट्टी का, ये हम हिसाब लगाते हैं, लेकिन इसकी विधि भी तो कुछ होती होगी।
1: जी देखिए, विधि क्या है, सबसे पहले हमें खेत में जाना है और एक खेत में से हमने पांच जगह से मिट्टी का सैंपल लेना है, ठीक है। एक किले में क्या जगह, जब हम सैंपल एक फाइनल करते हैं उसको लेने के लिए हमें पांच अलग अलग जगहों से मिट्टी का सैंपल लेना है, चार कोने और एक बीच में से। और आपने सिर्फ खेत के ऊपर से नहीं उठाना है, आपने वो मिट्टी का सैंपल उस गहराई तक लेना है जहां तक आपकी फसल की जड़ें जाती हैं, ठीक है। ज्यादातर फसलों की जो ये हमारी शॉर्ट टर्म फसलें हैं, गेहूं, जीरी होगी, मक्का होगी, इनकी जो जड़ें हैं 0 से 15 सेंटीमीटर ही जाती हैं, मतलब 5 इंच के करीब। तो आपने उस 5 इंच तक का सैंपल लेना है। तो आप ऊपर सतह से और नीचे 5 इंच तक का आपने उन पांचों जगहों से सैंपल लेना है, किसी तसले में आपने उसको इकट्ठा करना है, अच्छे से मिक्स करना है, और उसमें से फिर आपने आधा किलो सैंपल अपना किसी साफ लिफाफे में, कोई दवाई का लिफाफा नहीं होना चाहिए, कोई खाद का कट्टा नहीं होना चाहिए, आपने लिफाफे में अपना सैंपल डालना है और उसमें अपनी पूरी पर्ची, आपका नाम, आपके पिताजी का, जो भी डिटेल होती हैं वो आपने वो डिटेल लिख के, और जो भी आपके पास में सॉइल टेस्टिंग लैब है,
0: अपना नाम और किला नंबर वगैरह, हाँ, या जमीन की पहचान और फोन नंबर,
1: अपना फोन नंबर जरूर। पहचान का क्या होता है सर, अगर मान लीजिए किसी किसान के पास 20 किले हैं, तो जरूरी नहीं कि आप उन सभी 20 के 20 किलो की जांच करवाएं, आप उनमें से दो छोड़ के एक छोड़ के किन्हीं 5 या 6-7 किलो की जांच करवा सकते हैं। अब लेकिन आपको ये आपने सैंपल इकट्ठा कर दिया और किसी लैब में जाके दे आए, अब आपको जब रिपोर्ट देंगे आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिपोर्ट आपके किस किले की है। तो आपको वो आपको अपने दिमाग में तय रखना है कि आपने आप क्या पहचान रखेंगे, और वो पहचान आपने अपने उस थैले उस लिफाफे पे लिखनी है, ताकि जब आपको रिजल्ट मिले तो आपको पता हो कौन से किले का रिजल्ट है।
0: दोस्तों, किसान साथी तरफ से मैं सवाल कर रहा हूँ, जो तो किसान साथी संपर्क करते हैं, कि जैसे हमने कहा कि 0 से 5 इंच
1: जी,
0: लेकिन ये तो अलग अलग फसल पर निर्भर करता होगा ना। अब किसी फसल की मान लो जड़ें ज्यादा जाती होंगी या कम जाती होंगी,
1: जैसे गन्ना है, गन्ना पूरे साल की फसल है लगभग, है ना, तो अब उसकी जड़ें नीचे उस और गहरी जाती होंगी। तो आप अगर गन्ने की फसल लेते हैं तो आपने उसको वो जो गहराई है उसको और नीचे तक ले जाना है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है, अगर कालर जमीन है, ठीक है, जमीन कालर होती है, तो उस केस में आपने दो अलग अलग परतों से सैंपल लेना है, क्योंकि कालर जमीन में ऊपरी परत की जो जांच रिपोर्ट आएगी वो अलग आएगी और नीचे परतों की जांच रिपोर्ट अलग आएगी।
0: अच्छा, ऐसा भी होगा?
1: जी बिल्कुल। तो और आपने कलर जमीन में आपने नीचे की जमीन भी ठीक, नीचे की गहराई भी ठीक करनी होती है। तो और लेकिन जब बाग के लिए आपने सैंपल लेना है तो अपने बाग के लिए सैंपल और भी गहराई 2 मीटर तक लेना है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि बाग जो है 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है
0: जी।
1: आपने जब लगा दिया वो 10-20 साल तक चलेगा और उसकी जो जड़ें हैं वो नीचे तक 2-2 मीटर तक जड़ें चल जाती हैं। अब आपने इसलिए 2 मीटर तक सैंपल लेना है, और सैंपल की ये होती है 0 से 15, 15 से 45, 45 से 90 सेंटीमीटर, 90 से 150 सेंटीमीटर, 150 से 120, मतलब इस तरीके से अपने 4-5 अलग अलग लेयर्स के सैंपल लेने हैं। मेन मकसद ये होता है कि मिट्टी कहीं किसी निचली परत में कोई कंकड़ की लेयर तो नहीं है
0: जी।
1: कंकड़ की लेयर का पता चल जाता है, और पीएच ठीक है कि नहीं है, नीचे की लेयर्स में पीएच ठीक है कि
0: पीएच मान उसका जो
1: पीएच मान ठीक है, नमक की मात्रा अधिक तो नहीं है, क्योंकि ऑर्चर्ड जब आप लगाते हो तो आप बहुत इन्वेस्टमेंट करते हो, और अगर आपने मिट्टी की जांच नहीं कराई और पता चला 2-3 साल बाद पता चला जी कंकड़ की लेयर है और आपके पौधे ही नहीं पनप पा रहे हैं, तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो वेस्ट हो जाएगी
0: जी। और सब यहाँ एक सवाल रहेगा कि आपने कहा बाग लगाने के लिए 2 मीटर तक हमने नीचे जाना है, और उसमें जैसे 30 सेंटीमीटर, 90 ऐसे ऐसे चलना है, तो क्या सारे सैंपल ऐसे लेने या एक सैंपल 30 तक, एक 90 तक, एक 150, कुछ ऐसा?
1: सर देखिए, वैसे तो 2 मीटर तक का सैंपल लेना बड़ा मुश्किल है
0: जी।
1: तो लेकिन जब आप आजकल वो ट्रैक्टर माउंटेड बर्मा जो आता है उससे आपने गड्ढा खोदा और एक ही गड्ढे से
0: एक ही जगह से
1: 0 से 15 सेंटीमीटर, 15 से 30 या 45 सेंटीमीटर, वो एक ही गड्ढे में से लेना आपने अलग अलग।
0: पहले हम 0 से 15 लेके उसका अलग अलग कर लें,
1: हाँ,
0: फिर आगे उस

0: नेक्स्ट स्टेप पे जाएं,
1: फिर अलग ले, उसको अलग लिफाफे में डालें, फिर 45 से 90 तक का जो अलग से सैंपल लेंगे उसको अलग लिफाफे में डालना है और उस पर लेबलिंग करनी है कि ये कौन से टेप।
0: तो लगभग जो 5-7 सैंपल होंगे उनको अलग थैली में रखना है,
1: बिल्कुल अलग,
0: और उस पर लिख भी दें कि ये 0 से 15 का है, ये 16 से 30 का है।
1: तो हमें पता चलेगा ना कि कौन सी लेयर में जाके कंकड़ की लेयर है
0: जी, है ना। और जो हमें 5 जगह सैंपल, 5 में हमें ये प्रक्रिया अपनानी है।
1: दरअसल क्या होता है ना कि देखिए, अगर कंकड़ की लेयर होगी दो, क्योंकि इतने गहरे जो सैंपलिंग करना बहुत मुश्किल है, 2 मीटर तक की सैंपलिंग, तो अगर कंकड़ की लेयर होगी तो वो पूरे के पूरे खेत में होगी। तो अगर आप एक जगह से भी सैंपल ले लेंगे ना 2 मीटर का, तो वो सफिशियंट है ऑर्चर्ड के लिए। मगर अगर आप खेत के में गेहूं जीरी या गन्ना लगा रहे हैं, उसमें आपने 1 किले में से 5 जगह से सैंपल लेना ही लेना है।
0: बाग में हम 1 जगह ले सकते हैं, बाकी जो फसलें हैं उसमें हम 5 जगह ले सकते हैं। अब बाकी देखो है तो मुश्किल, लेकिन फसल तो लंबी है ना, निवेश भी ज्यादा है ना उसका, और निवेश लंबे समय तक है तो थोड़ा सा कष्ट सहन करना ही पड़ेगा। तो ये तो बात होगी हमारे बाकी राम की, बाकी मोटी सी बात ये होगी कि जिस तरह से हमने फसल लेनी है उसी तरह से हमें सैंपल भी लेना है। अगर आपकी फसल की जड़ें 10 इंच तक जाती है, 5 इंच जाती है, उस हिसाब से सैंपल लेना। अगर फसल आपकी मोटी है तो उस हिसाब से आपने सैंपल लेना। ये तो बात हुई कि ये सैंपल लिया, उस सैंपल को इकट्ठा किया, मिला दिया। अब मिलाने के बाद से हम उसे उसमें डाल लेंगे, जब लैब में जाएंगे उसमें सारा ब्यौरा भी दे देंगे हम, लेकिन क्या वो रिपोर्ट किसान के पास पहुंचेगी या किसान खुद जाएगा रिपोर्ट लेने के लिए?
1: सर, मैं बात करूंगी अपनी, हमारी जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की लैब्स हैं, स्पेशली मैं जहां कार्यरत हूं, रीजनल सॉइल टेस्टिंग लैब केवीके करनाल में। हम सर, हम फार्मर्स, अगर दूर का भी फार्मर है, अगर फार्मर की इच्छा है, अगर वो आके ले जाना चाहता है स्वतः, तो आके ले जाए, नहीं तो हमने इतनी ईज कर रखी है कि अगर फार्मर नहीं आ सकता, हम उन्हें व्हाट्सएप पे उनकी रिपोर्ट भेज देते हैं और फोन पे समझा भी देते हैं।
0: यानी नंबर वो दे जो व्हाट्सएप का
1: जी,
0: यहाँ ये बस पोस्ट होगी ना, आपके बार किसान साथी आता है, नंबर जाता है, उसे व्हाट्सएप ही नहीं होता।
1: हाँ, व्हाट्सएप का नंबर
0: आप उन्हें उसको जो है रिपोर्ट दे दी, उसके पास पहुंच ही नहीं हुआ।
1: जी, तो वो ऐसा नहीं है कि हम सारे रिपोर्ट्स व्हाट्सएप पे भेजते हैं। अगर कोई फार्मर कहता है कि मैम हम नहीं आ पाएंगे, प्लीज आप भेज दीजिए, तो हम भेज देते हैं। तो हम ये शंका नहीं करते कि नहीं सर, आपको हमारे पास आके ही अपनी रिपोर्ट लेके जानी पड़ेगी।
0: तो ये हो गया कि किसान इसके लिए तैयार हो, दूसरा आपका अभियान भी चलते आया मिट्टी पानी जांच का, जो आजकल चल भी रहा होगा। मैंने
1: जी बिल्कुल चल रहा है सर। हमारा जो है मई और जून में हमारा बहुत ही इंटेंसिव सॉइल टेस्ट कैंपेन चलता है, जिसमें हम फार्मर्स के खेतों में जाते हैं, वहाँ पे ग्रुप मीटिंग्स भी करते हैं, गाँव में जाते हैं, कैंप्स लगाते हैं। और कई बार क्या होता है कि ना, फार्मर्स को हम उनके खेत में चले जाएं तो अपना सैंपल दे देते हैं, अन्यथा बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो जिनको ना तो लैब्स के बारे में पता है, और वो इतनी जहमत नहीं उठाना चाहते हो, क्योंकि उन्हें सॉइल हेल्थ की इम्पोर्टेंस के बारे में पता ही नहीं है। तो जब हम किसी गांव में जाते हैं, 10 लोग देखते हैं, तो उन्हें रुचि होती है कि ये मैडम या ये टीम किस लिए आई है। तो बहुत सारे किसान जो है वहीं खड़े खड़े हमें अपना सैंपल ला के दे देते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स हम तक अपने सैंपल्स पहुंचाएं।
0: हालांकि आपके विभाग ने एक सोयल हेल्थ कार्ड भी बनाया था मेरे ख्याल से।
1: सर, हमारी यूनिवर्सिटी का तो सोयल हेल्थ कार्ड शुरू से ही है सर। जी,
0: तो इसलिए किसान को वैसे भी वहाँ पे जाना चाहिए, उसका कार्ड तो होगा ही। उस कार्ड का मतलब क्या है
1: सर? देखिए, कार्ड का क्या होता है, कार्ड पे आपकी सारी डिटेल लिखी है, आपकी मिट्टी का पीएच कितना है, उसका उसमें ईसी कितनी है, ईसी यानी नमक की मात्रा कितनी है, उसमें जैविक कार्बन कितना है। अच्छा, उसके बाद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, या आजकल हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी करते हैं। उसके अलावा सर, किसान पढ़ने की जहमत नहीं उठाता, वो 2 पन्नों का कागज इतना सेल्फ सफिशिएंट है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि अगर आप का गन्ने की फसल हो रही है, मक्के की हो रही है, गेहूं हो रही है, जीरी हो रही है, जितनी आपकी मात्रा आई है फसल में, सॉरी मिट्टी में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, किसी भी पोषक तत्व की, उस हिसाब से आपको अपने खेत में कितनी मात्रा फर्टिलाइजर की डालनी है। उसके अलावा आपको रेगुलर बेसिस पे कितना गोबर की खाद डालनी है, कितना वर्मी कंपोस्ट डालना है, मतलब हर तरीके की जानकारी उस 2 पन्ने की रिपोर्ट में दी होती है, मगर किसान उसको इतनी रुचि से पढ़ता नहीं है।
0: इसलिए मैंने इस मुद्दे को यहाँ उठाया आज आपके सामने कि स्कीम तो बहुत अच्छी है सोयल हेल्थ कार्ड, लेकिन वो कार्ड उस कार्ड की तरह रखा हुआ है।
1: हमारा जो यूनिवर्सिटी वाली जो सोयल हेल्थ कार्ड है सर, हमारी यूनिवर्सिटी की सोयल हेल्थ कार्ड बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट है। उसमें सारी चीजें, आपको सावधानियां क्या बरतनी है, किस फसल में कितना खाद जाएगा, अगर यूरिया की जगह आप नाइट्रोजन की

0: कोई और खाद यूज़ कर रहे हैं, किसान खाद यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कितनी मात्रा जाएगी, एसएसपी कर रहे हैं तो कितनी जाएगी, डीएपी कर रहे हैं तो कितनी जाएगी, सारी चीज़ें बिल्कुल सटीकता से उसमें दी गई हैं।
1: यानी कहिए कि वो अपना में बोलता है।
0: जी बिल्कुल,
1: ठीक है ना, वो आपसे बात करता है, बस किसान को उससे बात करनी है कार्ड से।
0: जी,
1: जब तक उसको छुपा कर रखेंगे तो नहीं बात करेगा, उसको सामने लेके आएंगे तो आंखों के सामने होगा तो बात करेगा किसान से कि भी इतनी खाद उपयोग कर रही है, इसमें ये कर रही है, बोलता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है वो कार्ड उसके साथियों के लिए, क्योंकि आज तक के किसान साथी उस कार्ड को लेते तो हैं लेकिन खोल के देखते नहीं कभी,
0: नहीं।
1: तो इसलिए इस मुद्दे उठाना जरूरी था।
0: बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा किया इस विषय पर चर्चा की।
1: सब अब बात आती है मिट्टी जांच की। एक तो आप जो है फील्ड में जाते हैं
0: जी,
1: और हम भी बार बार कहते हैं कि जांच कराओ, लेकिन फिर भी बहुत से लोग, पहले फोन ले लें। हेलो,
2: राम राम जी। हेलो
1: हेलो
2: राम राम जी।
1: राम राम जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: पिलनी से बोल रहे जी, रोशन है।
1: जी रोशन जी, कैसे हैं आप?
2: ठीक है जी, और आप ठीक हो?
1: हाँ बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जीरी की तैयारी कर रही?
2: हाँ जीरी की तैयारी चल रही है जी। थोड़ा सा एक जीरी लगाने के बारे में न्यू पता करना भाई, कौन सी माटी जरा ठीक रहेगी, और माटी की जांच के बारे में पूछना जी आपसे।
1: जी डॉक्टर साहब
0: जी, जीरी के लिए वो मिट्टी अच्छी रहती है जो पानी को पकड़ के रखे, ठीक है ना। रेतीली मिट्टी होगी, जैसे आप पानी उसमें लगाएंगे वो नीचे की तरफ चला परकुलेट हो जाएगा, तो मिट्टी थोड़ी जिसे कहते हैं ना क्ले लोम टाइप होनी चाहिए। और मिट्टी जांच के बारे में सर आपको पता ही है, आप किस गांव से हैं रोशन जी?
1: पिलनी, जिला कैथल।
2: गांव पिलनी जी, जिला कैथल।
0: अच्छा, जिला कैथल से। तो वैसे तो कृषि विज्ञान केंद्र कैथल में भी सॉइल साइंटिस्ट बैठते हैं, हमारे करनाल में।
2: कहाँ से पड़ता है मैडम जी, कुछ आपको पता हो तो लोकेशन इसकी जी?
0: कैथल की लोकेशन तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। अगर आप वहां नहीं जा पाते, अगर आपका चक्कर करनाल लगता है तो ये जो नया बस स्टैंड है करनाल में, बिल्कुल उसके पास उचानी में हमारी रीजनल सॉइल टेस्टिंग लैब है। अपने सैंपल आप वहां पर भी लेके आ सकते हैं। कई किसान कैथल जिले से अपने सैंपल्स मिट्टी के भी और पानी के भी लेके आते हैं।
2: मैडम जी, जिस तरह मिट्टी कितनी जगह लेनी है जी?
0: आपने एक किले में आपने पांच जगह से मिट्टी लेनी है, चार कोने और एक बीच में से, और कोना बिल्कुल कोना नहीं होना चाहिए, एक मीटर अंदर से होना चाहिए, ठीक है।
2: आपने मिट्टी लेनी कितनी कितनी है जी?
0: आधा किलो, आधा किलो मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपके जितने भी पैरामीटर्स नापे जाएंगे ना उनके लिए थोड़ी थोड़ी मिट्टी चाहिए, आधा किलो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
2: और मैडम जी इसकी फीस कितनी लगा जी?
0: देखिए हमारे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सिर्फ 10 रुपए लेते हैं। अगर आपको एक सिंपल टेस्ट करवाना है जिसमें पीएच, ईसी यानी नमक की मात्रा, जैविक कार्बन, फास्फोरस और पोटाशियम, पांच चीजें अगर हमें आपको पता करनी है, तो अगर उसके अलावा अगर आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट पता करने हैं, सूक्ष्म तत्व जैसे आयरन, जिंक, कॉपर और मैंगनीज, तो हम 50 रुपए प्लस 18% जीएसटी, यानी लगभग 70 रुपए के करीब आपका टोटल कॉस्ट हो जाता है एक सैंपल का। और अगर आप पानी की जांच करवाते हैं तो उसका 10 रुपए।
2: अच्छा जी, एक मैडम जी ये भी पूछना था
0: जी
2: कि भाई जैसे मिट्टी की जांच करवाने के लिए हम आवेंगे करनाल आएंगे, तो उसमें कोई हमने फर्द वगैरह या
0: नहीं सर, हमें हमारी जो यूनिवर्सिटी की लैब्स हैं उसको कुछ भी नहीं चाहिए। आप अपनी मिट्टी की सैंपल लेके आइए, बस अपना नाम, पता, गांव, ब्लॉक, फोन नंबर, बस हमें इतना चीज चाहिए। हमें आपके खेत का कोई किला नंबर भी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए।
2: अच्छा जी, ठीक है मैडम जी, धन्यवाद।
1: रोशनलाल जी, बाकी जो कैथल आप जाएंगे ना?
2: हाँ जी, हाँ जी।
1: तो वहाँ सेक्रेटरीट के पास ही कृषि विज्ञान केंद्र है।
2: अच्छा सर,
1: आप वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी मैडम ने कहा आप वहाँ चाणी आइए, वहाँ करनाल आइए, आपको वहाँ स्वागत है। बस नंबर वही लिख के जाना जो आपको व्हाट्सएप का नंबर।
0: बिल्कुल व्हाट्सएप।
2: धन्यवाद।
1: ठीक, ये तो बात हुई कि जो हम सोल्थ हेल्थ कार्ड की बात कर रहे थे कि कार्ड खुद बोलता है और कार्ड को पढ़ना बहुत जरूरी है, संभाल के रखना ही खाली नहीं है कि कार्ड आया अलमारी में रख दिया। अब है कि समय जो बदल रहा है, अब हम जा रहे हैं प्राकृतिक खेती की तरफ
0: जी।
1: उसमें जो है कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है मिट्टी जांच की?
0: देखिए प्राकृतिक खेती जो है ना, ये एक जो मॉड्यूल है ये इसलिए बनाया गया क्योंकि हमें अपने मिट्टी की स्वास्थ्य को इम्प्रूव करना है
1: जी।
0: ठीक है, जब आप प्राकृतिक खेती का प्रयोग करना खेत में शुरू करते हैं तो कैसे पता करते हैं कि आपके खेत की प्राकृतिक खेती की वजह से आपका खेत का स्वास्थ्य इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जब उसका जैविक कार्बन बढ़ेगा? ठीक है, जब आप प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक खेती कोई भी इस तरह की खेती यूज करते हैं तो उसका जैविक कार्बन विद टाइम 1-3 साल में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है, तो उसकी जाँच कैसे कीजिए, उसके बारे में कैसे पता लगेगा, उसके बारे में पता लगेगा मिट्टी की जाँच करके?
1: तो हम ये कहेंगे किसान साथियों से कि थोड़ा सा समय आपको जागरूक होकर निकालना है मिट्टी जांच के लिए।
0: बिल्कुल सर,
1: हम इसी बात कर रहे थे, कुछ तो आप अभियान चलाएंगे
0: जी,
1: कुछ हम भी यहाँ से कहेंगे
0: जी,
1: लेकिन उसके बाद भी बहुत से किसान ऐसे हैं कि इससे अभी बहुत दूर हैं,
0: बहुत दूर हैं जी।
1: अरे एक ही परंपरा को अपनाए हुए हैं, खाद
0: जी,
1: या दवाई खाद, किसी पड़ोसी ने कह दिया 2 कट्टे फालतू गिर दो,
0: बिल्कुल,
1: किसी पड़ोसी ने आगे मेरे से फलाना खरपतवार मिला था वो दवाई गिर दो, अभी किसान वहाँ उलझा हुआ है,
0: बिल्कुल उलझा हुआ है।
1: तो वहाँ क्या कहना चाहेंगे आप, कि आप भी गए हैं, हम भी कह रहे हैं, कुछ आए भी हैं, जबकि अब तो किसान जो ना पहले से पढ़ा लिखा हो गया है,
0: बिल्कुल,
1: पहले किसान था वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था
0: जी,
1: अब जब से पढ़ा लिखा हुआ है तब से पता नहीं क्यों इतनी मुड़ पा रहा है।
0: सर देखिए, अब सरकार भी बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज पे बहुत मोटिवेट कर रही है फार्मर्स को। देखिए क्या होता है ना कि आप सिर्फ किसान के दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि हर चीज का समाधान खेती में यूरिया है
1: जी।
0: वो अगर पत्ता पीला दिखेगा तो वो यूरिया डाल देगा, उसको किसी भी तरह की समस्या खेत में आएगी उसका उसके दिमाग में आता है कि मुझे यूरिया डालना है, यूरिया के बाद वो ज्यादा से ज्यादा डीएपी डालता है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिसने पोटाश, जो पोटाश खेतों में बहुत सालों से डाला ही नहीं है जिन्होंने, तो देखिए एक बैलेंस फर्टिलाइजर। अब आप अपने, हम अगर इंसानों का एग्जाम्पल दें, हम सिर्फ रोटी खा के क्या हम अपने शरीर को बैलेंस न्यूट्रिशन दे सकते हैं? नहीं दे सकते। उसी तरीके से सिर्फ नाइट्रोजन देके हम अपनी फसलों को बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं दे सकते। हम सबको पता है 16 पोषक तत्व चाहिए पौधों को, जिसमें से हम क्या दे रहे हैं, सिर्फ हम नाइट्रोजन दे रहे हैं और फॉस्फोरस दे रहे हैं या जिंक दे रहे हैं, इन तीनों के अलावा बाकी हम ना पोटाश फार्मर्स दे रहे, मैं ऐसा नहीं कहती मगर बहुत कम मात्रा है, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज, ये बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो पौधों को मिल ही नहीं पा रहे। अब पौधा मिट्टी से ले लेता है मगर मिट्टी की भी एक क्षमता है, वो क्षमता जब वो मिट्टी में जितना प्राप्य है वो खत्म हो जाएगा तो पौधे को चाहिएगा, तो फिर उसमें पौधे में कमी आने लगेगी। तो फार्मर्स को ये देखना है कि हमें सिर्फ नाइट्रोजन और डीएपी एसएसपी पे नहीं निर्भर रहना है, हमें बाकी पोषक तत्व भी अपने पौधों को देने हैं।
1: मिट्टी भी क्या करेगी, जब बार बार रासायनिक खाद गिरेंगे आप, खाद तो बार बार रासायनिक गिर रहे हैं, मिट्टी की अपनी सेहत बिगड़ रही है, और अब अभियान भी आ गया, खेत बचाओ अभियान भी आ गया।
0: सर एक्चुअली क्या है ना, देखिए रसायन जो है ये उसका पोषण है, ठीक है, भोजन चाहिए उसको, हमें जैसे खाने के लिए चावल और रोटी मिलती है उनको रासायनिक और क्या सोर्स है हमारे पास, लेकिन हमारे खेत का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हमारा दिमाग में होना चाहिए कि हमें उसकी जैविक मात्रा, जैविक कार्बन की मात्रा को बढ़ाना है। उस और किसान बात, अब जीरी में भी देखिए सुंडी आती है लेकिन किसान उसका उसके लिए दवाई छिड़क देता है। अब हम किसान को बोलते हैं सर भाई आप ढैंचा उगाइए, ढैंचा उगाने के लिए वो मैडम उसमें तो सुंडी आ जाती है, ढैंचे के लिए सुंडी को मारने के लिए वो दवाई का प्रयोग नहीं करना चाहता, क्यों? क्योंकि उससे उसको फसल नहीं मिल रही, उसको लग रहा मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, मगर किसान ये नहीं सोच रहा कि ढैंचा उगा के जो प्रॉफिट आप ले पाएंगे वो शायद आप नॉर्मली भी ना,
1: जो मिट्टी की ताकत आपकी बनेगी,
0: जो ताकत मिट्टी में आएगी उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
1: बहुत जरूरत है अभी किसानों को जागरूक होने की, पढ़े लिखे होने के बाद
0: भी अभी जागरूक हो भी रहे हैं, मगर बहुत सारे ऐसे कोने हैं जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, मगर किसान भी इतने बढ़ चढ़ के नहीं है।
1: किसान तो तैयार होते हैं लेकिन समाज में कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनको उससे मुड़ देते हैं, छोड़ यार कोई बात नहीं तो कहते रहते हैं, वो जो चीजें है ना तो वो थोड़ा सा मुड़ते हैं उनको। असल तो बात है कि फसल के अंदर जो है मिट्टी का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, मिट्टी की जांच का, इसके साथ ही पानी का उतना महत्व है।
0: पानी का सर बहुत महत्व है, जिस एरिया में पानी अच्छा है ना शायद उस एरिया में किसानों को समझ में नहीं आता, क्योंकि पानी बहुत अच्छा है हमारे एरिया में, करनाल ब्लॉक हो गया, नीलोखेड़ी ब्लॉक हो गया, इसमें पानी बहुत अच्छा है, नमक की बिल्कुल कोई मात्रा नहीं है, लेकिन जिस एरिया में नमक है ना पानी में, आप उस एरिया में देखिए, असंध वाला जो एरिया है यहाँ पानी की क्वालिटी बहुत खराब है, उसमें नमक की मात्रा भी है, उसमें आरएसी यानी सोडियम की मात्रा भी है, अब वहां पर पानी अगर खराब है ना, तो वो पानी जो है आपकी मिट्टी को खराब करेगा। अब जीरी जैसी फसल है जिसको इतना पानी लगता है,

0: अगर आपकी मिट्टी आपके पानी में नमक बहुतायत है और आप जीरी लगाते हैं तो आप सोचिए आप अपनी मिट्टी में कितना ज्यादा सॉल्ट जितना ज्यादा नमक आप अपनी मिट्टी में डाल रहे हैं। तो पानी की टेस्टिंग उतनी ही जरूरी है जितनी कि आपकी मिट्टी की टेस्टिंग, क्योंकि अगर आप इस गति से नमक अपने खेतों में डालते रहे तो आने वाले कई सालों में आप शायद आज जो गेहूं जीरी ले पा रहे हैं आप ये नहीं ले पाएंगे, क्योंकि खेत में से नमक को निकालना नामुमकिन, नहीं निकाल सकते,
1: जमीन वही कालर और बंजर होती चल जाएगी।
0: हाँ, और अच्छा किसानों को ये भी समझना जरूरी है, देखिए नूनी और कालर ये दो तरह की एक तरीके से बीमारियां हैं अपनी मिट्टी में। नूनी मिट्टी का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ परहेज है कि आपको अच्छा नहरी पानी की अवेलेबिलिटी है तो नहरी पानी अपने खेत में लगाइए, ठीक है, आप मल्चिंग कीजिए ताकि पानी जल्दी से इवेपोरेट ना हो और मिट्टी पे मिट्टी की परत तक नमक ना पहुंच सके। अगर लेकिन कालर है जमीन, कालर जमीन को आप जिप्सम डालेंगे जीरी के सीजन में, गेहूं के सीजन में नहीं, जीरी के समय, जीरी से पहले आप एक सीजन में नहीं तो ज्यादा से ज्यादा दो सीजन में अपनी मिट्टी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं।
1: तो इसकी विधि है कुछ चांस करने की, कैसे पानी दिया जाए?
0: पानी सिर्फ आपने पानी का क्या करना है, जब आपका ट्यूबवेल चल रहा हो, एक से डेढ़ घंटा चलता हो आपका ट्यूबवेल, और आपने जो 250 ml बहुत सफिशियंट होता है, ऐसे दो दो ढाई ढाई लीटर की बोतलें भर के लाने की जरूरत नहीं है किसान भाइयों, आपको 250 ml तक का पानी सफिशियंट होता है। और आपकी आपको ये इंश्योर करना है कि पानी की बोतल अगर किसी दवाई की है तो आपने उसको धो के और उसमें फिर पानी भरना है।
1: उस दो बातें ख्याल रखनी है, अगर मिट्टी की जांच करानी है तो उसे पहले खाद न गिराओ
0: जी,
1: पानी है तो पानी की बोतल में कोई भी किस तरह की दवाई तेल वगैरह कुछ ना हो, अगर वो होगा तो फिर आपका जो परिणाम सही नहीं आएगा। तो उसकी जांच भी वही होनी है जहाँ पे मिट्टी जांच होती है।
0: बिल्कुल सर, वही उसी लैब में,
1: तो वैसी उसकी रिपोर्ट उसे पहुंच जाएगी
0: जी।
1: तो उम्मीद है जो हमारे किसान साथी हैं इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे कि फसल तो लेंगे लेकिन अपनी मिट्टी को के स्वास्थ्य के लिए, खेत बचाने के लिए जो है मिट्टी और पानी की जांच जरूर कराएंगे ताकि वो खादों का संतुलित प्रयोग कर सके, वरना धराधर खाद चलते रहेंगे और मिट्टी जो है खराब होती रहेगी। तो डॉक्टर किरण जी आप यहाँ आए और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद गिरधारी सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया, थैंक यू।
2: किसान भाई अभी सुन रहे थे कार्यक्रम फोन इन।
3: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहा
3: है, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। तो पहली वाली बात कहा,
4: परम तो सब नहीं डाले,
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच
3: है, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप पे बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जल्दी खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: ये था हमारा आज का किसानवाणी कार्यक्रम, और किसानवाणी में आज था फोन और फोन का विषय था कि मिट्टी पानी की जांच में विधि, और बातचीत हिस्सा रहे थे डॉक्टर किरण वरिष्ठ जिला विस्तार विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र करनाल। और इसके अलावा आज का जो है किसानवाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी
6: और साले भाई की ओर से
1: राम राम।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: कार्यक्रम ग्राम संसार, इसे मैं आपका अपना साथी गिरधारी
1: और मैं भाई रिसाले भाई
0: और मां दोनों का अंत है कार्यक्रम के सारे सुनने वाली मीठी मीठी प्यारी प्यारी
1: राम राम, राम।
0: रसाले भाई
1: जी गिरधारी भाई,
0: मौसम तो बाहर बहुत गर्म है।
1: हाँ बिल्कुल, गर्मी का तो पूछो ही ना, कह रहा भाई आज वर्गी तो लोग कदे नहीं देखी हमने।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: या तो लोग कई दिन चल जाएगी।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: कई दिन तो नहीं है के भी जो बता भी रखे अभी दो चार दिन तो कम से कम लेवेगी भाई, दो चार दिन लेवेगी तो भाई गर्मी के कई ना न्यू ईयर जो है ना अब तो न्यू कहे बार बार भाई जब जरूरत पड़े तो जद ही करते बाहर निकला है भाई, करते बाहर जद निकलो जब जरूरी काम हो, नहीं तो भाई कई गर्मी लागगी ना तो कई लेने के देने पड़ जाए गिरधारी भाई।
0: कई भाई पता काम करे
1: हाँ
0: भाई ग्राम पर तंग हो चलो बाहर घूम आओ।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: यू काम नहीं करना।
1: हाँ
0: क्योंकि जैसे हम इसे काम करोगे तो समस्या बहुत तकड़ी है इसमें।
1: अच्छा
0: तो लू लगेगी भाई, ये तो खर्चा।
1: अच्छा
0: डॉक्टर बजाएंगे गात खराब।
1: बिल्कुल,
0: अब फिर वह खान पीन की बात रह जाएगी, आप खा पी नहीं सकने के।
1: बिल्कुल गिरधारी भाई, कहीं ना करा भाई खान पीने के गर्मी लगी फिर तो जो है ना वो ORS का गोले पीना पड़ेगा। हाँ। बाकी मिठाई स्टाई चुन से थम चुरमा लिया हो ना।
0: चुरमा देख ले।
1: हाँ देख लिया डब्बा रख के अपना पहले आज तो।
0: लेकिन आज चुरमा गल है मैं आप बोला केसरा दूध भी ले रहा हूँ।
1: अच्छा यूनियरा डोलू में
0: डोलू है लेकिन खड़ाऊंगा बाद में।
1: अच्छा पहला मनोरंजन कराओगे के?
0: पहला मनोरंजन कराओगे और भाई एक बात कहेंगे।
1: हाँ।
0: कि भी देख सीधी सी बात है, किसी बात में कुछ सीख ही नहीं, अपने सिर का ख्याल रखना, खासकर जो घर में छोटे बालक है।
1: अच्छा
0: भाई उन्हें यू ही नहीं भी बालक तो हमारा पता के बाजू रहा
1: वो
0: बालक है उनके के गर्मी लागे रहा है भाई, गर्मी किसी की नहीं होंगी ठीक है नहीं, या किसी का लग सका।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे,
0: ठीक है ना। तो इस वास्ते जरूरी है कि वह आपने आप उन बच्चों का ख्याल रखना, छोटे बच्चे बाहर नहीं भेजने, आप भी जो है सिर पर कपड़ा ढक कर चलोगे ताकि कोई भी दिक्कत आपने ना हो। और मैं एक बात कहूँ देखो। हाँ। जिसकी मजबूरी हल ज्यादा है। अच्छा आजकल क्या है बालक घूमने फिरने भी आ रहे।
1: बिल्कुल गिरधारी भाई, जिस तरह देखा है ना छोटे छोटे बालक अपने मामे नान्या का जा रहे।
0: हाँ।
1: क्यों? क्योंकि भाई छुट्टियां हो रही, पर छुट्टियां नहीं थोड़ी अभी बाहर गलियां में कूदते फिरेंगे छोटे बालक भी, और जो बड़े बालक हैं भाई वहाँ भी अपना सार सपाटे पर कोई पहाड़ा में जा रहा है, कोई कड़ी जा रहा है, कोई कड़ी जा रहा है, सारी तरह हो रहा काम गर्मी का मौसम है।
0: बिल्कुल, और एक बात है। हाँ। या जब जद भी कोई काम बिगड़े नहीं वो जद बिगड़े जब आदमी मैं हो जाए मैं
1: बिल्कुल मेरा सही करे। हाँ मेरा कुछ नहीं हो सकता गर्मी में,
0: मैं नहीं कर दूंगा।
1: हाँ
0: लेकिन जो आदमी विनम्र होगा
1: बिल्कुल
0: जो महान आत्माएं होंगी उनमें मैं कभी नहीं आंदा।
1: बिल्कुल
0: देख एक मैं उनके कहने को कहेंगे या बातों सुनावांगे
1: या तो न्यू का है भी मैं पर कोई सुनाओ कोई भजन की तरह गणी कुछ
0: चार बैठे का सुनाओ
1: बैठे सुनने वाले बैठे सारे।
0: हां अल्लाह उनके वही सुनाओ सुनाओ फिर।
1: हां सुनाओ भाई है ना।

0: तो संदीप भाई
1: जी भी.
0: बात थी मैं किस तरह में कौन.
1: हाँ बिल्कुल सही कही.
0: लेकिन अपने मैं नहीं होनी चाहिए अपने में भी.
1: आप कद मैं करा
0: फिर अपने इनके संदेश तो कौन दिए.
1: संदेश भी देंगे
0: जिस संदेश ये लेंगे आप तो भाई इन्हें भेजे हैं जिसे पता लगे भी आप मैं कौन अपने में.
1: बिल्कुल.
0: और जी संदेश नहीं गए तो अपने मैं क्यों नहीं फिर तो भाई. तो ये संदेश देखो सब तरफ जो संदेश आया ना यू है मांगेराम सैनी दिनेश सैनी देवान सैनी प्रवीण सैनी ये भाई हैं गांव दांगला से.
1: दांगला दे
0: देखिए क्या लगे आपका नहीं साथ रहे को.
1: अच्छा गिरधारी भाई तो न्यू क्या है कि भाई सब ना हमारी तरफ ते राम राम. रिसाला भाई गिरधारी भाई विनोद भाई चतुरु भाई वीरेंद्र भाई को बढ़िया प्रोग्राम पेश करने पे धन्यवाद जी के.
0: मारकंते भी ने मिठी मिठी पाई पाई राम राम.
1: और ये कहे कि सारे कार्यक्रम हमने बहुत बढ़िया लगा के.
0: अच्छा
1: हाँ जितने भी भाई के कार्यक्रम पेश करा है अच्छे लगा.
0: तो ऐसा रिसाला भाई देखो हमारी कोशिश तो ये है कि जो हमारे साथी हैं ये हम इनकी उम्मीद करते थे.
1: बिल्कुल
0: प्रोग्राम उनका अपना प्रोग्राम है जे ये प्रोग्राम इनके न पसंद नहीं आया तो प्रोग्राम देने का कोई फायदा नहीं है
1: जी.
0: तो इस वास्ते इनका कार्यक्रम पसंद आया इनका बहुत बहुत धन्यवाद और कार्यक्रम में आगे भी संदेश लिखते
1: रहेंगे. रहेंगे
0: और एक संदेश और है
1: वो करते आया गिरधारी भाई
0: ये हैं आपको चश्मा मुझे दिखा कमजोर सा मैं जोर लगा देखूं.
1: हाँ देखो
0: ये हैं गौरव प्रवीण रणधीर गुरमेजो गांव जगूड़ी और दो यमुनगर से.
1: अच्छा
0: आप तो के पढ़ोगे मैं पढ़ दूँ. आप चश्मा साफ करो.
1: मैं तो चश्मा साफ कर लिया मेरा ध्यान थोड़ा खान पीन का नहीं भी जा रहा था.
0: अच्छा
1: हाँ
0: पर भाई
1: पहला संदेश पढ़ देंगे सुनावेंगे भी के कह रहे हैं
0: बाकी
1: फिर आप खावेंगे फिर इनका मनोरंजन करावेंगे.
0: मेरा बात सही है. तो ये कह रहे हैं भाई रसाले ने वीरवार ने ग्राम संसार में अरे चारे ज्वार के बारे में बहुत उपयोगी जानकारी दी.
1: अच्छा
0: रविवार को भाई गिरदास जी ने थारे संदेश मारे गीत प्रस्तुत किया
1: बहुत बढ़िया
0: बहुत अच्छा लग गया और हमें सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद. सारे जो है बहुत बढ़िया कार्यक्रम पेश करते हैं
1: जी.
0: तो बात यही है कि जो हमारे साथी हैं ये रणधीर हैं गौरव है प्रवीण गुरमेज जो ये सारे के सारे जो हमारे नियमित श्रोता हैं.
1: बिल्कुल.
0: और ये जो श्रोता हैं हमारे ये हर प्रोग्राम को जानते सुना और ये हमारी खुशी की बात है इनके कारण प्रोग्राम दे पा रहे हैं.
1: गिरधारी भैया प्रतिक्रिया भी दे हैं या लिखा भी है भी कौन सी तारीख ना कौन सा प्रोग्राम और किस भाई ना कौन सा प्रोग्राम दिया.
0: हाँ तो जब इतना कुछ मेहनत करें नहीं
1: हाँ
0: तो हमारा भी जी फिर नहीं हम प्रोग्राम में मेहनत करा.
1: बिल्कुल.
0: और यही कारण है कि हम जो है एक बढ़िया प्रोग्राम दे पाना और इनने प्रोग्राम सुनिया प्रतिक्रिया दी इनका बहुत बहुत धन्यवाद. आगे भी कार्यक्रम में ये जो है संदेश लिखते रहेंगे और भाई हमारा प्रयास है कि हम जो है इनके वास्ते बहुत बढ़िया कार्यक्रम देते रहेंगे. तो संदेश इनका बहुत बहुत धन्यवाद. संदेश

0: गिरधारी भाई
1: जी,
0: बात तो न्यू है कि आपना जो है ना संदेश भी सुना दिए
1: जी,
0: और इसके गिले गिले हम भाई आज हम एक जानकारी भी देंगे भाई है ना कि भी जो हमारे जो युवा साथी हैं, किशोर साथी हैं, उनके लिए भी जो व्यायाम है या भाई उनका चरित्र निर्माण है वो कितना बढ़िया के महत्व रखा है। गिरधारी भाई बात न्यू है कि हमारे जो किशोर साथी हैं या युवा साथी हैं उनके भाई व्यायाम तो देखो, चाहे कई बुढ़ा आदमी हो, चाहे कोई जवान हो, चाहे भाई किसी भी उम्र का हो, व्यायाम तो सब ना करना चाहिए और करना भी चाहिए क्योंकि भाई उनका स्वास्थ्य यदि बढ़िया रहेगा जब वो सवेरी उठे 5 बजे घूमने जावा।
2: हाँ भाई, इन्हें थोड़ा सा कुछ और बताया
0: दिया,
2: थोड़ा आराम ले ले क्योंकि जो चुरमा था आपका आस कर लग रही हूँ।
0: अच्छा अच्छा, थोड़ा आराम ले, समझ रहे हो था बात नीचे।
2: हाँ,
0: नीचे।
2: हाँ।
3: किसानों की पहली पसंद कंपोज एक्सपोर्ट्स के धान बीज
4: अब अनाज मंडी पिपली में भी उपलब्ध।
3: कंपोज एक्सपोर्ट्स के बीज खरीदते समय पैकिंग पर ट्रेडमार्क नंबर
4: 120-8765 यानी 1208765 देखकर ही खरीदें।
3: खर्चा कम, उत्पादन ज्यादा, ये है कंपोज एक्सपोर्ट्स का वादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
4: 9813173102।
3: कंपोज एक्सपोर्ट्स, भरोसे का प्रतीक।
5: दस लाख की लॉटरी मुझे,
6: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
7: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: किसानों की पहली पसंद कंपोज एक्सपोर्ट्स के धान बीज
4: अब अनाज मंडी पिपली में भी उपलब्ध।
3: कंपोज एक्सपोर्ट्स के बीज खरीदते समय पैकिंग पर ट्रेडमार्क नंबर
4: 120-8765 यानी 1208765 देखकर ही खरीदें।
3: खर्चा कम, उत्पादन ज्यादा, ये है कंपोज एक्सपोर्ट्स का वादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
4: 9813173102।
3: कंपोज एक्सपोर्ट्स, भरोसे का प्रतीक।
9: जलवायु परिवर्तन हमें कैसे प्रभावित करता है, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन मानव जीवन के लिए एक खतरा है क्योंकि यह ताजा पानी कम करता है, भोजन की सप्लाई में रुकावट डालता है और वायु की क्वालिटी को खराब करता है। इसका असर खासकर गरीब लोगों पर पड़ता है। यह जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचाता है और लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल देता है। गर्मी की लहर, बाढ़ और सूखा जैसे मौसम अब बार बार हो रहे हैं जिससे लोगों को नुकसान होता है और उन्हें अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। जलवायु परिवर्तन तटवर्ती और बाढ़ प्रभावित इलाकों से पलायन का बढ़ावा दे सकता है। कुछ क्षेत्रों को थोड़े समय के लिए लाभ हो सकता है लेकिन अधिकतर को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह एक चौंकाने वाली बात है, करीब 10 लाख पौधे और जानवरों की प्रजातियां विलुप्त होने के किनारे पर हैं और कई तो अगले कुछ दशकों में ही गायब हो सकती हैं।
2: यह संदेश आकाशवाणी के सहयोग से पेश किया गया है।
3: किसानों की पहली पसंद कंपोज एक्सपोर्ट्स के धान बीज
4: अब अनाज मंडी पिपली में भी उपलब्ध।
3: कंपोज एक्सपोर्ट्स के बीज खरीदते समय पैकिंग पर ट्रेडमार्क नंबर
4: 120-8765 यानी 1208765 देखकर ही खरीदें।
3: खर्चा कम, उत्पादन ज्यादा, ये है कंपोज एक्सपोर्ट्स का वादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
4: 9813173102।
3: कंपोज एक्सपोर्ट्स, भरोसे का प्रतीक।
2: साले भाई
0: जी, गिरधारी भाई
2: ये बात करेंगे जो तो आप न्यू को थे कि देखो भी चरित्र की बात है।
0: हाँ बिल्कुल,
2: अब चरित्र की जहां तक बात है, देखो जब तक चरित्र व्यक्ति का बड़े नहीं होगा समाज में दिक्कत ही दिक्कत है।
0: बिल्कुल सही करे या तो
2: बात, और उस चरित्र में एक बात हो रहा है, अगर आप थोड़ा व्यायाम
0: बिल्कुल
2: थोड़ा और तिर ध्यान दोगे तो बच्चों का चरित्र तो बढ़ेगा।
0: बिल्कुल,
2: वरना क्या होता है जो बच्चा खेल में भी नहीं है, व्यायाम में भी नहीं है, अच्छे साहित्य में भी नहीं है तो वो एक गलत रास्ते पे जाएगा।
0: बिल्कुल,
2: और जब गलत रास्ते पे जाएगा तो उसका प्रभाव उसके चरित्र पे ही है।
0: गिरधारी भाई पहला देखेगा जब आप बचपन में थे ना
2: जी,
0: अपना के व्यायाम थोड़ी था, हम तो खेलते कूदते फिरते रह रहे थे सारा दिन।
2: बिल्कुल
0: भाई, चाहे माटी में खेल लिए, नहीं पता लगे था सांझ ना भाई वो आंधी आ रही है, मी आ रहा है, मैं कूद रहे।

0: भाग रहे हैं भाई, जो अपने आप ही जो है ना बच्चे अपने बड़े होंगे रहे करा थे, और ना उन्होंने कोई नहीं होता भी हम व्यायाम करेंगे भाई, व्यायाम तो आप ही हो जाकर था, और देसी खेल हो रहे खेलने के। आज की तरह जो है ना बच्चे जो है ना टीवी पर देखते रहेंगे, हाथ में रिमोट रखेंगे भाई, वो गेम आ गया वो गेम, ये देखो इससे थोड़ा सा स्वास्थ्य पर तो प्रभाव जरूर पड़ेगा गिरधारी भाई।
1: तो असल में ऐसा है ना, जब आदमी बच्चे का ध्यान उधर चला गया,
0: बिल्कुल
1: खेल भी एक व्यायाम ही है,
0: खेल व्यायाम।
1: स्कूल में जो पीटी हुई थी नी, वह व्यायाम ही थी सारे सारे, आप रात ने लुकन छपाती खेलो थे, वो भी व्यायाम था।
0: तो कई तरह के खेल खेले करे थे गिरधारी भाई जब, तो और कई करे नहीं, शाम ने जब घास लेकर आ रहे थे, गाड़ियां खड़ी रह रहे थे, और गाड़ी ने ऊपर नीचे करे थे, रोड़ा देख रहे थे।
1: तो ये सारे व्यायाम थे, व्यायाम का हिस्सा था।
0: बिल्कुल।
1: तो उससे क्या था कि जो हमारा युवा है, किशोर है, वो नशे वगैरह से दूर रहता,
0: बिल्कुल
1: उसका ध्यान वहां था। और उससे क्या था, एक नशा जो है ना वो व्यक्ति के चरित्र पे सबसे गंदा इफेक्ट डाला है, बुरा प्रभाव डाला है। तो चरित्र निर्माण में जरूरी है कि बच्चे थोड़ा व्यायाम कर ले, खेल ले, खेल ध्यान दे, अच्छा साहित्य पढ़े, अच्छा साहित्य देखे,
0: बिल्कुल
1: ठीक है ना। जब आप साहित्य अच्छा देखेंगे, साहित्य अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी जगह बैठे,
0: बिल्कुल
1: बुरी जगह तो हमेशा नुकसान देगी,
0: बिल्कुल।
1: तो इस वास्ते यही युवाओं के चरित्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे,
0: क्योंकि इससे जो है ना गिरधारी भाई, एक तो उनका देखो बुद्धि का भी विकास होगा,
1: बिल्कुल
0: मानसिक रूप से भी ठीक होंगे वहाँ, और कई बातों तो जो है ना इतनी दूर हो जाए, इस तरह आजकल के रहे हैं लोग, बच्चे भी देखे हैं नशे की तरफ जा रहे हैं, इन चीजों से दूर रहेंगे, तो इन चीजों से दूर रहकर जदि जाकर उनका जो है ना स्वास्थ्य का जो है ना प्रभाव जो है उनका ठीक रहेगा, ताकि वो अपने जो व्यायाम करेंगे या अपना जो बुरे व्यसन है इनते दूर रहेंगे।
1: जब चित्र निर्माण होगा तो वाणी मीठी होगी,
0: वाणी मीठी होगी,
1: और वाणी मीठी चित्र निर्माण का एक कारण है। तो जितने मीठे शब्द होंगे ना किसी ने बुरा लगेगा ना भाई क्लेश होंगे।
0: गिरधारी भाई नहीं, मीठा बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो,
1: ये भी नहीं है।
0: अच्छा ये भी नहीं है,
1: सुन ले,
0: सुनाओ।

0: रसाले भाई
1: जी, गिरदारी भाई,
0: एक संदेश भाई का और है, यू सुन लाप।
1: हाँ।
0: और यू है गांव नागर से इंदिराज पार्थ प्रीक्षित हार्दिक कम्बोज उनके परिवार के सदस्य, ये कह रहे हैं सब नमाई मीठे मीठे प्यार प्यार राम राम।
1: गिरदारी भाई देखो, हमारे कार्यक्रम के जो है ना, ये बहुत इतने बढ़िया श्रोता है ना, इन पद कई रह जाए, इसका एक मित्र हो रहा है जिसका संदेश पहला लिया।
0: हाँ।
1: रणधीर का,
0: तो ये कह रहे हैं सभी को हमारी राम राम, सारे भाइयों को, और महेंद्र मोहन जी की आवाज में जो है हमने वो भेंट वार्ता सुनी, बड़ी अच्छी लगी किसान की वो।
1: जी बिल्कुल।
0: और 8-6 को विनोद भाई ने मूंग की जानकारी दी, वो बड़ी अच्छी लगी, और ये सारी जानकारी हमारे लिए बहुत लाभदायक है, और एक किसान भाई का वो भेंट वार्ता थी, और अच्छी लगी।
1: जी बिल्कुल।
0: तो हमारा प्रयास ही है कि जो प्रतिशील किसान है उसको भी हम मंच पे लेकर आवें,
1: बिल्कुल,
0: ताकि उसके अनुभव आप तक पहुँचे, और बाकी जो समय के अनुसार जो समसमय की जानकारी आप तक पहुँचावा, आपने अच्छी लगी, मैं बड़ी खुश हुई कि हम आपकी उम्मीदों पर खड़े उतर रहे हैं और प्रोग्राम वो दे रहे हैं जो आपने पसंद है।
1: बिल्कुल।
0: तो संदेश भेजने का बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी कार्यक्रम में संदेश भेजते रहेंगे।

0: असले भाई
1: जी
0: बार चरित्र निर्माण की थी तो चरित्र निर्माण में समय का प्रबंध होना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं बात तो आप।
0: समय की बात मानना।
1: हाँ बिल्कुल
0: समय में चलना पड़ेगा।
1: हाँ,
0: ले हाँ,
1: लेंगे।
0: तो इसके अलावा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम समाप्त है। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी
1: और साले भाई की उठता है
0: राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:23 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी बात।

दोस्तों आप सबका स्वागत है कार्यक्रम आपकी बात में। और आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए मैं हूं आपका दोस्त विपिन सहगल। दोस्तों आपके ढेर सारे मेल्स हमें मिले हैं, उन मेल्स में आपने अपनी बात कहने की कोशिश की है, आपने कुछ सुझाव दिए हैं, आपने कुछ शिकायतें की हैं, आपने कुछ हमारे प्रोग्राम्स की तारीफ की है। तो भाई उस पिटारे को लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं और आइए आपके जो मेल्स हैं उनको पढ़ने का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम कोई मेल पढ़ना शुरू करें, आपसे एक निवेदन है कि जो भी आप मेल करें तो उस मेल की जो भाषा है वो बड़ी ही सौम्य, बड़ी ही जेंटल और बड़ी पोलाइट होनी चाहिए, क्योंकि आकाशवाणी जो है वो जाना जाता है स्वस्थ मनोरंजन के लिए। कई बार हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप जिस भाषा में मेल को लिखते हैं वो भाषा जो है वो आकाशवाणी पर प्रसारित करने लायक नहीं होती। तो आप सबसे निवेदन है कि बड़ी अच्छी भाषा में, बहुत प्रबुद्ध हमारे श्रोता हैं, तो आप जब हमें अच्छी भाषा में अपनी शिकायत, प्रशंसा या जो भी बात आप कहना चाहते हैं तो आप वो हमें लिख कर देंगे, हमें भी अच्छा लगेगा और सुनने में आपको भी अच्छा लगेगा और जो हमारे दूसरे श्रोता प्रोग्राम सुनते हैं उनको भी आपकी बात सुनने में आनंद आएगा। तो सबसे पहले जो मेल हमें मिली है वो मिली है, आपने कई नाम लिखे हैं, वली बाबा अंसारी, रामलाल चंद्रवंशी, दुर्गा प्रसाद सैनी, साबित खान, सुदर्शन शाह, मुकेश शर्मा, गजानन येले, अरविंद कुमार। और आपने ये मेल कहाँ से लिखी है, आपने ये बात नहीं लिखी है, क्योंकि आपने केवल ये लिखा है कि हम सब आकाशवाणी के निमित्त श्रोता हैं। तो चलो खैर, आपका शुक्रिया, आपने अपनी जगह का नाम नहीं लिखा। आप लिखते हैं कि आज दिनांक 9 जून 2026 को सुबह की सभा में प्रस्तुत कार्यक्रम जो राजीव धीमान जी ने प्रस्तुत किया हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सुबह सवेरे में इन्होंने 19 और 26 मई को भी मॉर्निंग ड्यूटी में सुबह सवेरे कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, वो भी हमें पसंद नहीं आया था। तो एक प्रकार से इन कार्यक्रमों को सुनकर हमें खुशी नहीं हुई, इसलिए इन कार्यक्रमों को हमने पसंद नहीं किया। और आप आगे लिखते हैं कि हम आपको बताते हैं कि इनको जब हम सुनते हैं तो हमारी सुबह अच्छी नहीं जाती, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप राजीव धीमान को मॉर्निंग ड्यूटी ना दें। और आपका शुक्रिया। आप आगे लिखते हैं कि जहां आकाशवाणी के 90 वर्ष में आकाशवाणी अपने श्रोताओं का दायरा बढ़ा रही है, वहीं पर कुछ प्रस्तुतकर्ता जो हैं वो ऐसा करते हैं कि श्रोताओं के जो SMS हैं उनको हाइड करते हैं, ऐसा राजीव धीमान जी भी करते हैं। तो भाई आपने, सभी दोस्तों ने मिलजुल कर ये जो मेल लिखी है, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, धन्यवाद, आपने इस मेल को लिखा। आपको राजीव धीमान जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम पसंद नहीं आया, वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि भाई देखिए जो हमारी जो लाइक्स और डिसलाइक्स हैं उसको तो कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता। हालांकि राजीव धीमान जी अपने कार्यक्रम बड़ी मेहनत से प्रस्तुत करते हैं और बड़े अच्छे से अपने कार्यक्रमों को अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं, लेकिन यदि आपको पसंद नहीं आया तो खैर कोशिश करेंगे कि हम वो कार्यक्रम लेकर आएँ जो आपको पसंद आए। और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि आप जो हमें सुझाव देते हैं उन सुझावों पर हम अमल करके अपने कार्यक्रमों को और अच्छा करने की कोशिश करें। तो भाई हम तो इतना ही कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में हम जो सारे प्रस्तुतकर्ता हैं, आपकी जो आशाएं हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उन आशाओं पर हम खरा उतरेंगे और एक से बढ़कर एक कार्यक्रम आपको हम सुनाते आए हैं और आगे भी हम सुनाते रहेंगे। खैर, आपका इस शिकायत भरी ईमेल के लिए शुक्रिया और हमारे कार्यक्रम यूँ सुनते रहिए और हमें अवगत कराते रहें।
आपको क्या कार्यक्रम सुनना है और कौन सा कार्यक्रम आपको सबसे अच्छा लगता है। तो आपका इस ईमेल के लिए बेहद शुक्रिया।

0: दोस्तों अगली जो मेल हमें मिली है वो मिली है रणधीर बांगड़ प्रदीप झगोड़ी गांव झगोड़ी कस्बा रादौर जिला यमुनानगर से। आप लिखते हैं कि आपकी बात पढ़ने वाले सभी स्टाफ इंचार्ज और आपकी बात पढ़ने वाले भाइयों और बहनों को बहुत बहुत नमस्कार। आकाशवाणी के 90 वर्ष की बहुत बहुत बधाई। संध्या जी पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, अच्छी लगी। सोमवार को चांदनी रातें कार्यक्रम प्रदीप जी ने पेश किया, हम सोते रहे जागते रहे और प्रोग्राम सुनते रहे, बहुत अच्छा लगा। प्रमिला अनुराधा श्वेता जैन ज्योतिष्मा शशि बाला नवीन राजीव धीमान और पुरुषोत्तम, आपको इन सब के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं ऐसा आप लिखते हैं। तो भाई रणधीर जी आप हमारे नियमित श्रोता हैं, बड़े शौक से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और आपको संध्या जी ने जो पर्यावरण के बारे में जानकारी दी आपको अच्छी लगी और प्रदीप जी का जो कार्यक्रम था वो भी आपको अच्छा लगा चांदनी रातें, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हमारे कार्यक्रम सुनते रहेंगे और हर कार्यक्रम में जैसे पहले भी आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं आगे भी करते रहेंगे। आपका इस मेल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इससे पहले हम अगली मेल पढ़ें ये संदेश सुनिए।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं आपकी अपनी आवाज है, आकाशवाणी, सुनते रहें जुड़े रहें।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
0: दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम आपकी बात में। अगला मेल हमें मिला है जय हिंद। आप लिखते हैं कि कैप्टन श्याम लाल मीणा सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से, उसके बाद आपने जय हिंद भी लिखा है तो नमस्कार आपको। आप लिखते हैं कि आदरणीय विनय श्री केंद्रीय निदेशक आकाशवाणी कुरुक्षेत्र व प्रस्तुतकर्ता जी नमस्कार, जय हिंद। आज सुबह सवेरे कार्यक्रम राजीव धीमान जी की प्रस्तुति में बहुत अच्छा लगा, जानकारी से भरपूर कार्यक्रम था, श्रोताओं के नाम भी शामिल किए गए, गीत भी मधुर थे। भाई राजीव जी को शुभकामनाएं। श्यामलाल मीणा जी आपने ये जो मेल लिखा है इससे पहले जो हमने मेल पढ़ा था, अब देखिए बात वही है कि पसंद अपनी अपनी होती है, ना पसंद भी अपनी अपनी होती है। कुछ लोगों को एक कार्यक्रम पसंद आता है, कुछ को नहीं आता है, तो हम इस बात को चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पसंद और नापसंद बिल्कुल इंडिविजुअल होती है, पर्सनल होती है। आपको राजीव धीमान जी का कार्यक्रम आज का बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत तारीफ की है, तो राजीव धीमान जी यदि इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको भी अच्छा लगा होगा, तो आपका इस प्रशंसा के लिए शुक्रिया। आप आगे लिखते हैं कि 2 जून का आपकी बात कार्यक्रम जो

करिश्मा जी ने प्रस्तुत किया। मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरी ईमेल बिल्कुल अंत में शामिल की गई और वो भी आधी अधूरी पढ़ी गई, जवाब बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं थे। एक श्रोता ने इतनी लंबी ईमेल लिखी जिसमें आगाह करने वाली कोई बात नहीं थी। सारा समय उसी मेल को पढ़ने में व एक बात को बार बार दोहराने में ही समय लगा दिया। कृपया एक ही मेल पर इतना समय मत लगाएं, सभी मेल शामिल करें। जी हाँ कैप्टन श्याम लाल मीणा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। कुछ हमारे श्रोता यदि इस बात को समझ जाएं, अंडरस्टैंड कर जाएं कि मेल को जितना आप शॉर्ट, जितना आप क्रिस्प लिखेंगे उतना हमें पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और श्रोताओं को सुनने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि लिखने की यही कला होती है। यदि आप छोटे से सेंटेंसेस में अपनी बात को पूरा कर जाते हैं तो आप एक बड़े ही प्रबुद्ध श्रोता हैं, जैसा कि आपने अपनी मेल में लिखा है। खैर, आपको 2 जून का इसलिए वो कार्यक्रम पसंद नहीं आया ज्योतिषमन ने जो प्रस्तुत किया, क्योंकि आपकी मेल को अंत में शामिल किया गया और इस बात का जवाब भी आपने खुद ही दे दिया है कि कुछ मेल्स बहुत बड़ी थी, उन मेल्स को पढ़ने में ही टाइम सारा चला गया। तो ज्योतिषमा जी समय के अभाव में ऑब्वियसली विवश थी, वह आपके मेल को अच्छे से पढ़ नहीं पाई, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन आपके माध्यम से ये निवेदन भी करना चाहते हैं कि जब हमें आप मेल लिखें सभी श्रोता, तो टू द पॉइंट बात करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है और सभी श्रोताओं के जो मेल हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। जैसा कि आपने अपनी मेल में लिखा है कि श्रोता बार बार उसी बात को दोहराते हैं, और इस कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने आपसे निवेदन किया कि अपनी भाषा पे आपको कंट्रोल रखना चाहिए। जिस भाषा में आप हमें मेल भेज रहे हैं वो बड़ी ही सौम्य, पोलाइट और सॉफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अच्छी भाषा में मेल नहीं करेंगे, अच्छी भाषा में उत्तर भी कई बार मुश्किल हो जाता है देना। तो आपको ज्योतिषमा जी का वो कार्यक्रम अच्छा नहीं लगा, खैर इसके लिए तो हम माफ़ी आपसे हमने मांग ली है। कोशिश करेंगे कि आपकी जो मेल्स हैं समय से ली जाएं, जैसा कि आज हमने आपकी मेल को समय से पढ़ दिया है, और हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा सुनकर, आपकी मेल को अच्छे से पढ़ा गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप यूं ही हमारे कार्यक्रम सुनते रहेंगे, यूं ही अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहेंगे। तो कैप्टन श्यामलाल मीणा जी, जो कि राजस्थान से आपने मेल किया था, आपका इस मेल के लिए बेहद शुक्रिया।

0: दोस्तों, इससे पहले हम अगली मेल पढ़ें, ये संदेश सुनिए, इसके बाद फिर आज के कार्यक्रम की अगली मेल।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम आपकी बात में। आज की जो अगली मेल हमें मिली है वो मिली है रवि कुमार राहुल कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से। आप हमारे नियमित श्रोता हैं और बड़ा अच्छा से आपने ये मेल लिखा है, बड़ा शायराना अंदाज में और बीच में आपने कुछ कविताएं लिखने की कोशिश की हैं।

तुकबंदी करने की कोशिश की है, तो हमारे जो दूसरे श्रोता हैं उनको अच्छा लगेगा आपका ये मेल। आप लिखते हैं कि रेडियो यानी आकाशवाणी जो हर पल एक नई किरण के साथ आता है, जो 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है, और हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हां, आपको भी शुभकामनाएं। हमने 8 जून को आकाशवाणी के जो 90 वर्ष हैं वो पूरे कर लिए हैं, और ये तभी पॉसिबल हो पाया है जब हमारे जो प्रबुद्ध श्रोता हैं हमें सुनने वाले हैं, जो हमसे जुड़े रहे। तो इन 90 वर्ष में आकाशवाणी ने एक बड़ी लंबी यात्रा तय की है, और उस यात्रा में जो मुसाफिर थे वो आप प्रिय श्रोता ही थे, क्योंकि आप श्रोताओं के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि आकाशवाणी की आवाज़ आज तक घर घर में गूंज रही है। आप आगे लिखते हैं कि जो पहले के ज़माने में केवल सुनते थे पर आज के दौर में सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। सचमुच आकाशवाणी गागर में सागर है, मनोरंजन शिक्षा ज्ञान सभी प्रकार की भंडार से भरा है। बच्चों से लेकर बुढ़ापे तक की सफर ये लेकर आता है। मुझे रेडियो ने अपने साथ जोड़कर रखा, मैं भाग्यशाली हूँ जो एक दूसरे से मिलने व देखने का मौका दिया। सच्चा मित्र है आकाशवाणी, और अपने जीवन के अंत तक जुड़े रहने का प्रयास करूंगा। जितना भी लिखूं उतना ही कम है। तो रवि कुमार राहुल जी, बड़ा ही इमोशनल, बड़ा ही भावों से भरा हुआ आपने ये एक अपना जो दिल खोल कर रख दिया है, क्योंकि आप ये लिखते हैं कि गागर में सागर है आकाशवाणी, मनोरंजन शिक्षा ज्ञान और स्वस्थ मनोरंजन का भंडार है आकाशवाणी। आप जो लिखते हैं कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, जी हाँ, हम भी भाग्यशाली हैं जो आप जैसे श्रोताओं को अपने साथ हर बार खड़ा पाते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर आप श्रोता हमारे साथ चलते हैं, और इतने अच्छे दोस्त रेडियो हमें देता है। आप अंत में जब लिख रहे हैं कि जीवन के अंत तक जुड़े रहने का प्रयास करूंगा, ये बात बड़ी ही भावुक करने वाली है, क्योंकि भाई हम तो परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो उम्र है यूं ही आगे बढ़ती रहे, आप यूं ही हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहें, यूं ही आकाशवाणी के साथ साथ चलते रहें, और ये सफर जो है कभी भी खत्म ना हो। अंत में आप अपने ईमेल में लिखते हैं कि रेडियो के साथ उठता हूँ, इसी के साथ सोता हूँ, जब सुनता हूँ नाम अपना तो बहुत खुश होता हूँ, कभी फरमाइश पूरी ना हो तो मायूसी में आपा होता हूँ, मेरा नाता ही कुछ ऐसा है रेडियो से। जी हाँ जनाब, मैं रेडियो श्रोता हूँ। क्या बात है रवि कुमार राहुल जी, कितनी बढ़िया कविता में आपने अपने भावों को समेट दिया है। यही एक कवि की परिकल्पना होती है, यही एक पोइट की बात होती है, और इन्हीं भावनाओं की हम कदर करते हैं। तो आपने इतना भावुक, इतना कमाल का ये मेल लिखा है, यकीन मानिए रवि कुमार राहुल जी, आपकी जो भावनाएं हैं उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी हम आदर करते हैं, और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप यूं ही प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और हमारे कार्यक्रम यूं ही सुनते रहें, क्योंकि इतना बढ़िया आपने ये मेल लिखा है, हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आपने लिखा बहुत कम है लेकिन हमें समझ बहुत ज़्यादा आया है। तो हमारे जो दूसरे श्रोता हैं आपकी इस बात को सुनकर उनको भी अच्छा लगा होगा कि रेडियो के साथ आप उठते हैं, रेडियो के साथ आप सोते हैं, जब आप रेडियो पे अपना नाम सुनते हैं तो आपको प्रसन्नता होती है, कभी आपको मायूसी होती है, ऐसा नाता आपका बन गया रेडियो से कि रेडियो आपकी जान बन गया है, रेडियो जो है आपकी एक आत्मा बन गया है, जो कि रेडियो आपके साथ साथ पूरे जीवन चल रहा है और चलता रहेगा। रवि कुमार राहुल जी, कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से आपने ये मेल किया, आपका बेहद शुक्रिया। और दोस्तों, आज की अंतिम मेल पढ़ने का टाइम आ गया है, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं गीत, क्योंकि हमारे पास आज वक्त है आपको गीत सुनवाने का। इस गीत के बाद आज के कार्यक्रम की अंतिम मेल।

दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम आपकी बात में। ये मेल हमें मिली है संजीव कुमार, आप खुखनी तहसील इंद्री जिला करनाल से आपने ये मेल लिखी है। आप लिखते हैं, आप इंग्लिश में लिखते हैं कि सुबह सवेरे कार्यक्रम

आपने सुना, और ये घेषणा के द्वारा प्रस्तुत किया गया 3 जून को, और उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात की। 4 जून का कार्यक्रम श्वेता जैन ने प्रस्तुत किया, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी पूर्णिमा स्वास्थ्य पर, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन, और 5 जून का आपने कार्यक्रम सुना जो कि संध्या जी ने प्रस्तुत किया, उन्होंने वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर बातचीत की। तो आपको ये सारी जो बातचीत है अच्छी लगी, आपका इस मेल के लिए बेहद शुक्रिया। और दोस्तों, एक और मेल हमें नजर आई है डेर पाटन गुजरात से धीरज बीरबारी की तरफ से। आप लिखते हैं कि आकाशवाणी कुरुक्षेत्र परिवार और टेक्निकल टीम और सभी श्रोताओं को कल पूरे हुए आकाशवाणी प्रसारण यात्रा के 90 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के कार्यक्रम को सर्वोत्तम कार्यक्रम के निर्माण में अमूल्य योगदान के लिए हृदय से धन्यवाद। और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का प्रसारण भारत और विदेश में रहते अनगिनत श्रोता वर्ग सुनते हैं। आदरणीय प्रदीप जी, विपिन सहगल जी, ज्योतिष्मा जी और आपकी बात कार्यक्रम पेश करने वाले अनाउंसर जी को धन्यवाद। हमारे 90 साल की प्रसारण यात्रा में श्रोताओं ने बहुत कुछ पाया है, वही ज्ञान और मनोरंजन प्रसारण यात्रा जारी है। रात्रिकालीन चांदनी रातें कार्यक्रम फिल्म गीतों का लोकप्रिय कार्यक्रम है, और सुबह सवेरे कार्यक्रम श्रोताओं का लोकप्रिय कार्यक्रम है, और कार्यक्रम की जो पेशकश है लाजवाब होती है। सभी अनाउंसर भाई बहनों को हृदय से धन्यवाद। डेर पाटन गुजरात से धीरज बी रबारी। धीरज बी रबारी जी, आपका बेहद शुक्रिया, इतना अच्छी आपने मेल लिखी है। आप जब भी हमें मेल लिखते हैं हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें ताकत मिलती है, हमें हिम्मत मिलती है आगे बढ़ने के लिए। आपका इस मेल के लिए शुक्रिया, और हम आशा करते हैं कि आप यूं ही हमारे कार्यक्रम आगे भी सुनते रहेंगे। और दोस्तों, जैसे ही हम आपसे बातचीत कर रहे हैं हमें एक और मेल स्क्रीन पर नजर आ गई, तो यह आपने लिखी है गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से रामधारी अबाना ने। आपने इस मेल में काफी रंग बिरंगे शब्दों का इस्तेमाल किया है। दिनांक 2 जून 2026 को ज्योतिष्मा जी की प्रस्तुति में आपने कुछ बातें, कुछ गीत कार्यक्रम जो कि सुमन कल्याणपुर को समर्पित था, आपको अच्छा लगा। 3 जून को कार्यक्रम विश्व साइकिल दिवस पर जो हमने प्रस्तुत किया आपको अच्छा लगा। दिनांक 7 जून को कार्यक्रम सुबह सवेरे प्रमिला सैनी ने प्रस्तुत किया, विश्व खाद्य दिवस के बारे में जानकारी दी और 90 वर्षों के गौरवशाली योगदान पर जानकारी दी, आपको अच्छा लगा। और दिनांक 8 जून को प्रसारित सुबह सवेरे कार्यक्रम संध्या जी ने प्रस्तुत किया और वो भी आपको अच्छा लगा। दिनांक 9 जून को प्रसारित सुबह सवेरे कार्यक्रम जो आपने सुना, आदरणीय राजीव धीमान जी ने प्रस्तुत किया, बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन, संघर्ष, त्याग और राष्ट्रभक्ति के बारे में आपको जानकारी मिली। कार्यक्रम में भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी तथा प्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर के जन्म दिवस के बारे में जानकारी मिली, वो आपको अच्छी लगी। इस प्रस्तुति के लिए आप आदरणीय राजीव धीमान जी को हार्दिक बधाई देते हैं और आप शुक्रिया करते हैं। आपका रामधारी अबाना जी, इस बेहद ही रंगीन मेल के लिए बेहद शुक्रिया। आपने हमारे सभी कार्यक्रमों की तारीफ की है, आपको हमारे सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आप यूं ही हमारे कार्यक्रम सुनते रहेंगे और यूं ही हम आगे बढ़ते रहेंगे जब तक आपका साथ हमारे साथ है। दोस्तों, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम आपसे कुछ और बातचीत करें। अब अपने दोस्त विपिन सहगल को आज का आपकी बात कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी कहानी।

दोस्तों आपका स्वागत है कार्यक्रम गीतों भरी कहानी में। जैसा कि आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, हम हर महीने के दूसरे और चौथे मंगलवार को प्रस्तुत करते हैं गीतों भरी कहानी। तो भाई आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं लेकर कार्यक्रम गीतों भरी कहानी। और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए मैं हूं आपका दोस्त विपिन सहगल। दोस्तों आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं, जिस कहानी को हम आपको सुनवाने वाले हैं, आप इस संगीत को सुनिए और खुद ही आप थोड़ा सा अनुमान लगाने की कोशिश कीजिए कि आज की जो कहानी है वो किस तरह से होनी चाहिए।

जी हाँ दोस्तों, आपने इस ट्रेन की आवाज़ से कुछ आइडिया तो लगाया ही होगा कि आज की कहानी हमारी कुछ ट्रेन से ही संबंधित होने वाली है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो प्रेम की नहीं फिर भी प्रेम से भरी है, मुलाकात की नहीं फिर भी एक मुलाकात की यादों से सजी है। ये कहानी है एक छोटे से रेलवे स्टेशन देवली की, और कहानी का नाम है देवली की रात की ट्रेन। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक युवक है, एक युवती है, और ऐसा युवक है जिसकी जिंदगी में एक अनजान लड़की हमेशा के लिए बस गई। दोस्तों, इस कहानी के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। यदि रस्किन बॉन्ड की बात की जाए तो रस्किन बॉन्ड दोस्तों भारतीय अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं। उनका जन्म 19 मई 1934 को कसौली में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन भारत के विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों में बिताया है और उसका प्रभाव उनकी रचनाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। रस्किन बॉन्ड ने बहुत कम उम्र में लेखन शुरू कर दिया था दोस्तों। उनका पहला उपन्यास द रूम ऑन द रूफ 1956 में रिलीज हुआ था। इसके लिए उन्हें बड़ा ही प्रेस्टिजियस जॉन रिस प्राइज प्राप्त हुआ। उन्होंने उपन्यास, कहानियां, निबंध और बाल साहित्य की अनेक रचनाएं लिखी हैं। रस्किन बॉन्ड की कहानियों में प्रकृति, मानवीय संबंधों, पहाड़ी जीवन और सरल मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। द नाइट ट्रेन एट देवली ऐसी ही एक कहानी है। द ब्लू अम्ब्रेला एक और बड़ी खूबसूरत कहानी है रस्किन बॉन्ड की। अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा उनकी प्रसिद्ध कृतियों में शामिल है। दोस्तों, भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री जो कि 1999 में दिया और पद्म विभूषण 2014, इन दोनों बड़े ही प्रतिष्ठित पुरस्कारों से रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया। वर्तमान में रस्किन बॉन्ड मसूरी में रहते हैं और भारतीय पाठकों के सबसे प्रिय लेखकों में गिने जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी देवली की रात की ट्रेन।

दिल्ली से देहरादून जा रही ट्रेन हर साल गर्मियों में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन जिसका नाम देवली स्टेशन पर रुकती थी। अरुण नाम का एक कॉलेज का छात्र भी हर साल इसी ट्रेन से यात्रा किया करता था और बड़ा हैरान हुआ करता था कि इस छोटे से रेलवे स्टेशन पर यह गाड़ी रुकती है। वो अक्सर कहा करता था कि ये देवली रेलवे स्टेशन भी अजीब है, ना यहाँ कोई चढ़ता है ना उतरता है। लेकिन उस सुबह कुछ अलग था। अरुण ने रेलवे स्टेशन पर एक लड़की को देखा, एक दुबली पतली लड़की हाथ में बांस की टोकरी लिए प्लेटफॉर्म पे चल रही थी। टोकरी ले लीजिए साहब, टोकरी ले लीजिए, अच्छी टोकरी है, अच्छी टोकरी है, कम रेट में दे दूंगी, अच्छी टोकरी है, टोकरी ले लीजिए, लेकिन मुझे तो जरूरत नहीं है टोकरी की, देख तो लीजिए साहब। जैसे ही लड़की ने कहा कि देख तो लीजिए, अरुण की नजरें टोकरी पर नहीं लड़की के चेहरे पर टिक गई। अच्छा, कितने की है? लड़की ने बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से कहा कि 2 रुपए की है साहब, ले लीजिए। ठीक है, दे दो, धन्यवाद साहब। जैसा ही ये संवाद हुआ, ट्रेन की सीटी बजी। स्टेशन मास्टर ने बोलना शुरू किया कि सभी यात्री अपनी सीट पर बैठ जाएं और ट्रेन चलने वाली है। अरुण जो कि अब भी उस लड़की को ही देख रहा था, वो टोकरी को तो देख ही नहीं रहा था। उसने 2 रुपए उस लड़की को दिए। लड़की ने कहा कि धन्यवाद साहब, लेकिन अरुण जैसे कुछ कहना चाहता था। चलते चलते जब ट्रेन ने सीटी बजानी शुरू की, उसने एक बार फिर कहा कि अच्छा चलता हूं। लड़की ने भी जवाब दिया, जी हां, नमस्ते साहब। ट्रेन चल पड़ी। अरुण दूर तक खिड़की से बाहर झांकता रहा।

जब तक वो लड़की उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई, वो लड़की को देखता रहा। लड़की भी प्लेटफॉर्म पर खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। ट्रेन भी जा रही थी, अरुण भी जा रहा था, और लड़की और अरुण के बीच में जो फासला था बढ़ता ही जा रहा था। कुछ ऐसा अनकहा एहसास हुआ कि अरुण जो है बस यही सोचता रहा।

0: एक वर्ष बीत गया। अरुण अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहा, लेकिन देवली रेलवे स्टेशन और उस लड़की के बारे में बार बार सोचता रहा। वो लड़की बार बार उसकी यादों में लौट आती थी। अरुण अक्सर सोचा करता था कि अजीब बात है, मैं उसका नाम तक नहीं जानता, फिर भी उसे भूल क्यों नहीं पा रहा। और फिर गर्मियों की छुट्टियां आ गई और अरुण एक बार फिर उसी ट्रेन में बैठ गया और वो बार बार ये सोचता रहा कि क्या इस बार भी देवली रेलवे स्टेशन पर वो लड़की मिलेगी। तो देवली रेलवे स्टेशन पर, जो कि दिल्ली से देहरादून के बीच में है स्टेशन, ट्रेन रुकती है और अरुण उसी लड़की का इंतज़ार करता है और वो लड़की उस रेलवे स्टेशन पर उसको मिल जाती है। अरे तुम, नमस्ते साहब, मुझे बड़ी खुशी है कि तुम अभी भी यहाँ हो। साहब, मुझे भी खुशी है कि आप यहाँ पर आए। तुम रोज यहाँ पर आती हो? हाँ साहब, लगभग रोज आती हूँ। तो तुम्हारे घर में कौन कौन है?
1: मेरी दादी है, मेरे
0: और कौन है?
1: बस और तो कोई नहीं है साहब, हम दोनों ही हैं, मेरी दादी और मैं।
0: दोनों बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन शब्द कम पड़ रहे थे। अरुण बार बार ये सोच रहा था कि काश ट्रेन थोड़ी देर और रुक जाए, काश थोड़ी देर और रुक जाए। और लड़की भी मन में ये सोच रही थी कि काश ये ट्रेन यहाँ से जाए ही ना। तभी स्टेशन मास्टर की जो विसल है उसकी आवाज़ आती है, ट्रेन एक बार फिर चलने लग जाती है। अरुण एक बार फिर निराश हो जाता है। मैं फिर आऊंगा, मैं इंतजार करूंगी। क्षण भर के लिए दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उम्मीद और प्रतीक्षा में एक बार फिर वो ट्रेन देवली रेलवे स्टेशन से चल पड़ती है। एक बार फिर अरुण और वो लड़की एक दूसरे को देखते रहते हैं। एक बार फिर लड़की तब तक अरुण को देखती है जब तक ट्रेन ओझल नहीं हो जाती। एक बार फिर अरुण अपनी नज़रों को गड़ाकर रखता है उस लड़की पर जब तक वो लड़की दूर से धूमिल नहीं हो जाती। और ये सिलसिला यादों में भी चलता रहा और रियलिटी में भी यूं ही चलता रहा।

कई वर्ष बीत गए, 3-4 वर्ष के बाद फिर अरुण ने पूरे उत्साह से वही ट्रेन पकड़ी और देवली रेलवे स्टेशन पहुंच गया। और उसने ये सोचा कि इस बार मैं उसका नाम ज़रूर पूछूंगा। ट्रेन एक बार फिर से देवली रेलवे स्टेशन पर रुकती है, लेकिन प्लेटफॉर्म सुना था और वह चाय वाले से पूछता है कि वो कहाँ है, किसे ढूंढ रहे हैं साहब? वो लड़की जो यहाँ पर टोकरी बेचा करती थी, अरे वो तो कई वर्षों से आई ही नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। नहीं, आपको पता है वो कहाँ चली गई? पता नहीं साहब, किसी को कुछ मालूम नहीं। जैसे ही अरुण ने ये बात सुनी कि किसी को कुछ मालूम नहीं, उसका दिल बैठ गया। एक बार फिर से ट्रेन की सीटी बज गई और जैसे स्टेशन मास्टर ने उसको कहा हो कि चलिए समय हो गया है, अरुण अब अपने मन में सोचने लगा कि शायद वो लड़की फिर कभी नहीं मिलेगी। इस विरह और बिछड़ने को वो सहन नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक बार फिर ट्रेन दूर जाती जा रही थी, रेलवे स्टेशन जिसका नाम देवली था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो लड़की नहीं थी, लेकिन उसकी जो नजरें थी देवली रेलवे स्टेशन पर ही टिकी हुई थी, पर वो लड़की कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वो इतना उदास हो गया कि उस उदासी में उसको पता ही नहीं चला कि वो जा कहाँ रहा है, वो कहाँ से आया है।

तो समय यूं ही बीतता चला गया। अरुण अब बुजुर्ग हो चुका था, जीवन उसका आगे बढ़ चुका था, लेकिन देवली रेलवे स्टेशन नहीं बदला। इतने वर्षों के बाद भी जब भी उसकी ट्रेन देवली से गुजरती थी तो वो खिड़की से बाहर ही देखता रहता था। उसे आज भी ऐसा लगता था कि शायद किसी दिन वो लड़की फिर दिखाई दे जाए, और कभी यूं सोचता था कि उतरकर देवली में ही उसको खोज लूं, लेकिन वो कभी उतरता नहीं था। कभी ये सोचता था कि शायद उसकी शादी हो गई होगी, शायद वो बुजुर्ग हो गई होगी, पता नहीं वो इस दुनिया में है या नहीं है, शायद वो किसी दूसरे शहर में चली गई होगी। बस शायद शायद करते ही अरुण जो है वो बुजुर्ग होता चला जाता है, और आज भी किसी की यादों में वो ऐसे ही खोता रहता है। वो ऐसा सोचता है कि जो मेरी यादें हैं बस यही मेरे लिए एक सहारा है। इन यादों के सहारे ही अरुण ने उस लड़की को

लंबी उम्र अपने सपनों में संजो कर रखा और ये यादें ही हैं जो सदा उसके साथ चलती रहती हैं।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
2: मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
4: दोस्तों, कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, लेकिन वो हमारे दिल में हमेशा के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस जाते हैं। जीवन में कुछ लोग इसलिए याद नहीं रहते कि वो हमारे बहुत करीब थे, बल्कि इसलिए कि हम उन्हें कभी पूरी तरह जान ही नहीं पाए। और इस तरह के जो लोग हैं वो हर व्यक्ति को जीवन में मिलते हैं और एक ऐसी कहानी बनाकर चले जाते हैं जिसका कभी अंत होता ही नहीं।

तो दोस्तों, ये थी कहानी देवली की रात की ट्रेन। इसके लेखक थे रस्किन बॉन्ड और इस कहानी को आप तक पहुंचाया आपके दोस्त विपिन सहगल ने। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि जीवन की सबसे खूबसूरत यादें अक्सर अधूरी रह जाती हैं। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा, हमें ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी कहानी FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 बस होने ही वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार और रात्रि 9:15 से 10 बजे तक आप सुन सकते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। और दोस्तों, रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक सुनना ना भूलें आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से कार्यक्रम चांदनी रातें, अपने दोस्त विपिन सहगल के साथ। और इस कार्यक्रम में आपके जो भेजे हुए व्हाट्सएप संदेश हैं, उन संदेशों में जो आपने फरमाइशें लिखी हैं, वो गीत आपको सुनवाए जाएंगे। तो याद रखिएगा, रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक चांदनी रातें कार्यक्रम। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहाँ ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहाँ से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है।
2: The amount of time we have spent
3: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसे स्थितियां दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: आवश्यकता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए

0: पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर नीट लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
2: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया, 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
4: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
3: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
5: यहाँ पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
3: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India expresses grave concern over killings of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jayashankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders, and Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh for strengthening long-term energy security. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
8: a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
7: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government, focusing on social security and national development. Dr. Jayashankar made these remarks in an interview given to DD News. He said that national security in the present time is not just about protecting the borders. It includes security in terms of economy, energy, health, fertilizer and cyber strength.
9: The amount of time we have spent engaging countries who are oil providers, gas providers, within that LNG, LPG, fertilizer, manufacturers, traders, because this is a national priority. So the foreign policy continuously is in sync with what are actually the prime national goals of the moment.
7: Dr. Jayashankar said that India is safeguarding its deep strategic and economic interests in the Gulf region while also maintaining its independent ties with Iran, the United States and Israel. Dr. Jayashankar also emphasized India's balanced engagement across key regions amid growing geopolitical tensions. Prime Minister Narendra Modi held a telephone conversation this afternoon with the Emir of Kuwait, Sheikh Meshel Al Ahmad Al Jaber Al Sabah. The two leaders exchanged views on the evolving security situation in West Asia. The Prime Minister expressed deep concern over the escalation of tensions and reaffirmed India's strong condemnation of attacks on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He reiterated the call for de-escalation, dialogue and diplomacy for the earliest restoration of peace and stability. Mr. Modi thanked Emir of Kuwait for his personal attention to the continued well-being and the safety of the large Indian community in Kuwait. Prime Minister Narendra Modi will be on a six-day official visit to France and Slovakia from Saturday. In the first leg of the visit, the Prime Minister will visit Nice for a bilateral meeting with President Emmanuel Macron on Sunday. Both leaders will review the full spectrum of the India-France bilateral relationship, which was elevated to the level of a special global strategic partnership earlier this year. On the second leg of his visit, Mr. Modi will pay a state visit to the Slovak Republic from 14th to the 16th of this month. This will be the first ever visit by an Indian Prime Minister to Slovakia since its independence in 1993. On the third leg of the visit, the Prime Minister will participate in the G7 summit in Evian, France on the 16th and 17th of this month. The BRICS Agriculture Conference kicked off in Indore, Madhya Pradesh today, bringing together representatives from 21 countries to discuss some of the most pressing challenges facing agriculture worldwide. India, which holds the BRICS presidency this year, is hosting the conference. The conference, running till 13th of June, will see wide-ranging discussions on food security, agricultural trade, climate-friendly farming practices, and innovation in the agriculture sector. The idea is to build stronger cooperation among member nations and find common solutions to shared challenges. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today visited the National Testing Agency headquarters and reviewed the preparations for the re-NEET exam, which is going to be held on the 21st of this month. Talking to reporters outside the NTA headquarters in New Delhi, the minister said the centre has ensured that all necessary measures are being taken while maintaining complete confidentiality, from the preparation of the question papers to all subsequent procedures. Mr. Pradhan said this includes ensuring that examination materials reach the examination centers accurately and on time.
1: क्वेश्चन पेपर बनाने से लेके
10: फ्रॉम सेटिंग द क्वेश्चन पेपर्स थ्रू ऑल सब्सिक्वेंट स्टेजेस इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट क्वेश्चन पेपर्स रीच द एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑन टाइम अ मीटिंग ऑफ सेक्रेटरीज फ्रॉम रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स वॉज

अभी आपने मोहम्मद रफी की आवाज में सुना दिल देखे देखो फिल्म का ये गाना। आइए अब सुनते हैं तेरे घर के सामने फिल्म का गाना। गीत हसरत जयपुरी का है, संगीत एसडी बर्मन का, आवाज है मोहम्मद रफी की।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आराधना फिल्म का गाना, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत एस टी बर्मन का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी का यहाँ प्रोग्राम में चार दिल्ली से आए
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने भी फोन किया, कहने लगे यहाँ हम डोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के। मैं उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, कूदे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

असित भूपाली का जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 जुलाई सन 1921 में हुआ। मुंशी अहमद खान के वो बड़े साहबजादे थे। जब उनका जन्म हुआ तो इनका नाम रखा गया असदुल्ला खान। फारसी, अरबी, उर्दू और अंग्रेजी में उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। शहर भोपाल एक अदबी शहर, वहाँ की हवा में शायरी की खुशबू होने से कई शायर इस शहर ने दिए हैं। उन्हीं में से एक जगमगाता नाम है असद भोपाली साहब का।

असद भोपाली कोई 28 साल के रहे होंगे जब उन्होंने माया नगरी मुंबई का रुख किया ताकि वो अपने शायरी का फन फिल्मी गानों की शक्ल में उभार सके। भोपाल से मुंबई आने वाले शायरों की फहरिस्त का अव्वल नाम है असद भोपाली साहब का।

असद भोपाली का मुंबई आना किस तरह हुआ, ये भी एक दिलचस्प किस्सा है। फाजली ब्रदर्स एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था दुनिया। निर्देशक थे एस एफ हसनैन साहब। फिल्म के अभी दो गाने ही लिखे गए थे। लिखने वाले थे आरजू लखनवी साहब, जो तकसीम हिंदुस्तान के पेश नजर पाकिस्तान चले गए थे। अब फाजली ब्रदर्स के सामने मुसीबत मुंह बाय खड़ी थी कि बाकी गाने किससे लिखवाएं। इसी दौरान भोपाल के सुगम चंद कपाड़िया, जिनके भोपाल शहर में दो थिएटर थे, मुंबई आए हुए थे। उन्हें जब इस बात की खबर मिली तो फाजली साहब के सामने उन्होंने मदद की पेशकश करते हुए मशवरा दिया कि भोपाल शहर में शायरों की कमी नहीं है, अगर आप चाहो तो मैं एक मुशायरा भोपाल में करता हूँ, नामी गिरामी शोहरा इसमें भाग लेंगे। आप और आपके निर्देशक साहब जिस किसी शायर से मुतासिर हों उससे बाकी गाने लिखवा लें। तजवीज फाजली ब्रदर्स को पसंद आई, भोपाल में मुशायरा हुआ। फिल्म के प्रोड्यूसर फाजली ब्रदर और एस एफ हसनैन साहब मुशायरे में आए। जो शायर उन्हें सबसे अच्छे लगे वो थे असद भोपाली। फिल्म दुनिया के बाकी गाने फिर उन्हीं से लिखवाए गए। इस तरह से उनकी फिल्मी गीतकारी के रूप में पेश कदमी हुई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं हम सब उस्ताद हैं, इस फिल्म का किशोर कुमार का गाया हुआ।

फिल्म दुनिया में असद भोपाली के दो गाने थे, रफी साहब का गाया हुआ रोना है तो चुप चुप के रो, आंसू न बहा आवाज न हो। सुरैया का गाया हुआ गाना था अरमान लुटे दिल टूट गया, दुख दर्द का साथी छूट गया। अगले साल यानी 1950 में फिल्म आधी रात के दो गाने लिखने का उन्हें ऑफर मिला, इधर तो आओ सरकार, किसी की जीत किसी की हार, और दिल ही तो है तड़प गया, दर्द से भर न आए क्यों। ये दोनों गाने लता मंगेशकर ने गाए थे, संगीतकार थे पंडित हुसन लाल और पंडित भगत राम। अब आपको सुना रहे हैं आगे बढ़ने से पहले ठाकुर जरनैल सिंह फिल्म का ये बड़ा ही मीठा सा गाना जिसे गाया है आशा भोसले ने।

सन 1950 में ही एक और फिल्म के लिए उन्होंने गाने लिखे। वो फिल्म थी निर्दोष। अगर आपको याद हो तो मुकेश साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत इसी फिल्म से की थी। संगीतकार थे श्याम सुंदर।

सन 50-51 के आसपास बीआर चोपड़ा साहब ने एक फिल्म अफसाना का निर्माण किया था। अशोक कुमार और वीणा मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म के संगीतकार थे पंडित होसन लाल और पंडित भगत राम। कुल 9 गाने थे फिल्म में, इनमें से 6 गाने लिखे थे असद भोपाली साहब ने और काफी

फिल्म अफसाना एक सफल फिल्म थी और इसका संगीत भी खूब लोकप्रिय हुआ था। असद भोपाली को इसके बदले मिली एक फिल्म राजपूत जो बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। उन दिनों साल में इक्का दुक्का फिल्में बनती थी। काम पाने के लिए स्ट्रगल और कंपटीशन बहुत कड़ा हुआ करता था। इसी की एक मिसाल 1954 में असद भोपाली को फिल्म गुलबहार में एक गाना लिखने का मौका मिला जिसका संगीत खयाम साहब ने दिया था। इस फिल्म के दो संगीतकार थे, एक खयाम साहब और दूसरे धनी राम। दूसरे गीतकारों में थे जानेसार अख्तर, कैफी आजमी और शिवन रिजवी साहब। असद भोपाली का लिखा हुआ गाना था मुबारक बेगम का गाया हुआ, कलियों को चूं मैं तारों से खेलूं। दोस्तों 1949 से 1990 तक असद भोपाली ने कुल 100 के आसपास फिल्मों में गाने लिखे, करीब करीब 400 के आसपास गाने हैं। असद भोपाली साहब का लिखा हुआ टावर हाउस फिल्म का ये बड़ा ही मीठा सा गाना है, लता मंगेशकर और मुकेश ने इसे गाया है।

पंडित भूषण लाल, पंडित भगत राम, श्री रामचंद्र, खय्याम, हंसराज बहल, लच्छी राम, धनी राम, दत्ता राम, पंडित शिवराम, श्याम सुंदर, एम दत्ता, नौशाद, ए आर परेशी, चित्रगुप्त, रवि, सी अर्जुन, सोनी कुमी, राजकमल, लाला सत्तार, हेमंत कुमार, मानस मुखर्जी, कल्याण जी आनंद जी, इतने सारे संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया। सबसे ज्यादा काम उन्होंने गणेश और उषा खन्ना के साथ किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी आनंद बख्शी साहब के साथ साथ असद भोपाली से गाने लिखवाए थे। फिल्म पारसमणि के जो दो गाने हैं, वो जब याद आए बहुत याद आए और हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये काफी मकबूल हुए थे।

अपने जमाने के मशहूर निर्माता निर्देशक के आसिफ साहब का एक अनोखा शाहकार था फिल्म लव एंड गॉड। इस फिल्म के लिए भी असद भोपाली साहब ने अपनी कलम का सही इस्तेमाल किया। नौशाद साहब का संगीत सब कुछ अमर सा लगता है।

सन 1989 में सूरज बड़जात्या ने बड़ी ही खूबसूरत प्रेम कहानी बनाई मैंने प्यार किया। इस फिल्म का कबूतर जा ये गाना सुपर डुपर हिट रहा, पर अफसोस इस गाने को जो सर्वश्रेष्ठ गाने का पुरस्कार मिला उसे लेने अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे असद भोपाली साहब भोपाल से मुंबई ना आ सके।

0: 9 जून सन 1990 को इस शायर गीतकार असद भोपाली ने बगैर किसी अहलो अयाल के अपने शहर भोपाल से दुनियाए फानी को अलविदा कहा।
1: यारे गजब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, दो गज

0: आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था गीतकार असद भोपाली पर, शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है आपका मनपसंद कार्यक्रम चांदनी रातें।

दोस्तों आप सबका स्वागत है कार्यक्रम चांदनी रातें में। आज का चांदनी रातें का ये सफर आप तय करेंगे अपने दोस्त विपिन सहगल के साथ। साथियों, ढेर सारे आपके व्हाट्सएप संदेश हमें मिले हैं और उन संदेशों में आपने अपनी फरमाइशें लिखी हैं, आपने अपने नाम लिखे हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दो रास्ते फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सुनना चाहते हैं जलालाबाद शामली उत्तर प्रदेश से राशिद मंसूरी, आयान मंसूरी और सयान मंसूरी। करणवीर हाउस भुचो कैंचिया भटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, दपिंदर, कुलदीप, सीमू एकम दमन और अभिजोत। गांव पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि, राजीम, ज्योति और प्रहलाद वर्मा। और दोस्तों नगरोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सोनिया, साईराज और विशाल सपकाल। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाहटा, कुश और परिवार के दूसरे सदस्य। अगला मैसेज हमें मिला है हनुमानगढ़ राजस्थान से रज़ाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान की तरफ से। सनावत से शेख मूसा, मोहसिन, अशोक,

शर्मा, राजकुमार बुड़ाना। और दोस्तों सेक्टर 67 मोहाली, चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक अनिल, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। तो लीजिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी के गाए दो रास्ते फिल्म के इस गीत के साथ। तेरी जुल्फें हवाओं से जब बातें करती हैं, तेरी जुल्फें हवाओं से जब बातें करती हैं, मेरे दिल की धड़कनें भी शरारत करती हैं।

तो दोस्तों, ये थी कार्यक्रम की पहली पेशकश, दिल है के मानता नहीं। जी हाँ, ये है उस फिल्म का नाम जिस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं। कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने इस गीत को आवाजें दी हैं। समीर की रचना को संगीत में पिरोया है नदीम श्रवण ने। सुनना चाहते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत। अगला मैसेज जो स्क्रीन पर हमें दिख रहा है, गांव झगोड़ी जिला यमुनानगर से रणधीर बांगड़, गुरमेजो, गौरव, प्रवीण, युगम और वीरेन। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। शीतल रेडियो श्रोता संघ गांव बहरामपुर टैमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर त्रिलोक चंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा, डॉक्टर अमित वर्मा, मास्टर समर राज आर्यन, आरोही ऐशिका, अंजलि और श्वेता वर्मा। रामगंज खंडवा से विजय, कविता, सोनू, मोनू और पेंटर बाबू। मुंगनी पैठण महाराष्ट्र से बाबा साहेब कंगनकर, साखरबाई, परमेश्वर, श्रावणी और कंगनकर के परिवार के दूसरे सदस्य। यशराज शिंदे, प्रकाश शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोटके, ये मैसेज हमें मिला है रोहिदास चौक पंडरपुर शहर से। और गांव लसूडिया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार। और अगला मैसेज हमें मिला है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू, साजदा रानी और हीना कौसर। तो दोस्तों, हम आपकी फरमाइश भी पूरी कर रहे हैं, दिल है कि मानता नहीं फिल्म का ये गीत सुनिए। दिल ने हजार बार समझाया खुद को, मगर एक छोटा सा दिल था वो भी तुम ले गए, अब जो बचा है वो सिर्फ धड़कने हैं। दिल ने जब भी दुआ मांगी तेरा नाम आया, और इश्क को लगा जैसे उसका अंजाम आया।

दोस्तों अनुरोध फिल्म का एक गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनना चाहते हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश आबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि और शीतल राजेश, शाहजीनगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी सौरभ साइना और निवान शर्मा, रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत सिंधे, सुनीता यशराज, ऋषि और कृष्णा घोटके, पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति सुरभि, अश्विन शाह, मंगला बहन और राजेंद्र शाह, नूर महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, तलहत जहानाज, फरहत रिफत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजियापुरी नाज, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहाकर, निर्मला नहावाकर, विशाल नहाकर और दोस्तों गांव कुमार खेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाब और आदिब, तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुराहनुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समीरा और इसी गीत को सुनना चाहते हैं गांव बांडीवाला फजिलका पंजाब से क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, ओम बगड़िया, गरिमा, रजत और मनीष चौधरी। तो लीजिए हाजिर है अनुरोध फिल्म का एक गीत किशोर कुमार की आवाज में। दिल तड़पता रहा तुझे पाने की चाह में, दिल तड़पता रहा तुझे पाने की चाह में और तू मशरूफ रहा किसी और की राह में।

दोस्तों, कुमार सानू की आवाज़ में श्रीमान आशिक फिल्म का एक गीत सुनिए। इस गीत को सुनना चाहते हैं गांव हीरा वाली फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा और दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति, गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति देवकुमार और आर्य कुमार जायसवाल, अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी और जयपाल यादव, धतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा का भी हमें मैसेज मिला है। गांव जोगीवाला श्री गंगानगर से प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष सहारण। अगला मैसेज हमें मिला है कोका भिलई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदनी जंघेल, धमदा ग्राम सुख

सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, गर्वी और हिमाक्ष और दोस्तों कोटवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी दुबिहा निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय, रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय। तो लीजिए कुमार सानू की आवाज में श्रीमान आशिक फिल्म का यह गीत सुनिए, होठों पर तेरा नाम आया तो सुकून मिला, जैसे बरसों से भटका मुसाफिर घर को मिला, होठों पे तेरे नाम की मिठास आज भी है, होठों पे तेरे नाम की मिठास आज भी है, दिल में अधूरी सी कोई प्यास आज भी है।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों, लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की आवाजों में सिलसिला फिल्म का एक गीत सुनिए। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीतकार हैं शिव हरी। सुनना चाहते हैं दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद अनब अब्बासी और बाली उमर से मजनू का टीला, दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना। इसी गीत को दोस्तों सुनना चाहते हैं मित्रनगर बीड शहर महाराष्ट्र से विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े और वैभव, और गांव खोखना वाली श्री गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल विकास और रोशनी बारासा, सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान, जिला मुरादाबाद गांव दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। तो लीजिए अमिताभ बच्चन साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ में सिलसिला फिल्म का ये गीत सुनिए, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है

दोस्तों आकाशवाणी कुरुक्षेत्र आपने ट्यून इन किया है 101.4 मेगाहर्ट्ज और कार्यक्रम चल रहा है चांदनी रातें। चांदनी रातें का ये सफर आप तय कर रहे हैं अपने दोस्त विपिन सहगल के साथ। साथियों, किशोर कुमार की आवाज में हम सब उस्ताद हैं। फिल्म का एक गीत सुनिए। इस गीत को लिखा है असद भोपाली ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सुनना चाहते हैं खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली, निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर और सतना मध्य प्रदेश से उमंग और दाऊद सराहे, सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सर साबरी, मुजक्किर और जरीफ अंसारी, डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर और दोस्तों दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद मिफ्रा और चाहत, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला आसमा, दीपक और अनुश्री श्याम कुमार और गुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवा शहर पंजाब से सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित, रितेश, शिखा, प्रीतिशा और मैक्स, वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू, टॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा। तो लीजिए, हम आप सबकी फरमाइश भी पूरी कर रहे हैं। हम सब उस्ताद हैं फिल्म का ये गीत सुनिए। कुछ अजनबी लोग मुकद्दर में ऐसे लिखे होते हैं, कुछ अजनबी लोग मुकद्दर में ऐसे लिखे होते हैं, मिलते अपने जैसे हैं मगर होते किसी और के हैं।

दोस्तों, स्वीकार किया मैंने फिल्म का एक गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को सुनना चाहते हैं छोटी बलिया मुंबई करजत से अहमद भाई फुल वाले, दुखना सदफ जूही इकबाल, इमराद अहमद, आमना नसरीन, आसमा राबिया, लाशू अहमद और फजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांची खेड़ा और गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता, तुषार सिंह, रिंकी और दोस्तों गांव पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत कुमार संचित, प्रथमेश प्रणाली देशमुख और सर्वद देशमुख, गांव फ्रांसी हिसार हरियाणा से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। तो लीजिए हाजिर है लता मंगेशकर की आवाज़ में स्वीकार किया मैंने फिल्म का ये गीत।

तो दोस्तों ये था आज का चांदनी रातें कार्यक्रम। अब समय इजाज़त नहीं दे रहा कि हम आपको कोई और गीत सुनवाएं। यदि दोस्तों आप भी इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी चाहते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर 9466021336 यानी 9466021336 नोट कर लीजिए। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें संदेश भेज सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी फरमाइश के फिल्मी गीत। आपका नाम भी आज की तरह ही इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा जिस कार्यक्रम का नाम है चांदनी रातें। दोस्तों अब अपने दोस्त विपिन सहगल को चांदनी रातें कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने ही वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके तुरंत बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार, जो कि आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारी ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human right abuses.
1: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
3: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government focusing on social security and national development. Dr. Jaishankar made these remarks in an interview given to DD News. He said that national security in the present time is not just about protecting the borders, it includes security in terms of economy, energy, health, fertilizer and cyber strength. Dr. Jaishankar said that India is safeguarding its deep strategic and economic interests in the Gulf region while also maintaining its independent ties with Iran, the United States and Israel. Prime Minister Narendra Modi held a telephonic conversation this afternoon with the Emir of Kuwait, Sheikh Mashal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. The two leaders exchanged views on the evolving security situation in West Asia. The Prime Minister expressed deep concern over the escalation of tensions and reaffirmed India's strong condemnation of attacks on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He reiterated the call for de-escalation, dialogue and diplomacy for earliest restoration of peace and stability. Mr. Modi thanked Amir of Kuwait for his personal attention to the continued well-being and the safety of the large Indian community in Kuwait. World leaders have congratulated Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister of the country. They paid tribute to Prime Minister's transformative governance, his advocacy for the Global South, and his vision of an inclusive and economically dynamic India. President of Sri Lanka, Anurag Kumara Dissanayake, in a letter said that the milestone is a testament not only to Mr. Modi's years in office, but also to the trust and confidence that the people of the world's largest democracy have repeatedly placed in his leadership. Prime Minister of Papua New Guinea, James Marape, in his personal video message, described Prime Minister Modi as a role model and an example of leadership. Further, Prime Minister of Trinidad and Tobago, Kamala Prasad Bisesar, noted that under the leadership of Prime Minister Modi, India has evolved as a leading voice on global matters. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the Land Port Management System, LPMS Binimay, in New Delhi, marking a major step towards digitizing and streamlining cargo processing and passenger movement across India's land borders. Addressing the gathering, Mr. Shah said the initiative reflects the government's commitment towards building a modern, technology-driven border management system. He said, the platform is aligned with the vision of Viksit Bharat 2047 and will strengthen trade facilitation, connectivity and national security. And with that, we end this news bulletin.
4: FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारे आज के कार्यक्रम यहीं संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। अब हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।

रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारे आज के कार्यक्रम यहीं संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। अब हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।